तग न नारी पलके थुक पवित दाढ़ी तग न पैरी तग न हथी तग न जेव तग न की वे तक गाया पे वतने वटा गेव रखत है ले पाप करे बिया कर का गलत सहरा सुन वेखो लोका है वेडा मन अंदर ना सुजान पौड़ी साहेब दयाल।

मानस खाने करने वाद चुरी बगैंतन गलता तिन कर भ्रमण पूरे ना ओ न फिर आवे सात कुड़ी रास कुड़ा बापा कुड़ बोल कर आहा सजम तजम का डेरा दू नानक कूड़ रहया प्रभू मथे टिक्का तेड़ तोती का खाई हाथ चुरी जगत कसा नील वस्त्र पैर होए परवान मिले स्थान ले पूजे प्रा अपख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देखे चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़े यार मत पिटे वे मत पिटे एओ अन असाडा पिटे तन पिटे पेट करे मन जुटे चुली परे कहो नानक सच ते हरिए सच को बे ता सच पाई।

मंगन व्यागो भंडो होवे दोस्ती भंडो चले रागो भंड मुआ भंड भलिए भंड होवे बंदान सो क्यों मंडा आखिए जुगजम है राजा भंडो की भंड पुजे पंडे बाज न को नानक पंडे बाबा एक सच्चा सो जित मुख सदा।

नेबरहुड सर्विस दी पंजाबी सेवा च तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत। पेश कर रहे हैं सुफियाना कलाम। ऐ खुदा शीशा साफ कीता ता मैं नजर आया, ते जद मैं नू साफ कीता ता तू नजर आया। चल बंदिया मैं नू साफ करके उस अल्लाह सोने दे लड़ लगीए। आओ प्रोग्राम दा आगाज कर दिया सायदा बेगम दे गाए इस सुफियाना कलाम दे नाल, कदी आमिल बिरहू सताई नू।

ही आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आए 9870 किलोहर्ट्ज़ से तेखा सवाए तवा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप ए डीडी फ्री डिश ते बुधी सकंदा आयो। प्रोग्राम शुरू थी चुको है, तफसील कुछ इन तरह थोड़ी देर में अवां भगत कौराम जन जो मिठड़ो आवाज बुधंदा तेखा पोए एक नंडी तकरीर पेश केंदी ए पोए अज अवां जनाब विष्णु भाटिया जो लिखल नाटक बुधंदा खट्टा मिठा। यह तो असाजे प्रोग्राम की तफसील ही ऑल इंडिया रेडियो की सिंधी सर्विस है। हिंसर छो तो भगत कौराम जन जो मिठड़ो आवाज बुधूं।

0: आवाम भगत कौराम जन जो मिठड़ो आवाज़ बुधरिया
1: हि आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है
0: हिंसर पेश आई नंडी तकरीर।
2: सिंध जो कदीम शहर शाह बंदर हर कें इंसान जो टे माउर थियन थियो। एक है वह माउ जहाँ इंसान के जन्म दिए थी ए जन्म का बालकपण ताई संदस पालना करे थी। बी माउ है बोली जेका इंसान के समाज से वास्तो रखण सेखारे थी ए इंसान के रूह की परवरिश करे थी। टी माउ है वह भूमि या धरती जैते इंसान जन्म वठे तो जैसे मिट्टी में रांद कंदे वडो थे तो जैसी हवा में साँव खणे तो जैसे नदियों खूहन जो पानी पिए तो जैसे उपायल अन्न भाजुन मेवन ते पलजे तो। पर घणाई दफा इंसान के पैंजी धरती पैंजी भूमि जी घणी जान कान थी रहे खास करे पैंजे जन्म भूमि जे इतिहास जी। मिसाल तौर घणनी सिंधियों के कदीम सिंध जी का घणी जान कान्हे। असां मां केतरन के या खबर कान्हे त कदीम सिंध यानि अरबन जे सिंध में अचण का अवल जी सिंध मौजूदा सिंध का घणो वसी हुई। उन वक्त जे सिंध जूं हदूं ओभर में कश्मीर ए कनौज ताईं ओलह में मकरान ए समुंड ताईं उत्तर में सुलेमान जबल ए दखण में सूरत जे बंदर ताईं फैलियल हुयूं। उन वक्त जे सिंध जे गादीअ जो हंध अलोर या अरोड़ हो। हाणोकी सिंध नरगो कदीम सिंध खां नंढी थी वई आहे पर कदीम सिंध जा केतरा अहिड़ा शहर आहिनि जेके कॾहिं पंहिंजे औज ते रसियल हुआ उहे अॼु उजड़ी हिक तरह सां वीरान थी विया आहिनि। अहिड़नि ई शहरनि मां हिकु शहर आहे शाह बंदर।

0: जीअं हिन शहर जे नाले मां ज़ाहिर आहे, शाह बंदर कंहिं वक़्तु सिंधु नदीअ जे छोड़ वटि वसियल हिकु वॾो बंदरगाह हो। इहो अवल ई ॿुधायो वियो आहे त अरबन जे सिंध में अचण खां अवल सिंध जूं हदूं काफ़ी परे परे ताईं फैलियल हुयूं ऐं सिंध जे गादीअ जो हंधु अलोर या अरोड़ हो। अरबन जे सिंध में अचण खां पोइ सिंध जे गादीअ जो हंधु ठटो बणियो। ठटो उन वक़्तु न रुगो सिंध जे गादीअ जो हंधु हो, पर हिकु वसियल बंदरगाह ऐं तमामु औज ते रसियल वापारी शहर हो। 1555 धारे पोर्चुगीज़नि ठटे ते काह कई ऐं ठटे खे काफ़ी नुक़सान रसायो। उन वक़्तु सिंध में मिर्ज़ा ईसा तुर्गान हाकम हो। उन ठटे खे पहुतल नुक़सान सबबि नओं बंदर वसायो। 18 सदीअ जे विच धारे सिंध में कलोड़नि जो लाज हो। 1759 में मियां ग़ुलाम शाह कलोड़े उन बंदरगाह जे भरिसां फिटल शहर कूज में नओं शहर वधायो ऐं हिकु क़िलो बि ठहिरायो। ग़ुलाम शाह कलोड़े जे नाले पुठियां शहर जो नालो शाह बंदर ऐं क़िले जो नालो शाहगढ़ पियो। ग़ुलाम शाह कलोड़ो औरंगा बंदर जा सभु माण्हू लॾाए शाह बंदर में वठी आयो ऐं अची खेन उते वसायईं। औरंगा बंदर में अंग्रेज़नि जी हिकु कोठी हुई। औरंगा बंदर मां माण्हुनि जे लॾे अचण सबबि अंग्रेज़नि जी उहा कोठी बि औरंगा बंदर मां खॼी शाह बंदर में अची वई। कंहिं वक़्तु शाह बंदर काफ़ी नालेरो बंदरगाह हो। शाह बंदर में सिंध जे हाकमनि जा जहाज़ बीहंदा हुआ। शाह बंदर तां कई जहाज़ मस्कत ऐं ॿियनि मुल्कनि ॾांहुं वेंदा हुआ ऐं अहिड़ीअ रीत सिंध जो ॿाहिरनि मुल्कनि सां हिन बंदर जे मैरफत काफ़ी वापार थींदो हो। हिन वक़्तु शाह बंदर में घणा ई कच्छी भाटिया रहंदा हुआ, जेके ॿाहिरनि मुल्कनि सां वापार कंदा हुआ। 1819 में धरती धुॾी ऐं उन सबबि सिंधु नदीअ जे हेठे पासे जो रुख बदिलजी वियो, जंहिं सबबि शाह बंदर फिटी वियो। हिन वक़्तु शाह बंदर हिकु नंढो उझाणल ॻोठु वञी रहियो आहे। शाह बंदर जे नाले सां शाह बंदर तैलको ठहियल आहे। शाह बंदर तैलके जा ॿ मशहूर ॻोठ आहिनि चूहड़ जमाली ऐं लाॾियूं। पहिरीं शाह बंदर तालके जी आफ़ीस शाह बंदर में हूंदी हुई, पर पोइ पाणीअ जे उथल जे डप सबबि 1892 धारे उहा आफ़ीस हटाए लाॾियुनि में कई वई। हूअ लाॾियुनि खां बि चूहड़ जमालीअ जो ॻोठ वधीक बहितर आहे। चूहड़ जमालीअ जे भरिसां इबन शाह जो टकरु आहे, जंहिं ते इबन शाह जी तुर्बत आहे। चवनि था त हीउ हिकु वॾो औलिया हो, पर हू केरु हो ऐं किथां आयो हो इन बाबति कंहिंखे का ख़बर कान्हे। चूहड़ जमाली ऐं लाॾियुनि जे विच में शाह यकीक जी दरगाह आहे। दरगाह में अंदरि ॿ तुर्बतूं आहिनि, पर उन्हनि ते को अंग अखर लिखियलु कोन्हे। इन करे उन्हनि तुर्बतुनि में दफ़न थियल शख़्सनि बाबति का बि ॼाण हासिलु कान थी थिए। हर साल चेट महीने जे पहिरें आर्तवार ते हिते काफ़ी वॾो मेलो लॻंदो आहे, जंहिंमें परे परे खां माण्हू ईंदा आहिनि। वक़्त वक़्त जी बलहारी आहे। शाह बंदर जेको कॾहिं सिंध जे बंदरगाहनि जो शाह हो, अॼु न शाह रहियो आहे ऐं न बंदरगाह। अॼु उहो महज़ हिकु वीरान नंढो ॻोठु आहे, जेको क़दीम सिंध जे तारीख़ जे हिकु पुराणे पन्ने वांगुरु मौजूदु आहे।
1: अवां हीअ तकरीर ॿुधी रहिया, हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे।

हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डी डी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।

0: पीर सामो कंध झुकाए त इएं वेठी आहे ॼण कुझु ॼाणे ई नथी। असां मथिस वॾा ज़ुल्म कया आहिनि।
1: ओफो, तूं चुप बि रहंदीअ? जो थी समझो आहे, जो थियो सो थी वियो।
0: माण्हुनि जे अखियुनि में धूर विझंदी रहे ऐं मां चुप रहां?
1: न, सॼे शहर में ढंढोरो घुमाए जीअं सभिनी खे ख़बर पवे।
0: असां माउ धीउ जे विच में तव्हांखे टिपण जी काई ज़रूरत न आहे।
1: ओफो, या माउ धीउ जे विच जी ॻाल्हि न आहे, भितियुनि खे बि कान थींदा आहिनि।
0: तव्हांखे मुंहिंजो ॻाल्हाइण बिल्कुलु वणंदो कोन। बाक़ी पंहिंजे लाडली ज्योतीअ मथां घोड़ा घोड़ा पिया वेंदा।
1: अड़ी, हसद बि कंहिंसां थी करी? ज्योतीअ सां, पंहिंजी पेट जाई सां? ज़रा पंहिंजे आवाज़ जे वॉल्यूम खे ढरो कर।
0: मुंहिंजी दिलि जलंदी कोन। ज्योतीअ खे तव्हां सिर ते चाढ़े छॾियो आहे, इन करे हुन इहा हिमत कई आहे। तव्हां लाइ 24 कलाक बिज़नेस, क्लब, सोशल वर्क, पार्टियूं आहिनि। घर तरफ़ बि को ख़्यालु अथव?
1: तूं त 24 कलाक घर में आई न, मां त खणी घर खां ॿाहिरि थो रहां। तुंहिंजे नक साम्हूं ॻाल्हियूं थियनि थियूं, तोखे ख़बर नथी पवे।
0: हा हा, मां वांदी वेठी आहियां न, सॼो ॾींहुं वेही जासूसी थी कढां ज्योतीअ जी।
1: ज्योतीअ जे हिन क़दम लाइ ज़िमेवार तूं आहीं।
0: हा, ज़िमेवार मां आहियां। तव्हांजे लाॾ कोड ज्योतीअ खे बिगाड़े छॾियो आहे।
1: इन में हाय घोड़ा मचाइण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे?
0: हाय घोड़ा मां थी मचायां? मां थी घोड़ कयां? मथे ते तव्हां हुनखे खणी छॾियो आहे। समझायो न पंहिंजे लाॾलीअ खे।
1: ठीकु आहे, मां समझाईंदोसांसि। ज्योति हाणे वॾी थी वई आहे, समझो आहे, पंहिंजो भलो बुरो सोचे सघे थी।
0: चओ छा था, असांजे हथ जी ॼावल छोकिरी आहे, हेतिरी तिॾड़ी, पर कम उहे थी करे जेके असां सोचा बि कोन हूंदा। गुज़िरियल ज़मानो हूंदो हुयो, माइट नंढे हूंदे धीउ खे शादी कराए छॾींदा हुआ त घर जी इज़त रस्ते ते कोन पहुचंदी हुई।
1: ओहो, पर हाणे उहो ज़मानो कोन्हे, ज़मानो वियो, बदिलजी वियो। अॻे माइटनि जे चए ते औलाद हलंदो हो, पर हाणे औलाद जे चए ते माइट खे हलणो थो पवे।
0: छा था चवणु चाहियो, त हाणे असां ज्योतीअ जे चए ते हलूं?
1: ओहो, मूं त दुनियादारी जी ॻाल्हि थे कई। सिंधीअ में चवंदा आहिनि, जहिड़ो ॾिसजे वाह तहिड़ी ॾिजे पुट।
0: साफ़ साफ़ छो नथा चओ? मूंखे त लॻे थो तव्हांखे हिन किसे जी अॻुवाट ई ख़बर हुई। तव्हांजे ई ख़ुशीअ ते ज्योतीअ जो क़दम खयो आहे।
1: ओहो, तुंहिंजो सुभाउ शुरू खां वठी शकी रहियो आहे। भॻवान थो ॼाणे, मूंखे ज़री बि ख़बर कान हुई।
0: हा हा, मूंखे ॼण त ख़बर ई न आहे। तव्हांजे चुट खां सवाइ ज्योति इहो कदम बिल्कुलु न खणे हा। ज्योति में एतिरो अकुल ई आहे छा? माउ खां को धीउ जो पेट पुजो रहंदो आहे छा?
1: ओफो, तूं पहाके जो ग़लति इस्तेमालु कयो। चवणी आहे दाईअ खां को माईअ जो पेट गुझो आहे छा?
0: मुंहिंजी दिलि थी जले ऐं तव्हांखे मज़ाक थो सुझे।
1: अरे भई, मूं त फ़क़ति पहाको दुरुस्त करायो।
0: तव्हां मतिलब जी ॻाल्हि करियो ई नथा। कहिड़े मर्द सां पनारो पियो अथमि? उफ़, हे त खणी माइटनि तव्हां सां अड़ायो,
1: न त इंग्लैंड जी महाराणी हुजी आहे, ईअं न?
0: तव्हां मूंसां पुॼी था खाओ न? ही त मां आहियां जंहिं 30 साल तव्हां सां निभायो आहे। न त का ॿी हुजेव हा त कोर्ट जा दरवाज़ा ॾेखारे वा।
1: अड़े छॾे वञी हा न, त ॿीअ सां शादी करण जो चांस मिली पए हा।
0: ॼण ऑफिस में टाइपिस सां रोमांस कंदा ई न आहियो।
1: अड़ी कुझु ख़ुदा जो ख़ौफ़ कर, तूं बि धीअ वारी आहीं।
0: मूंखे ॼण ख़बर ई कोन्हे त ऑफिस में छा पियो हले। पघार 200 त साड़ियूं 500 वारियूं पाइन। भला ॿुधायो त सही, इहे 500 रुपया ईंदा किथां आहिनि?
1: अरे, तुंहिंजी इहा शकी आदत ई तोखे मारे थी। अॻिले में तुंहिंजो ज़रूर बि वेसाह कोन्हे, इन करे त ज्योति तोते वेसाह रखी, पंहिंजो दिल जो हाल बि तोसां ओड़े न सघी।
0: तव्हां सां ओड़िया ई न, इन जो ई त इहो नतीजो निकितो। हूअ बि चवंदा आहिनि, छोकिरी ज़ात खे एतिरी छुरवागी न ॾियणु खपे। जेतिरो ॿाहिरि घुमंदियूं भिट कंदियूं, ओतिरो ई मथो ख़राब थींदनि। असां हुयूंसीं सिबण भरण रधण पचाइण में रुधल रहंदी हुयूंसीं। अॼु त बसि नाटक, फिल्मूं, साहेड़ियूं, पिकनिक ऐं रुलण पिनण खपेनि।
1: ॿार साम्हूं हिन रीति न ॻाल्हाइणु घुरिजे, न त ॿार हथनि मां निकिरी वेंदो।
0: निकिरी छा वेंदो, निकिरी

0: ई आहे, जेका धीउ माउ खे पंहिंजो दुश्मन थी समझे, पढ़ाओ थी समझे, अहिड़ी धीउ त ॼमंदे ई मरी वञे।
1: ॼमंदे ई निरीअ ते नओं छो न ॾिने? तो मूंखे ॼणियो ई छो? ही न कर, हू न कर, ॼण मां ॿार आहियां, मूंखे का समझ ई कोन्हे।
0: ॾिसो छोरीअ जी ज़बान कैंचीअ जीअं थी हले, कैंचीअ जीअं समझ एतिरी अथसि जो घर जी इज़त खे टिको लॻाइण हली वई।
1: घर जी इज़त छा थींदी आहे? माउ 24 कलाक जुआ में बिज़ी रहे, धीअ जी गहरी इच्छा आहे, तंहिंजे ॼाणण जी कंहिंखे ज़रूरत ई कोन्हे। पीउ घर खां ॿाहिरि रहे, पंहिंजनि खफ़नि में पूरो हुजे, त छा धीअ घर जे चइनि दीवारुनि में पंहिंजो मथो टकराए, दिलि जो हाल चइनि भितियुनि खे ॿुधाए?
0: चुप छोरी, त चोटी न कचे।
2: चोटीअ जे हेयर स्टाइल में चोटी किथे आहे?
0: तव्हां पीउ धीउ जो पासो खणी खेसि मथे ते चाढ़ियो आहे, न त जेकर हूअ ईअं असुल न करे हा।
2: ज्योति ठीक थी चवे, ॾोह असांजो आहे, असां कॾहिं ज्योतिअ सां वेही सिधे मुंहुं ॻाल्हायो पाए? ज्योति बराबरि आहे, असां खेसि विश्वास ॾियण में फेल विया आहियूं। हा धी ज्योति, बराबरि ॾोह असांजो आहे, मञूं था, पर पुट तो इहो कदम खयो ज़रूर सोचो हूंदे।
0: जेका अंध जे घोड़ी ते चढ़ियल हूंदी सा छा सोचींदी?
2: ज्योति, माउ जे सुभाउ खां तूं वाकुफ़ आहीं, पर मूंखे त ॿुधाए सघीअ थे, मां तोखे समझी सघां हा।
0: माउ ऐं धीउ जे विच में निफ़ाक़ विझी पाण सुरखुड़ू थियण था चाहियो, पोइ खेसि मूं वापसि छो आंदो? वञी काड़ो मूं करे हा न।
2: ॾिस, तोखे ईअं न ॻाल्हाइणु घुर्जे। हा धीउ, ॿुधाए।
1: छा ॿुधायां, मुंहिंजे फ़ैसिले खां अवां वाकुफ़ आयो ई।
2: पर धीउ, आगो पीछो त सोचो हूंदे।
1: आगो पीछो छा थींदो आहे? मां घर छॾे रही हुअसि, इहा हक़ीक़त आहे, बस।
2: पर छोकिरो छा कंदो आहे?
1: मूंसां गॾु पढ़ंदो आहे।
2: हुन पंहिंजे माइटनि खां रज़ामंदी वरिती आहे?
1: ज़रूरत कहिड़ी आहे? जीअं मूं पंहिंजनि माइटनि खां रज़ामंदी न वरिती, तीअं हुन न वरिती।
2: माइटनि तर्फ़ औलाद जो फ़र्ज़ु थींदो आहे?
1: ज़रूरु थींदो आहे, नंढनि जो फ़र्ज़ु आहे वॾनि जी इज़त करणु, पर वॾनि जो फ़र्ज़ु इहो आहे त औलाद जी राह में रंडबू पैदा करणु, औलाद खे मूर्ख ऐं पाण खे सियाणो सम्झणु।
0: अहिड़ी नालाइक़ औलाद खां त सुञ भली हुई, न हुजे हा त हिकिड़ो ई सूर हो।
2: तूं विच में त ॻाल्हाए, ॻाल्हि ई बिगाड़े थी छॾी।
0: त मां वञा थी, तई वञी पीउ थी पाण में मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं कनि।
2: कुझु आईंदे लाइ सोचियो अथई?
1: हाउ, असां सिविल मैरिज करियूं हा।
2: शादीअ खां पोइ हिकु घर जी ज़रूरत थींदी आहे, घर हलाइण लाइ रेगुलर इनकम जी ज़रूरत थींदी आहे, इन खां सवाइ घर जो काॾो न हलंदो आहे।
1: श्याम चयो हो त हू कंहिं नौकरीअ जी तलाश कंदो।
2: छा नौकरियूं अॼुकल्ह विरिहाइजनि पियूं?
1: श्याम जे हिकु फ्रेंड खे नौकरी वठी ॾियण लाइ दिलासो ॾिनो आहे।
2: जेसि ताईं नौकरी मिले, घर ठहे, तेसि ताईं कीअं हलो आहे?
1: कंहिं होटल में रहूं हा।
2: हुन जो बिल केरु चुकाईंदो?
1: कुझु श्याम वटि सेविंग हुई, कुझु मूं वटि।
2: समझ खणी श्याम खे नौकरी नथी मिले?
1: त मां करियां हा।
2: तूं करियां? मुंहिंजो नकु न कपजी वञे?
1: तव्हांजो नकु छो कपजे हा? तव्हांजी पंहिंजी ज़िंदगी आहे, मुंहिंजी पंहिंजी ज़िंदगी।
2: पर तूं मुंहिंजी धीउ आहीं, ईअं करण सां मुंहिंजे नाले खे टिको लॻी वञे हा।
1: असुल न
2: समझ, तव्हांजो लव मैरिज फेल थो वञे, पोइ
1: श्याम ऐं मां ख़ुशी ख़ुशी अलॻि रहंदासीं।
2: समाज में तुंहिंजे चरित्र खणी आङुर न खई वञे हा।
1: समाज तव्हां छा खे था चओ? मम्मीअ जे उन्हनि साहेड़ियुनि खे, जेके ॿारनि जी चिंता बिना जुआ में रुधल रहंदियूं आहिनि? मूंखे उन्हनि जी परवाह कोन्हे। समाज तव्हां छा खे था चओ? पंहिंजे बिज़नेस कॉन्टेक्ट खे, जिन जे चहिरनि ते वापारी मुस्कुराहटूं चिपकियल रहंदियूं आहिनि?
0: छोरी, वात त कीअं थी कढे? इहो सभु तव्हांजे लाड जो नतीजो आहे। छोरी, माउ खे बिगाड़ ॾियण खां नथी चढ़े, मां जुआर आहियां। तुंहिंजो पप्पा वञे ऑफिस में, तूं वञी कॉलेज में, भला मां पंहिंजो टाइम कीअं पास करियां? दिल बहलाइण लाइ थोरी रांदि कयम त? दिल बहलाइण लाइ फ़क़त जुआ ई आहे? मूंखे घर खाइण ईंदो आहे, ही घर आहे या जुआ खानो?
2: ज्योति, तूं मुंहिंजो सुवाल टारी थी।
1: समाज में ईअं ई थींदो आहे ऐं ईअं ई थींदो रहंदो, विद्रोह खे बर्दाश्त केरु कंदो?
2: असीं समाज में रहूं था, समाज खां अलॻि हीअं कुझु कबो त खिल कराए थी। तूं अॼु घर छॾे रिस्क खणी रही आहीं।
1: जिंदगी आहे ही रिस्क, खतरा है।

0: का चैलेंज है लव मैरिज जी कामयाबी नाकामयाबी छाखे था जो प्यार त दिलिन जो सौदो आहे असा के एक बेते पूरो विश्वास आहे
1: थियो इन ला घर छडे भजवण जी केडी जरूरत है अड़ी शाम के मुसा इंट्रोड्यूस कराई हां मां विचार करे पांजो रायो दिया हां तुझे मम्मी के चवण जो मौको भी न मिले
0: यो त लॉन्ग प्रोसीजर थे हां असा शॉर्टकट खा कम वरतो सच डैडी खबर हो जेम हां तवां जल्दी एग्री थिंदा ओ मां तरसा हां पर सोचम किथे मम्मी जे दबाव में अची इंकार न करयो
1: जोती तू भी पांजे डैडी के समझी न सकी अड़ी मां बियन वांगुर ना आया जेके औलाद जी दिल के न समझंदा है मुझे लाए औलाद जी खुशी पांजे खुशी का वधिक है मां बियन जिया जोर ये पांजा विचार औलाद ते मरण जे सख्त खिलाफ आया
0: डैडी तवा केतरा न ग्रेट आयो
2: तवा पी दी पेंजी अलग खिची लगी न रहो ए मां घर में केर भी ना आया
0: मम्मी एकरो त तू सदे मु गालई को न मथा दी चवी सलाम इसलत नथी करी
2: चुप छड़ी घणो बात कढ्यो अथई
0: पापा स्टेशन ते इंतजार कंदे कंदे शाम थको हूं मां शाम जे उबारे सुबह का वाकुफ आया तू मुखे न दिसंदो जरूर हेते इंदो
1: तू शाम सा सुखी रही सकंदी यो विश्वास अते तू भली घर छडे वनी सकी थी मां तुझे हर तरह से मदद करू
2: पी थी करे धीर के हरु बड़ू खुए में दिखे रहे आयो दिस जे बाड़ गलत आए तो उनके वही समझा जे कि न तवा वांगुर खुशी दिजे मुखे वापस आंदो ए तवा हथ वठी के घर मा बाहर कडी रहे
1: मां के नए सिर जिंदगी घर जी परमिशन दे रहे आया
2: कुछ तो सोचो मानन के कहो मुंह देखाड़ींदासी सूट केस खणी हली हुई पंजे प्रीतम सा मिलन
1: आज हर को पांजे मर्जी जो मालिक है थी सके तो जोर बार आने असी ज्योति के मजबूर कयूं कुछ शाम के विसारे छदे असी संदत बिहंत शादी करायूं ज्योति जी वा शादी कामयाब न वने तो असी ज्योति नजर में किरी पौंदासी
0: पापा तमाम में केतरी न अंडरस्टैंडिंग आहे
1: वन थी ज्योति पुट शाम तुझे इंतजार कंदो हूं
0: चमो पापा
2: बुद्धि ज्योति जे हूं आज घर छड़े रही है ताजु खान तिन जी मां तोले मरी चुकी

0: दिस ज्योति, दरवाजे ते केर आए।
1: ज्योति, तो मुझे परेशान कर छो आए, इरादो बदले छे।
0: केर श्याम, ज्योति अंदर वठी अची।
2: श्याम, मां जाना थी तो के तकलीफ जरूर थी हुंदी, पर मां छा करया।
1: तो के ना चनो तो वायदो छो कई।
0: ए मिस्टर, तू माइटन जी हाजरी में ज्योति सा गाले रहे वई, घट में घट परमिशन तो वठ।
1: नजी का जरूरत कोने, यो मुंजो ए ज्योति जो पर्सनल मामलो आए। की ज्योति?
2: श्याम ठीक तो चवे।
0: ए मिस्टर, तू मुझे नाबालक थी के भजाण तो चाही, मां तो के हियर हियर कानून हवाले करे तो सका, इने में कानून भी मुझे मदद कंदो।
1: थोरो घणो कानून मां भी जाना, मां ज्योति के बजाय वही रहो आया, उनके मर्जी खिलाफ न, पर उनके रदामंदी से।
0: मिस्टर श्याम, तू मुझे धी के भजाण चाहे तो ये साबित थी चुको है, पर मुझे कुछ शंकाऊ है।
1: बेशक जाहिर कयो।
0: तू छा कंदो आई?
1: मां ज्योति सा गड पढ़ंदो आया।
0: शायद ये खां पर घर जो चस्को की हलाईंदा।
1: मां सर्विस कंदुस,
0: तेस ताई
1: कम हली वेंदो।
0: तू समझी तो ज्योति तो ला बेहतर वाइफ साबित थी सकंदी।
1: जरूर।
0: किया
1: वो मुखे बेहद प्यार करे थी।
0: यो काफी ना है, ज्योति कदे पांजे घर में कम कयो कोने,
1: वक्त जी जरूरत सब कुछ ज्योति के सेकार छनिंदी। फिलहाल होटल में खाइंदासी, जेस ताई ज्योति रदन न सिखी आए।
0: ओ
2: पापा, असि एक बेसा एडजस्ट करे सकंदासी, यो विश्वास आए।
0: ओ तवा जा इरादा खतरनाक हन, त मासूम भी ठीक आए। पुटे मां तवा बिन शादी जो इंतजाम कंदस।
1: काश मुंजो डैडी तवा चे हो जिया। मुंजो डैडी त औलाद के पेंजो गुलाम समझंदो आए, खुद के हमेशा सही ए मुखे हमेशा गलत समझंदो आए। हुन कदें भी मुंजे भावनान के समझो ना है, इन करे असान जो अरेंज मैरिज मां विश्वास निकरियो है।
0: अड़े तुझे डैडी के मां कन्विंस कंदस,
1: तहु तवा सा सौदेबाजी कंदो। उनके जिंदगी में पैसो खपे, फकत पैसो, वो मुखे नीलाम करण ला तैयार बैठो है।
0: मां पांजी धी जे खुशी ला सब कुछ कंदस, जेत्रो देती लेती में घरों दो दींदस।
1: न मां पान के विकण ला तैयार नाया, इन करे मुंजो अरेंज मैरिज में विश्वास कोने। असा एक बे के प्यार करूं था, यो असा ला काफी आए। जिंदगी में एडवेंचर करण जो एक चांस मिलो अथऊ, असा के फेस करण दियो। असा राह में इंदा तकलीफन के खिली खिली गले लगाईंदासी।
0: बाराणी न करियो, तहां जो मतलब शादी सा है ना, वह धूमधाम सा कभी।
1: असा रजिस्ट्रार वट शादी कर इंदासी।
0: अरे रजिस्ट्रार वट भी शादी कंदा न? पुट शादी एक सामाजिक बंधन है, इंसान जमे अकेलो जरूर थो, पर के समाज के विच में जियणो तो पवे, समाज का भजन की काई वाट काने।
1: रजिस्ट्रार अग्या शादी कंदासी? हाँ तवा चाहो तो हाजिर रही सको था, वो तवा धाम धूम से शादी की पार्टी दिजो। बस हाँ तो असा तवा जे भावना जो कदर कयो सी ना।
2: शाम बिल्कुल ठीक तो चवे।
0: ज्योति धी पांजो ख्याल रख छी पुट, शाम ज्योति जी संभाल कच, नाजन जी पलिया।
1: तवा बेफिक्र रहो।
2: वन्यो पर याद करो, मां तां बिनी ला केड़ बना है।

0: चल भई सुखी रह।
1: ज्योति के खनी मु केतरा न सपना न हुआ मुखे शादी में जन ले छा छा न ढाए रखे हो सब सपना मिट्टी में मिली वे।
0: एक गाल कभी ज्योति ही शाम जी चोड़ी शानदार आ
1: इठो मेंजी पेट जाई थी करे मुखा को मोकला है वही जन तो मान जी कुछ को न बस म कुछ न आया
0: बस बस असा के हाल तो सब पान ठकाने कभी बस बस असी पुटते रह जीवन आज।

0: अव जना विष्णु भाटे जो लिखल नाटक बुधी रहा खट्टा मिठा
1: हे आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है
0: हिंसर अस प्रोग्राम जो वक्त पुरोसी रहा है वहीं अस मुलाकात थी सुबह सुबह जो भारतीय वक्त मुताबिक 6:30 तेस तीन इंदा मोकल सदाई गड
2: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आर एन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं तमिलनाडु में तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवी को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख

0: तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा है कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमरीका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा में संबंधित था। ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। उधर अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को स्थिर करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में फिर से बातचीत शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बैठक करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Subendu Adhikari will take oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. The oath-taking ceremony will be held at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, BJP President Nitin Naveen, Union Ministers and Chief Ministers of all NDA-ruled states are expected to attend the swearing-in ceremony. Earlier, Mr. Adhikari was elected the leader of the state BJP Legislature Party. The Legislature Party meeting was held in Kolkata in the presence of the Home Minister yesterday. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK Chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. Reports are also coming that the swearing-in ceremony, which was to take place today, will not be held. Earlier, TVK had claimed that the actor-turned-politician once again met the governor yesterday and staked claim to form the government, saying that he has majority. Meanwhile, the IUML, headed by Professor Kadir Muhyiddin, has said that his party has not given a letter of support to TVK. In another surprising move, the meanwhile AMMK party leader TTV Dinakaran approached the governor and submitted a letter of support from S. Kamaraj, the lone MLA elected from Mannarkudai, to make AIADMK General Secretary E. Palaniswamy as the new Chief Minister. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar met Guyanese Health Minister and discussed the progress of India-Guyana health ties. Dr. Jayashankar, who is on a three-nation visit to the Caribbean, met Health Minister Dr. Frank Anthony on a stopover at Georgetown in Guyana. Dr. Jayashankar was in Jamaica on the first leg of his tour, then went to Suriname and will be in Trinidad and Tobago for the final leg of his visit. US President Donald Trump has announced the three-day ceasefire between Russia and Ukraine, noting that the temporary truce coincides with Russia's Victory Day celebrations commemorating the then Soviet Union's role in World War II. In a post on Truth Social, Mr. Trump said the ceasefire would take place from 9th to 11th of May and would include a suspension of all kinetic activity between the two countries. Mr. Trump stated that the request for the temporary truce was made directly by him and noted that the agreement will also include a prisoner exchange involving 1,000 prisoners from each side. The US has announced sanctions against 10 individuals and companies, including several in China and Hong Kong, over accusations they aided Iran's efforts to secure weapons and the raw materials needed to build its Shahed drones and ballistic missiles. A report.
2: The US Treasury's last night move comes days before US President Donald Trump plans to travel to China for a meeting with President Xi Jinping and as efforts to end the war with Iran have stalled. In a statement, US Treasury said it remains ready to take economic action against Iran's military industrial base to prevent Tehran from reconstituting its production capacity. Treasury said it is also prepared to act against any foreign company supporting illicit Iranian commerce, including airlines, and could impose secondary sanctions on foreign financial institutions that aid Iran's efforts, including those connected to China's independent teapot oil refineries. Experts say Treasury's actions were aimed at cracking down on Iran's ability to threaten ships operating in the Strait of Hormuz and regional allies. Ashish Abraham for Akashwani News, Delhi.
1: The standoff over the Strait of Hormuz has intensified after Iran rejected a US-backed draft resolution at the United Nations Security Council, calling it flawed and politically motivated. Tehran argued that the proposal will legitimize unlawful actions rather than help resolve the conflict. Iran said the only path towards stability is ending the war, lifting the US maritime blockade on Iranian ports and restoring normal shipping through the Strait of Hormuz. Israel and Lebanon will resume negotiations with 2 days of intensive talks facilitated by the US on May 14th and May 15th. US State Department said delegations from both countries will meet in order to form a comprehensive peace and security agreement that substantively addresses the core concerns of both the countries. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। समय हुआ है 7:10 और 14 सेकेंड। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आप सुनेंगे अमृता दत्ता से भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें अभी आपने सुना अमृता दत्ता से भजन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। श्रोताओं, गीतों भरी गुड मॉर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं। मैं कुसुम, आपकी होस्ट एंड दोस्त। दोस्तों, हर सुबह एक नया जन्म है, हर सुबह हमारा पुनर्जन्म होता है। आज हम जो करते हैं वही सबसे अधिक मायने रखता है, क्योंकि जब ये विचार हमें याद दिलाता है कि जो बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो दोस्तों, नया दिन हमें फिर से शुरुआत करने का अवसर देता है। सुबह केवल सूरज का आना नहीं, वो हमारे भीतर उम्मीद की एक नई किरण, साहस और नई सोच का जन्म भी होता है। बीता हुआ कल समाप्त हो चुका है, कल कोई गलती हुई, कोई दुख मिला, कोई सपना अधूरा रह गया, तो हमें सुबह ये संदेश देती है कि जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है, एक नया दिन, एक नए दिन और नए सुबह की शुरुआत हुई है। फिर से कोशिश करने की, इस बार और बेहतर कोशिश करने की। हम अक्सर भविष्य की चिंता, अतीत के पछतावे में खो जाते हैं दोस्तों, लेकिन सच ये है कि हमारा भविष्य आज के छोटे छोटे कर्मों से बनता है। आज की मेहनत कल की सफलता है, आज की सकारात्मक सोच कल की शांति, और आज का धैर्य कल की जीत है। तो यूं ही गुनगुनाते रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए, जीवन को बेहतर बनाइए संगीत के साथ। सुनते रहिए हमारे साथ संगीत गीतों भर गुड मॉर्निंग।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग, मेरे यानी कुसुम के संग। हम बात कर रहे थे आज की, हमने बताया कि जैसे आज में ही हमें जीना चाहिए, आज के कर्मों से ही हमें हमारा जो भविष्य होता है वो बनता है। दोस्तों ये हम सभी जानते हैं, ये कहना केवल एक प्रेरणादायक वाक्य नहीं बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। दोस्तों हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा भविष्य, किस्मत, परिस्थितियां दूसरों के फैसलों से तय होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में भविष्य की नींव हमारे आज के विचार, आदतें और कर्म रखते हैं। आज आप जो करते हैं वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी और दिशा तय करती है। आज की जो आपकी मेहनत है वो जो कल है वो कल की सफलता में तब्दील हो जाती है। आज यदि आप आलस करेंगे तो कल आपको सिर्फ और सिर्फ पछतावा मिलेगा। आज अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो कल आपको आत्मविश्वास, सफलता और बहुत कुछ मिलेगा, और आज का जो धैर्य है वो कल की बड़ी उपलब्धि बन जाता है। दोस्तों भविष्य अचानक नहीं बदलता, वो रोज किए गए छोटे छोटे प्रयासों से बनता है। तो इसलिए हमें भी हर दिन छोटे छोटे प्रयास करने हैं, यही जीवन का नियम है। जो बीज आज हम बोते हैं वही कल फल बनकर हमारे पास लौटते हैं और हमारा जीवन सकारात्मक बन जाता है।

0: क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, हम बात कर रहे थे कर्म की, कि जो हम बीज आज बोते हैं वही कल फल बनकर हमारे पास ही वापस लौटता है। कर्म के बहुत सारे प्रभाव होते हैं, कुछ सकारात्मक होते हैं और कुछ नकारात्मक होते हैं। हमारे केवल कर्म जो होते हैं हमारी बाहरी सफलता ही नहीं बनाते, बल्कि हमारा व्यक्तित्व भी बनाते हैं। आपने महसूस किया होगा कि यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो मन की शांति, आत्मविश्वास, सुकून, सम्मान सब कुछ मिलता है। हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, जीवन में सकारात्मकता ही सकारात्मकता आती है, एक सकारात्मक ऊर्जा हमें देती है। कैसे भी जो सकारात्मक कर्म होते हैं, चाहे वो मन कर्म, वचन और वाणी से जो भी हम कर्म अपने सेंसेस के थ्रू करते हैं, वो सभी हमें अच्छे कर्म हमें सुकून देते हैं दोस्तों। वही अगर हम बात करें नकारात्मक कर्मों की, तो इससे पछतावा मिलता है, तनाव मिलता है, असंतोष मिलता है और कई बार अवसर भी खो जाते हैं। तो जीवन की यही सीख है कि हर दिन को अवसर समझिए, छोटी छोटी जो आदतें हैं उनको बनाइए। अच्छी आदतें बनाएंगे तो वो हमारे लिए ही बेनिफिशियल होंगी, अपने लक्ष्य की तरफ रोज एक नया कदम बढ़ाएंगे तो हमारी सफलता निश्चित होगी। क्योंकि सफलता एक दिन की नहीं दोस्तों, रोज के प्रयासों से ही हमारी सफलता बनती है। भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं जो अचानक सामने आ जाए, भविष्य यह है, वो है जिसे हम आज अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से, छोटे छोटे प्रयास, सकारात्मक विचारों से बनाते हैं। तो आज का जो परिश्रम है कल ही पहचान बनाता है दोस्तों।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: दोस्तों बात कर रहे थे हम आज की यानी आज जो पल हमें मिला है आगे बढ़ने का रहस्य है शुरुआत करने में निहित है दोस्तों ये पंक्ति हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य सिखाती है अक्सर लोग सपने तो बड़े देखते हैं लेकिन शुरुआत करने से डर जाते हैं वे सही समय सही अवसर या पूरी तैयारी का इंतजार करने लगते हैं लेकिन सच ये है कि दोस्तों सफलता की पहली सीढ़ी केवल शुरुआत करना है कई बार हम शुरुआत करना ही भूल जाते हैं हमें डर लगता है किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए पहला कदम उठाना जरूरी होता है दोस्तों जब तक हम शुरुआत नहीं करते तब तक कोई बदलाव संभव भी नहीं हो सकता मान लीजिए कि एक किताब लिखनी है आपको तो जब तक आप ये सोचेंगे नहीं आप सोचते रह जाएंगे जब तक आप उस किताब को लिखने के लिए जो आपके विचार हैं एक बार किताब उठाकर पहला शब्द लिख नहीं लेते तो इसलिए शुरुआत करना बहुत जरूरी हो जाता है सफलता की शुरुआत ही पहले प्रयास से होती है जब आप कुछ भी अगर आपके मन में जो भी विचार आते हैं वो लिखते हैं तो वहीं से आपका जो पहला कदम है वो शुरुआत हो जाती है तो सपनों की शुरुआत होती है पहला कदम जीवन में सबसे कठिन काम अक्सर जो हमारा जो शुरुआत होती है फर्स्ट टाइम वही हो जाती है अगर उसमें डिले हो जाता है तो वहां पे हमारे सपने अधूरे हो जाते हैं लेकिन एक बार यदि आपने कदम आगे बढ़ा लिया तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं।

दोस्तों हम बात कर रहे थे कर्म की आज की, कि हमें प्रयास करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, चाहे छोटा सा ही प्रयास हो करना चाहिए। लेकिन अक्सर असफल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है, लोग क्या कहेंगे इस बारे में ज्यादा सोचते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें ये अभी तक पूरी तरह नहीं तैयार हुए हैं या किसी परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे होते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमेशा ये याद रखना चाहिए कि परफेक्ट समय कभी भी नहीं आता, समय को परफेक्ट हमारे कर्म बनाते हैं।

0: हमारे प्रयास बनाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण ही ले लीजिए कि यदि हम मिट्टी में छोटा सा बीज डालते हैं तो तुरंत विशाल पेड़ नहीं बनता, धीरे धीरे अंकुर बनता है, और जब बड़ा होता है तो छोटा ही होता है लेकिन पता नहीं होता कितना बड़ा पेड़ बनेगा। तो इसी तरह हमारी छोटी छोटी जो कर्म होते हैं, छोटे छोटे प्रयास होते हैं, वही बड़े पेड़ में तब्दील होते हैं। सपने देखने से मंजिलें नहीं मिलती, मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना पड़ता है दोस्तों। तो मुझे यानी कुसुम को दीजिए इजाजत, और अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, और इंजॉय करिए ये गीत।
1: तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। 8 बजने को हैं, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
2: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
3: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के अर्थद्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाएं

0: आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
1: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरल में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग चार दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। यह युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमरीका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और

0: राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉ राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
3: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली।

0: कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी। राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज। पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला। देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर एआई समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट है नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक एआई चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून। ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रूपये गंवाए, हिन्दुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से यह खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सुवेंदु अधिकारी आज सुबह मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह हलफ बरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और फुटबॉल में भारत ने 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एशिया कप के क्वार्टर फाइनल्स में पहली बार जगह बनाकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। सुवेंदु अधिकारी आज मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। हलफ बरदारी की तकरीब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: रियासत नई सरकार की हलफ बरदारी की तारीखी घड़ी का मुशाहदा करने के लिए तैयार है। ये तकरीब कोलकाता के आइकॉनिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। हालिया इख्तिताम पजीर असेंबली इंतखाबात में फैसलाकुन वोट हासिल करने के बाद रियासत की सियासी तारीख में पहली मरतबा भारतीय जनता पार्टी की क्यादत वाली सरकार बाकायदा तौर पर ओहदा संभालेगी। हलफ बरदारी की तकरीब में मुल्क भर से पार्टी की हिमायत करने वाले लाखों अफराद, सियासी लीडरों और मुअज्जज मेहमानों की आमद का इम्कान है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी की बरसर इकदार रियासतों के वज़ीरे आला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। गवर्नर आर एन रवि वजीर आला और नई काबीना के मेम्बरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। पार्लियामानी पार्टी के नौमंतखब लीडर सुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि रियासत में इदारा जाती बदरवानी की छानबीन के लिए एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन कायम किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आरजी खर अस्पताल और संदेश खाली जैसे वाकयात के सिलसिले में भी तहकीकात शुरू की जाएगी। अधिकारी ने जीत को बीजेपी कारकुनों की इज्तिमाही कोशिशों को मौसूम करते हुए पार्टी के मंशूर में शामिल सभी वादों को वक्त पर पूरा करने का अहद किया। ये तकरीर 25वें बैशाखी के मौके पर मुनक्किद की जा रही है, जो रवींद्रनाथ टैगोर का यौम पैदाइश है। इससे तकरीब की सकाफती और अलामती अहमियत बढ़ जाएगी। पूरे वस्ती कोलकाता में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रोग्राम को खुशसूबी के साथ मुनक्किद कराने को यकीनी बनाने के लिए हजारों पुलिस अहलकारों को तैनात किया गया है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मगरबी बंगाल में बीजेपी हुकूमत भारत की सरहदों को महफूज बनाएगी और कौमी सलामती के लिए सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करेगी। कल कोलकाता में मगरबी बंगाल के 9 मुंतखबा बीजेपी अरकान असेंबली से खिताब

0: देखते हुए जनाब शाह ने कहा कि बीजेपी की जीत का मकसद अपनी तंजीम को तौसी देने या इसके नजरियात को जवाब फराहम करने का नहीं है, बल्कि इस जीत का मकसद मुल्क की कौमी सलामती की सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करना है। उन्होंने कहा कि आसाम, त्रिपुरा और अब मगरबी बंगाल में बीजेपी की हुकूमतें सरहद को नाकाबिले तस्खीर किले में तब्दील कर देंगी।
1: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: जनाब शाह ने जोर देकर कहा कि बीजेपी हुकूमत में दरअंदाजी और गायों की स्मगलिंग नामुमकिन हो जाएगी। तमिलनाडु में टीवीके के सरबराह सी जोसेफ विजय के तहत सरकार की तश्कील के सिलसिले में अब भी गैर यकीनी सूरत हाल है। नया मोड़ ये आया है कि आईयूएमएल ने हुकूमत की तश्कील के लिए टीवीके को अपनी हिमायत की खबरों से इनकार कर दिया है। एक और वाकये में ये खबरें भी आ रही हैं कि हलफबरदारी की तकरीब जो आज मुनाकिद होनी है मुनाकिद नहीं होगी। प्रोफेसर कादिर मयुद्दीन की सरबराही वाली आईयूएमएल ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिजागा वेत्री करगम को हिमायतनामा नहीं दिया है। एक और हैरानकुन वाकया यह है कि एएमएमके पार्टी के लीडर टीटीवी दिनाकरन ने गवर्नर से रुजू किया है और इस कामराज की तरफ से हिमायतनामा पेश किया है, जो मन्नार दुई से मुंतखबा वाहिद एमएलए हैं। उन्होंने यह हिदायतनामा एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी एडापड्डी पलानीस्वामी को वजीर आला बनाने के हक में पेश किया है। एक रिपोर्ट।
2: तमिलनाडु में जहां 85% से ज्यादा वोट डाले गए हैं, अभी तक नई हुकूमत और वजीर आला के तकरूर का इंतजार है। नई हुकूमत की तश्कील में इसलिए ताखीर हो गई है कि वाहिद सबसे बड़ी पार्टी टीवीके भरपूर अक्सरियत 118 की तादाद तक अभी तक नहीं पहुंच सकी है। अलबत्ता वीसीके की तरफ से महज एक और हिमायतनामा मौसूल हुआ है, जिसे एक हतमी कदम माना जा सकता है, क्योंकि पार्टी के पास दो अरकान असेंबली आ गए हैं, जिसके बाद ये तादाद 118 हो जाएगी। तब तक किसी फैसले का इंतजार रहेगा। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सब्रमणी को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस मुकर्रर किया है। वजारत दिफा का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी ओहदा संभालने की तारीख से अगले अहकाम तक फौजी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमत अंजाम देंगे। वो जनरल अनिल चौहान की मुलाजमत की मुद्दत 30 मई को मुकम्मल होने के बाद अपना ओहदा संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी एक इंतहाई मुअज्जज़ अफसर हैं, जिनकी चार दहाइयों से ज्यादा की शानदार खिदमत हैं। वो सितंबर 2025 से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट में मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल कमांड के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने मगरबी और शिमाली महाजों पर अहम ऑपरेशनल फॉर्मेशंस की कमांड भी की है। हुकूमत ने वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को बहरिया का अगला सरबराह मुकर्रर किया है। वजारत दिफा ने कहा है कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन इस वक्त मगरबी बहरिया की कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडमिरल तकरीबन चार दहाइयों की शानदार खिदमत हैं। भारतीय बहरिया में मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हुए उनका ऑपरेशनल, स्ट्रेटजिक और जवानों से मुतालिक बंदोबस्त का काफी तजुर्बा है। वो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह लेंगे, जो 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 का कल बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। ये तकरीबात मंदिर की तामीर नौ के 75 साल पूरे होने के मौके पर मनाई जा रही है। इन तकरीबात में मुल्क भर के अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: सोमनाथ के मंदिर में सोमनाथ अमृत पर्व पठात्मक अति रुद्र के साथ शुरू हो गया है। आज 3 रोज यज्ञ का भी आगाज होगा, जिसके दौरान सामग्री के तौर पर तकरीबन 1,25,000 अशिया मुकदस आग की नजर की जाएंगी और मौजूदा बैन अल-अक़वामी तनाजात के दौरान आलमी अमन और इंसानियत की भाई के भलाई के लिए दुआ की जाएगी। ये तकरीबात 11 मई को इख्तिताम पजीर हो जाएंगी, जब मंदिर में अजीम शान तरीके से कुंभाभिषेक का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें 11 मंदिरों का पानी नजर किया जाएगा। अहमदाबाद से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान की तरफ से अमरीका की हिमायत वाली क़रारदाद के एक मुसवदे को

0: उनमें कुछ कुछ तकलीफें होने लगती हैं, बच्चा सफेद दिखने लगता है, बच्चा अधिक रोता है, सुस्त हो सकता है, खेलता कम है, और अगर डॉक्टर के पास जाते हैं माता पिता तो पता चलता है कि खून की कमी है, और लगभग 9 महीने में या 1 साल से पहले ही अधिकतर बच्चे पहचाने जाते हैं और उनमें फिर खून चढ़ाने का इलाज शुरू करना पड़ता है, क्योंकि थैलेसीमिया बच्चे का खून कम होता है और अगर उनको खून नहीं चढ़ाया जाए तो बहुत खून की कमी हो जाती है और उनको मृत्यु भी हो सकती है। इसका रिस्क फैक्टर ये है कि दोनों माता पिता में थैलेसीमिया ट्रेट या थैलेसीमिया कैरियर हो। अच्छा, ये कहना बहुत जरूरी है कि जो थैलेसीमिया ट्रेट या तो जो थैलेसीमिया कैरियर है वो मरीज नहीं है, वो नॉर्मल व्यक्ति हैं और अपना पूरा जीवन नॉर्मल जी सकते हैं, उनको कोई दवाइयों की या कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। अगर एक थैलेसीमिया कैरियर किसी नॉर्मल व्यक्ति से शादी करता है तो थैलेसीमिया मेजर बिल्कुल होने का खतरा नहीं है। अगर दो थैलेसीमिया माइनर या कैरियर या ट्रेट जिसको हम लोग बोलते हैं उनकी शादी होती है तो जैसे मैंने कहा उनमें 25% खतरा होता है कि उनके बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो, और इस खतरे को बिल्कुल शून्य किया जा सकता है अगर वो प्रीनेटल टेस्टिंग करें। प्रीनेटल टेस्टिंग का अर्थ ये है कि अगर दोनों माता पिता का टेस्ट हो गया है और पता चल गया है कि थैलेसीमिया कैरियर हैं वो दोनों, तो जब 10 हफ्ते का बेबी होता है तो उस टाइम पे गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाके एक CVS टेस्ट होता है जिसमें माँ के पेट में सुई डाल के बच्चे से थोड़ा सा खून लेके उसका जांच किया जा सकता है और पता चल जाएगा कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है कि नहीं। हर साल इंडिया में करीब 20,000 बच्चे पैदा होते हैं थैलेसीमिया मेजर के साथ, और अगर जानकारी होगी सब परिवारों में तो आगे नहीं होगा हमारे देश में। इसका प्रिवेंशन के लिए केवल अवेयरनेस है, जागरूकता है, जानकारी होनी चाहिए। बच्चा पैदा करने से पहले बहुत सारे जांच माता पिता में होती है, तो थैलेसीमिया का टेस्ट भी आप करा लीजिए। अगर माता पिता दोनों थैलेसीमिया कैरियर्स हैं तो कोई बात नहीं, नॉर्मल बेबी भी हो सकता है, बट जो 25% खतरा है थैलेसीमिया मेजर होने का उसमें अगर आप टेस्ट करेंगे तो वो खतरा भी बिल्कुल शून्य हो जाएगा। इन बच्चों को क्योंकि खून की अति आवश्यकता होती है और हर महीने जिंदगी भर खून चढ़ाना पड़ता है, तो रक्तदान मैं सबको बोलूंगी कि सभी लोगों को रक्तदान करना चाहिए। केवल थैलेसीमिया नहीं बट और भी बच्चे हैं जिनको कैंसर होता है, या मरीज हैं जो एक्सीडेंट के मरीज हैं, या जिनको और कारण से खून चढ़ाना पड़ता है जैसे कैंसर वगैरह बीमारी, तो रक्तदान से आप लोगों की जान बचा सकते हैं। तो रक्तदान सबको करना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं, नॉर्मल हैं, तो आप हर 3 महीने में खून दान कर सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती है, इससे कोई असुविधा नहीं होती है, और आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। लास्ट में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जिन परिवारों में एक बच्चा है जिसको थैलेसीमिया मेजर है तो उनमें जितने भी लोग हैं सबको जरूर अपनी थैलेसीमिया कैरियर का स्टेटस पता होना चाहिए, और उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब शादी होएगी और बच्चा होगा तो उस टाइम पे टेस्ट करें, ताकि उनके और परिवार में और बच्चे ना पैदा हों जिनको थैलेसीमिया मेजर है। थैंक यू।
1: अब बात करते हैं एक थैलेसीमिया मेजर पेशेंट निष्ठा से।
2: नमस्कार, मेरा नाम निष्ठा है और मैं एक थैलेसीमिया मेजर पेशेंट हूँ। थैलेसीमिया मेजर जीवन यापन करना में बहुत ज्यादा सहयोग माता पिता का होता है, क्योंकि सबसे पहले तो उन्हीं को अपने आप को संभालना पड़ता है कि उनका एक बच्चा जिसका वो कब से इंतजार कर रहे थे उसको थैलेसीमिया जैसी बीमारी है जो उम्र भर के लिए है, तो सबसे पहले तो माता पिता को खुद संभालना पड़ता है ताकि वो हमें संभाल सकें। यही मेरे साथ भी हुआ था, पर मेरे माँ बाप ने अपने आप को बड़ा पक्का कर लिया कि हम इस बच्चे के लिए सब कुछ करेंगे और जो ये अपने जीवन में हासिल करना चाहेगी उसके लिए हम हमेशा उसके साथ देंगे। और आज मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ एंड मेरी भी फैमिली है थैलेसीमिया वर्कर्स के तौर पे, मैंने काफी काम भी किया है।

0: और कह सकते हैं कि मैं एक थैलेसीमिया एडवोकेट हूँ और जब मौका मिलता है थैलेसीमिया के बारे में लोगों को बताती हूँ, उनको अवेयर करती हूँ। आज के दौर में यदि आप कहें कि थैलेसीमिया अगर किसी को है तो वो क्या चैलेंजेस फेस करता है, तो ऐसे में बचपन में कई बार अवेयरनेस नहीं होती तो टीचर्स सोचते हैं हम इस बच्चे को किसी एक्टिविटी में लें या नहीं लें। कॉलेज में आते हैं तो फ्रेंड्स सोचते हैं क्या ये हमारी तरह है, और नहीं दिख रहा हमारी तरह या नहीं दिख रही तो क्यों नहीं दिख रही। लोगों को कई क्वेश्चंस होते हैं और सच मानिए मेरे साथ रह के लोग सरप्राइज भी हो जाते हैं कि यार ये तो थैलेसीमिया इतना बड़ा कुछ नहीं लग रहा। बट ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि सही समय पे सही ट्रीटमेंट मिल पाया मुझे, टाइम टू टाइम ट्रांसफ्यूजन्स हो पाए और किलेशन मिल पाई, आयरन किलेशन के लिए जो दवाइयां होती हैं वो मिल पाई। ये दवाइयां बहुत महंगी होती हैं, इसलिए थैलेसीमिया का सबसे बड़ा चैलेंज थैलेसीमिया को मैनेज करने का खर्चा भी है, क्योंकि डेस्ट्रॉल होते हैं वो इंजेक्शंस होते हैं जो 12-12 घंटे बच्चे लगाते हैं, बहुत महंगे होते हैं। दवाइयां होती हैं बहुत महंगी होती हैं, एक आम आदमी के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। और सबसे बड़ा चैलेंज तो ब्लड ही अरेंज करना होता है। ब्लड डोनेशन तो आप जानते ही हैं कि कितना नोबल कॉज है, पर क्योंकि हर महीने में 2 बारी रादर चाहिए होता है, एक बड़े थैलेसीमिया पेशेंट को महीने में 4 से 6 यूनिट चाहिए होते हैं, तो आज थैलेसीमिया डे पे मैं सबको 2 ही दरख्वास्त करूंगी कि आप शादी से पहले अपना थैलेसीमिया स्टेटस चेक कराएं, और यदि आप फिट हैं तो आप जरूर ब्लड डोनेट करें। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
2: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए,
3: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
2: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
3: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजे healthairdelhi@gmail.com पर।
1: ग्रीष्म ऋतु और आयुर्वेद, आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
3: हम साधारणतः ये सुनते आए हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसीलिए हमारी सेहत कार्यक्रम की आज की इस कड़ी में हम किसी बीमारी के क्योर पर नहीं बल्कि बात करेंगे बीमारी का बचाव कैसे हो, यानी प्रोटेक्टिव हेल्थ। इस पर आज खास बातचीत होगी हमारे गेस्ट के साथ, और विशेषकर हम बात करेंगे सीजनल हेल्थ प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस। हमारे साथ हमारे गेस्ट स्टूडियो में श्याम प्रिया जी, पहले स्वागत कर लेते हैं। श्याम प्रिया जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद शालिनी जी।
3: श्याम प्रिया जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं, आप वेलनेस ट्रेनर हैं, साथ ही साथ आयुर्वेद के जो प्रचार प्रसार में आप बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। साइंटिफिक तरीके से सोसाइटी में कैसे आयुर्वेद को पहुंचाया जाए, जन जन तक, लोक तक इसके जो गुण हैं वो सब समझें, उसको अपने जीवन में सम्मिलित करें, इसके लिए लोक आयुर्वेद संकल्पना के तहत आप विजन के तहत कार्य कर रही हैं, और क्लासिकल वेलनेस नॉलेज टू कॉमन मैन इन कॉन्टेम्प्रेरी वेज, ये आपका ध्येय है। मैंने सही कहा श्याम प्रिया जी?
4: जी बिल्कुल।
3: तो ये बताइए, हम बात की शुरुआत करें, हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके होंगे, हम साइंस ऑफ लाइफ कहते हैं आयुर्वेद शास्त्र को, पर वास्तव में आयुर्वेद हमारे जीवन का एक विज्ञान है, ये किस प्रकार से, इस पर भी हम बात करेंगे। पर कार्यक्रम में सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि जो हम ऋतु की बात करते हैं आयुर्वेद में, बहुत हम सुनते रहे अब ये ऋतु है, अब ग्रीष्म ऋतु है, अब बसंत ऋतु है, ये ऋतु होती क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है और कितनी प्रकार की होती हैं?
4: सबसे पहले तो आपके प्रश्नों का उत्तर शुरू करने से पहले
3: जी,
4: क्योंकि हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में चर्चा करेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में हमारा डाइट एंड लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ आयुर्वेद को लेकर चर्चा करने वाले हैं, तो मैं सबसे पहले वेदों के अधिष्ठाता जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, आयुर्वेद के सभी पूर्व आचार्य और मेरे वर्तमान के आचार्य वैद्य हितेश जानी जी को चरण वंदन करती हूँ, और हमारे AIR के सुनने वाले सभी श्रोताओं को शामप्रिया का नमस्कार। तो अब मैं आपके प्रश्न पे आती हूँ कि ऋतु क्या होती है
3: जी?
4: तो ऋतु का अर्थ है परिवर्तन, और ये संस्कृत शब्द ऋत से आया है। ऋत का अर्थ होता है सर्वमान्य नियम, वो परिवर्तन जो सबको मानना पड़ेगा, कोई भी उस परिवर्तन से बच नहीं सकता,
3: मतलब जो नेचुरल है,
4: नेचुरल है, प्राकृतिक है, और हर जीव उस नियम के अधीन है। तो इस प्रकार से ऋतु शब्द का अर्थ हुआ परिवर्तन। फिर बाद में

0: इसको हम आगे जब आगे भी चर्चा करेंगे कि इसको आयुर्वेद शास्त्र स्वास्थ्य से या ऋतु से कैसे जोड़ता है वो हम आगे चर्चा करेंगे। अपनी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भारत ऐसा देश है जहां पे भारतवासी ये पूरी 6 ऋतुओं का अनुभव कर सकते हैं। बाकी देशों में तो बहुत सारी ऋतुएं देखने को नहीं मिलती, या तो बर्फ पड़ती है या नहीं पड़ती है, या सिर्फ सर्दी रहती है या सिर्फ गर्मी रहती है। लेकिन भारत की जलवायु और भारत की भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि भारतवासी 6 ऋतु का अनुभव करता है। आयुर्वेद का मूल उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, उसका आहार कैसा होना चाहिए, उसकी निद्रा कैसी होनी चाहिए, उसका विहार कैसा होना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए पूरी दिनचर्या में, ऋतुचर्या में उसे क्या करना चाहिए, तो ये सब साइंस थी, स्वास्थ्य की साइंस। और दादी नानी इसको जानती थी।
1: जी बिल्कुल सही कहा।
0: सिर्फ हमें दादी नानी को याद करना है।
1: बस। और वो जो जानकारी उन तक थी उसको हमें कोशिश करना है, हम दोबारा से अपने जीवन में लेकर आए।
0: बिल्कुल,
1: जहाँ जहाँ हम छूट रहे हैं।
0: लोक आयुर्वेद एक्चुअली यही संकल्पना है जो आचार्य चरक ने सोचा था कि जन जन कैसे स्वस्थ रहे। सिर्फ वो चिकित्सा नहीं करते थे, वो ये भी सोचते थे कि दादी कैसे स्वस्थ रहेगी, नानी ये पूरा घर कैसे स्वस्थ रहेगा, समाज कैसे स्वस्थ रहेगा, चिकित्सा ही हम नहीं करेंगे। तो लोक आयुर्वेद उसी संकल्पना का नाम है कि थोड़ा सा जो हम सिर्फ भूल गए हैं, भारतीयों के कहते हैं ना हमारे तो डीएनए में वो ज्ञान है, हम तो ऋषियों की संतान है, तो सिर्फ ये याद कराने की प्रक्रिया है और कुछ नहीं, वो हमारे अंदर ही है, सिर्फ आवरण हटाना है।
1: अच्छी बात आपने बोली, हमारी दादी नानी या हमारे पूर्वज ये जानते थे कि किस तरह से जीवन को जीना है आयुर्वेद के साथ, इसीलिए शायद वो बहुत स्वस्थ उन्होंने जीवन जिया। और आज भी अगर हम देखते हैं हमसे 2 पीढ़ी पहले हमारी नानी हमारी दादी अगर है तो बहुत हेल्दी अभी भी है। और ये आम एक धारणा है, लोग आम बोलते हैं कि आजकल तो हम अभी इसी उम्र में हमारी ये हालत है, हम इनकी उम्र तक पहुंचेंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो अगर हम आयुर्वेद को अपनाते हैं तो हमारा जीवन उतना ही स्वस्थ हो सकता है, ऐसा मुझे आपकी बातों से लगता है।
0: बिल्कुल, जो बुद्धिमान व्यक्ति अच्छी आयुष्य चाहता है, क्योंकि उसे पता है स्वस्थ आयु से ही जीवन के चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है, धर्म अपनी ड्यूटीज निभाना, कामना काम मतलब कोई भी डिजायर पूरी करना, अर्थ पैसा कमाना, और मोक्ष भगवत प्राप्ति करना, तो मानव जीवन के ये चार उद्देश्य हैं। अगर किसी व्यक्ति को इनको पाना है, चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति करनी है, तो अच्छी आयु उसका आधार है। अतः आयुष्य चाहने वाला बुद्धिमान व्यक्ति सदा आयुर्वेद के उपदेशों का विधेयात्मक रूप से पालन करता है। ऑप्शन नहीं है, इट इज एसेंशियल साइंस। आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादर, करना ही चाहिए।
1: आयु चाहिए, स्वस्थ आयु चाहिए, तो आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें अभी आपने बताई। हमने शुरू में जो पहले आपसे प्रश्न किया था ऋतु के बारे में जाना था, आपने बताया कि ये ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं। ये भी बताइए कि ये जो ऋतुएं हैं या सीजन्स हैं जो आपने बताए हैं, ये हमारे हेल्थ को हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है, इसकी साइंस क्या है?
0: बहुत ही सुंदर
1: आपने बता दिया,
0: बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। तो अभी क्योंकि ग्रीष्म ऋतु शुरू हो रही है तो हम ग्रीष्म ऋतु पे के सीजन पे ज्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन उस पे आने से पहले ये ऋतु मुझे कैसे प्रभावित कर रही है, हाउ सीजन इम्पैक्ट्स ह्यूमंस, तो पहले हम इसका थोड़ा विज्ञान जानते हैं तो हम अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे कि व्हाई वी शुड फॉलो सीजनल डाइट एंड लाइफस्टाइल। तो वो ये कहते हैं कि सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, महर्षि चरक ने बोला सृष्टि की सभी वस्तुएं पंच महाभूतों से मिलकर बनी हैं। इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर हम रामचरितमानस पढ़ें तो भी तुलसीदास ने बोला क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। तो सृष्टि की सभी वस्तुएं पंच महाभूतों से मिलकर बनी हैं। वो क्या है? वो है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये पंच महाभूत इस पिंड यानी शरीर को बनाता है, और यही पंच महाभूत इस ब्रह्मांड को यानी प्रकृति को बनाता है। तो जब प्रकृति में चेंज होगा तो मुझ में भी चेंज होगा, क्योंकि मैं इस सृष्टि का हिस्सा हूं, इस पंच महाभूत का हिस्सा हूं। जब बाहरी पंच महाभूतों में चेंज होगा तो अंदर के पंच महाभूत भी प्रभावित होंगे। तो इस साइंस को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि ये तो सृष्टि का नियम है। और अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो जिस तरह से हम अगर हम इसे हम आभासित भी करते हैं कई बार कि जैसे सर्दी आती है तो मेरी भूख अपने आप बढ़ जाती है, गर्मी आती है तो भूख अपने आप कम हो जाती है, तो ये कैसे हुआ? ये मेरी जठराग्नि मतलब मेरी डाइजेस्टिव फायर मेरी पाचन शक्ति कम ज्यादा कैसे हुई? क्योंकि सूर्य ने मुझे इम्पैक्ट किया। और सूर्य ने मुझे क्यों इम्पैक्ट किया? क्योंकि जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री के कोण पर जो ऑर्बिट है सूर्य का उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। 365 डेज में वो चक्कर पूरा होता है जिसमें 6 ऋतुओं का निर्माण होता है। ये साइंस तो हम पढ़ते हैं, ऋतु चक्र।

0: है। तो जब जब पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी की प्लेसमेंट सूर्य के हिसाब से कॉरेस्पॉन्डिंग जिस जिस तरह से जाती है, वैसे वैसे चेंजेस हमारे ऊपर आते हैं, हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं।
1: तो ये बात तो समझ में आ गई, बहुत स्पष्ट है, आपने बोला ये साइंस है और सबको ही पता है कि जब प्रकृति के उसमें बदलाव आएगा तो वो हमारे शरीर को भी, हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। अब क्योंकि हम ग्रीष्म पे बात कर रहे हैं, गर्मियां हैं, गर्मियों में अपने आप, आपने बताया भूख कम हो जाती है, हमने ये एक नॉर्मल एक सेटिंग है बॉडी की, लेकिन हमें क्या खाना चाहिए? कम हो जाती है पर फिर भी हम क्या खाएं जो हमारे शरीर को लगे और हमें स्वस्थ रखे, तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए?
0: बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, ये हेल्थ जो है ना, ये विजडम का विषय है,
1: बिल्कुल है,
0: बुद्धि का विषय है। और जो विवेकवान व्यक्ति है, जो कहते हैं ना कि इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत अच्छा हेल्दी रह सकता है। और हमारे आचार्य भी मानते हैं कि ये सिंपल बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत, वो जो भी कहते थे वो साइंटिफिक था, उन्होंने बहुत रिसर्च किया ह्यूमन बॉडी पे, उन्होंने प्रकृति पे रिसर्च किया। तो वो कहते हैं अभी ग्रीष्म ऋतु आई है तो ऑब्जर्व करो क्या चल रहा है प्रकृति में। वो कहते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे सब सूख गए हैं, इतना ज्यादा ताप बढ़ जाता है, सब धरती में दरारें आ जाती हैं, हमारा खुद का भी, हमें लगता है कि हम, हमारे अंदर का जो उष्णता है वो बढ़ गई है, हमारा मतलब गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये एक पॉइंट हुआ। और दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ, ये एक हमने फील किया कि हमारे अंदर गर्मी कुछ बढ़ गई है, ये हमने फील किया। ये मतलब ये चीजें जो है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हर व्यक्ति उसे अनुभव करता है, और वो ये नहीं कह सकता कि मैं इसे नहीं मानू,
1: इसे नहीं मानू।
0: तो पहला हमने अनुभव किया कि बहुत गर्मी बढ़ गई है, दूसरा क्या अनुभव किया कि मेरा बल कम हो गया है। कहते ना कि बाहर धूप से थकावट लगती है, और मतलब मुझे तो चक्कर आ रहे हैं धूप से आकर, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, भूख कम हो गई है, मतलब जठराग्नि, अग्नि बल उसको बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में, अग्नि बल कम हो गया है, शारीरिक बल भी कम हो गया है, क्योंकि अंदर से लग रहा है कि कुछ ज्यादा ताकत नहीं है, तो शारीरिक बल भी कम हुआ है और गर्मी बढ़ी है। तो अब इन सब चीजों को देखते हुए हमारी फूड प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? गर्मी को कम करना है तो शीतल रसों का सेवन, और भूख कम है तो मैं ज्यादा हैवी डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो लिक्विड डाइट का डिसीजन करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ शारीरिक बल भी कम है तो मुझे बलवान रसों का सेवन करना पड़ेगा। तो अब ये देखिए, ये पूरा मतलब सिंपल, दादी नानी इसी तरह से प्लानिंग करती थी कि अभी शीतल रसों का कैसे सेवन करेंगे। शीतल रसों का सेवन, कोल्ड ड्रिंक नहीं, वो द्रव्य जो नेचुरल रूप से बॉडी को शीतलता प्रदान करें, उनको द्रव्य के रूप में, उनको लिक्विड के रूप में आपको सेवन करना चाहिए।
1: मतलब जो नेचुरल सोर्सेज हैं, हाँ, जो भगवान ने हमें दिए हैं, हाँ, यानी जो फल हैं,
0: हाँ,
1: जो सब्जियां हैं, उन्हीं से ही हम,
0: जिनकी खुद की प्रकृति ठंडी है, ठंडी तासीर है जिनकी, हाँ, जैसे गुलाब आपको ठंडक ही देगा, जैसे बेल आपको ठंडक देगा, आम, फालसा, इस ऋतु के फल ऐसे ही आएंगे जो आपको प्राकृतिक ठंडक देंगे। तो उन प्राकृतिक ठंडक देने वाले द्रव्यों का रसपान, उसे कोल्ड ड्रिंक बोला गया। और दूसरा, अब मुझे तो बल चाहिए, तो फिर मुझे जो टेस्ट है, मतलब जो मेरी कोल्ड ड्रिंक जिसे हम कहें या शीतल पेय, जो आयुर्वेद के शीतल पेय है, तो उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए? तो मधुर, अम्ल, लवण, हमारे छह रस होते हैं खाने में। आप कभी कहते हैं ना कि हर व्यक्ति ये छह रस फील करता है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो मधुर मीन्स मीठा, अम्ल मीन्स खट्टा, लवण मीन्स नमकीन, कटु मीन्स जो है हमारा थोड़ा उष्ण, मतलब कि काली मिर्च जैसे, और तिक्त मीन्स कड़वा, नीम, और कषाय मीन्स कसैला, जैसे जामुन। तो ये छह रस, हमारे षड रस बोलते हैं इसको, ये हर व्यक्ति भोजन में फील करता है। और
1: षड ऋतु
0: षड रस,
1: तो ये बहुत आसानी से
0: समझ आए। तो मधुर, अम्ल, लवण, ये बलवान रस हैं, आपको बल देते हैं। कहते हैं ना, बड़ा मीठा खाया, मजा आ गया। तो मजा किसको आया? मन को तृप्ति हुई। मधुर रस तृप्ति करता है, अम्ल रस भी कहते खट्टा मीठा टेस्टी था, तो तृप्ति हुई तो बल मिला। ऐसे ही नमकीन चीजें खाके भी बल मिलता है। तो मधुर, अम्ल, लवण, मतलब पहले के जो ये तीन रस हैं, आप क्रम में हम याद कर सकते हैं, वो बलवान रस हैं, वो बल प्रदान करते हैं। और जो पीछे के तीन रस हैं, कटु, तिक्त, कषाय, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो आप खाना खा के सौंफ खाते हो ना, खाना खा के इलायची खाते हो ना, तो ये सब कटु, तिक्त, कषाय रस हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन इनका सेवन ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन मधुर, अम्ल, लवण का ज्यादा थोड़ा, क्योंकि ऋतु ऋतु के हिसाब से सेवन करना। वो कहते हैं नित्यम सर्व रस अभ्यासः, नित्य सभी रसों का सेवन करना चाहिए, बट स्वास्वाधिक्यामृतावृतो, लेकिन जिस जिस ऋतु में ऋतु के अनुसार जिस जिस रस के सेवन का अधिकता से प्रयोग बताया गया उस ऋतु में उस रस का ज्यादा सेवन करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशियस डाइट,
1: दिस इज कॉल्ड आयुर्वेद,
0: दिस इज कॉल्ड आयुर्वेद।
1: ये आपने आज बताया कि अगर शीतल पेय है वो कौन सा पेय होना चाहिए जो आपको गर्मियों में लेना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। अच्छा, ये तो खाने पे आपने काफी अभी बताया, ये बताइए क्या लाइफस्टाइल भी, कोई एक्टिविटी भी कोई ऐसी होती है कि ये करनी चाहिए गर्मियों में या नहीं करनी चाहिए?
0: बिल्कुल, हमारी कहते हैं ना कि हमारी हर मूवमेंट हमारा स्वास्थ्य बनाती है। आप बताइए, अगर आप ठीक से नहीं सोएंगे तो बीमार हो जाएंगे, आप ठीक से नहीं देखेंगे तो बीमार हो जाएंगे, आप ठीक से नहीं सुनेंगे तो बीमार हो जाएंगे, आप ठीक से नहीं बोलेंगे तो बीमार हो जाएंगे, आप ठीक से नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। खाने को हमने कहा आहार, क्योंकि वो थोड़ा व्यापक क्षेत्र है, तो हमने उसको पूरा नाम दिया आहार। और ये जो बाकी एक्टिविटीज हैं, बोलना, सुनना, चलना, देखना, आप देखिए ना, कहते ना मैं कल अच्छे पोस्चर में नहीं बैठा तो मेरी कमर में दर्द हो गया। एवरी एक्टिविटी ऑफ आवर, मतलब कहते ना कि हम दिन में कुछ भी काम करें वही हमारी हेल्थ है
1: जी।
0: तो उसको सही प्रकार से करना कहलाता
1: है। क्या है सही प्रकार, वो बताइए।
0: तो सही प्रकार ये है कि ग्रीष्म ऋतु का आपका जो प्लानिंग होना चाहिए, तो कैसे हम कैसे प्लान करें, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उठ के एक्सरसाइज करते हैं जनरली हम, तो उस ऋतु में कहा गया अधिक व्यायाम ना करें। हमारे यहाँ व्यायाम की प्लानिंग ऐसे नहीं होती थी कि भाई आप 45 मिनट इन अ डे या 1 आवर इन अ डे। वयो बल शरीरानी देश काल अशनानी चा समीक्षा या कुरियात व्यायाम अन्यथा रोग मापनीयात, कि आप अगर ये सारे पैरामीटर्स जो मैं आपको बताऊंगी अभी इनको नहीं देख के आपके एक्सरसाइज प्लान करेंगे तो आपको फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाएगा। समीक्षा या कुरियात, समीक्षा करो, देखो क्या आप ये सारे पैरामीटर्स को मीट कर रहे हो, देन यू प्लान योर एक्सरसाइज, अदरवाइज रोग मापनीयात, अदरवाइज आपको रोग हो जाएंगे। तो वो पैरामीटर्स क्या है, वयो बल शरीरानी, वयो अभी कौन सी अवस्था में हूँ, 80 साल का हूँ या 18 साल
1: पहले आप अपनी उम्र को देखें कि आप
0: बल एक होता है अपने, हर किसी की अपने अपनी
1: सीमा
0: होती है। मैं तो 100 कदम चल के भी शायद थक सकती हूँ, पर आप हो सकता है कि 400 कदम चल के भी ना थकें। तो एक प्राकृतिक बल होता है हर व्यक्ति का जो उसको जन्म से मिलता है, अपनी इम्यूनिटी होती है। तो बल आपका खुद का बल कितना है, शरीर आपकी बॉडी टाइप क्या है, आप वातज प्रकृति हो तो आप तो वैसे ही चलते फिरते रहोगे, आपको ज्यादा एक्सरसाइज नहीं चाहिए। पितज हो तो मध्यम प्लान करो, कफज हो तो आपका तो बहुत लेजी नेचर है, थोड़ा मतलब बैठने का नेचर है, तो आप ज्यादा एक्सरसाइज करो, आपको जल्दी मोटापा आएगा। तो पहला पैरामीटर वयो अवस्था, एज, बल इम्यूनिटी आपकी नेचुरल इम्यूनिटी, शरीर आपके शरीर की प्रकृति क्या है, काल देश अशनानी चा ऋतु कौन सी चल रही है भैया। अगर ग्रीष्म ऋतु चल रही है तो वैसे ही शिकंजी पी रहे हो, आप लिक्विड डाइट खा रहे हो तो गाजर का हलवा तो खा नहीं रहे हो, तो ज्यादा एक्सरसाइज नहीं चाहिए। वही हेमंत और शिशिर ऋतु होती सर्दी की तो मैं ज्यादा एक्सरसाइज प्लान करती। तो इस तरह से काल और जो बाकी है देश काल अशनानी चा, देश तो देश कौन सा है, आप कहाँ रहते हो, उसकी जलवायु कैसी है,
1: क्या,
0: और क्या खाते हो, और अशन ये लास्ट में आएगा जो क्या खाते हो आपने बोला।
1: अच्छा,
0: अशन होता है खान पान, कि मैं संत हूँ मैं तो एक ही टाइम भिक्षा मांग के खा रहा हूँ, तो उसके क्या वो एक्सरसाइज प्लान करेगा। या आप ग्रस्त हो तो आप दो टाइम ही खाते हो, ज्यादा आपका ग्रस्त में भी ज्यादा खान पान नहीं है, या आप मतलब कहते हैं कि नॉर्मल खाना खाते हो, बहुत आपकी डाइट नहीं है, तो आप नॉर्मल एक्सरसाइज कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मतलब ऐसी एक्सरसाइज आपको लाभ करेंगी। बहुत रिग्रस जिम वाली एक्सरसाइज आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप खाते ही रहते हो, खाते जाओ तो फिर तो आपको ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो
1: एक्सरसाइज भी तो नियंत्रित करना पड़ेगा,
0: आहार भी करना पड़ेगा। तो ये सब लिंक्ड है, ये सब लिंक्ड है, क्योंकि हम प्लानिंग तो कर रहे हैं एक्सरसाइज की, पर यहाँ फूड की बात चली है। आपको एक्सरसाइज प्लान होनी चाहिए ये सारे पैरामीटर्स को देखते हुए, ना कि आपने किसी व्यक्ति को फिक्स कैसे कर दिया कि 45 मिनट्स इन अ डे, 1 आवर इन अ डे।
1: इसका ये मुझे मतलब समझ में आया श्याम प्रिया जी, कि अगर हम ये प्लान कर रहे हैं कि हमें एक्सरसाइज करना है तो हमें किसी से एडवाइस लेनी चाहिए, जो एक योग गुरु है जो भी हमें ये एडवाइस कर सके कि क्या काल है, क्या आपके बॉडी
0: कंस्टिट्यूशन है,
1: आयुर्वेद
0: बताएगा,
1: कि उनसे गाइडेंस लेके ही करना चाहिए। ये नहीं कि आपने सुनी सुनाई मेरा दोस्त कर रहा है, मेरा पड़ोसी कर रहा है, तो नहीं, कर लिया,
0: वो आपको नुकसान भी कर सकता है,
1: नुकसान भी कर सकता
0: है। और एक और मैं आपको बात बताऊं कि जो बॉडी टाइप है वो दादी जानती ही थी, दादी बताती थी इस बच्चे को केला मत देना, इसकी तासीर ऐसी नहीं है। तो दादी नानी अनुभव से जानती थी, क्योंकि अब हमारा अनुभव उतना नहीं रहा तो हम किसी आयुर्वेदाचार्य से, अच्छे आयुर्वेदाचार्य से नाड़ी परीक्षण करके अपने शरीर की प्रकृति जान सकते हैं। बिल्कुल, और जाननी ही चाहिए, बिकॉज मेरी प्रकृति

0: जानू
1: जी जी,
0: और मेरी प्लानिंग मैं क्यों ना कर सकूं, ये तो विजडम का विषय है।
1: बहुत सारी चीजें हैं और आपने बहुत सारी चीजें जल्दी जल्दी भी बताई क्योंकि समय का सच में हमारे पास अभाव है। हमारे पास चलते चलते क्या आप वर्ड्स ऑफ विजडम देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं?
0: स्वस्थ रहना है वो बुद्धि का विषय है, स्वास्थ्य विवेक हेल्थ विजडम। हमें क्या करना चाहिए, विवेक जागृत कैसे होगा, तो हमें सिर्फ गुणों को देखना है। गुणों मीन्स मेरे गुण क्या है, मेरी प्रकृति क्या है, प्रकृति के मतलब ऋतु जो आई प्रकृति में उसके गुण क्या है, जो मैं द्रव्य जो मैं फूड आइटम खा रहा हूँ उसके गुण क्या है। मतलब अगर मैं ये कहता हूँ कि बादाम तो बहुत अच्छा है, पर बादाम मेरे गुणों के हिसाब से अनुकूल हो रहा है या नहीं। जो मैं आइटम खा रहा हूँ वो जैसे गन्ना है, अब गन्ना तो बहुत अच्छा है लेकिन सर्दियों में गन्ने को खाने के लिए सॉलिड ही गन्ना खाना पड़ेगा क्योंकि उस समय में हमको थोड़ा डिफरेंट बल चाहिए, सर्दी को हमको कवर अप करना है। लेकिन गर्मी में गन्ना खाना है तो लिक्विड फॉर्म में ही खाना पड़ेगा। तो आपने अब आपको चयन करना पड़ेगा। तो ये विजडम की बात है कि अभी ऋतु कौन सी चल रही है, तो जो मैं खाने वाली वस्तु है उसके गुण क्या है, उसको मैं किस फॉर्म में खा रहा हूँ। तो आपको ये पूरे गुणों की साइंस है।
1: आप हमारे स्टूडियो में आई और इस विषय पर इतनी विस्तृत जानकारी आपने हमारे साथ शेयर करी, हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके।
0: थैंक यू सो मच।
2: अभी आप ग्रीष्म ऋतु और आयुर्वेद इस विषय पर श्याम प्रिया से ली गई भेंट वार्ता सुन रहे थे। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका।
4: नमस्कार, धरती आकाश कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का स्वागत है।
5: हम सब ने इतिहास का अध्ययन अपने स्कूल के लाइफ में जरूर किया है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी इतिहास का अध्ययन भी एक विज्ञान है। तो जो हिस्ट्री ऑफ साइंस कहते हैं या साइंटिफिक रिसर्च बिहाइंड जो हिस्टोरियन और हिस्ट्री है डिफरेंट कंट्री के, उनकी जो पता लगता है किस तरह से किया जाता है। और जब हम कहते हैं कि इतिहास का अनुसंधान की बात करते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग उस अनुसंधान के लिए किस तरह से किया जाता है, तो यह एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग उत्सुकता का विषय हो जाता है। हम वैज्ञानिक समझ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का प्रसारण करते रहते हैं और उसमें ऐसा कहा जाता है कि हर देशवासी को अपने देश के इतिहास का अध्ययन जरूर करना चाहिए ताकि उन्हें पता लगे कि हम पूर्व में क्या थे और किस तरह से हम आगे उसका फायदा उठा करके अपना एक समग्र विकास कर सकते हैं। इतिहास के विज्ञान और इतिहास के अनुसंधान पर किस तरह की जानकारियाँ और अध्ययन किए गए हैं और किस तरह से ये आजकल के विद्यार्थियों को समाज के लोगों को लाभान्वित कर सकता है उसकी जानकारियाँ, इन सब से जुड़ी बातों पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर देवेश विजय। डॉक्टर देवेश विजय पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर है जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में और इन्होंने इतिहास के अनुसंधान और इतिहास के विज्ञान पर काफी अध्ययन किया है। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं जिसमें उन्होंने वैज्ञानिक विचार, तकनीकी नवाचार और औद्योगिक प्रगति ने किस तरह से आधुनिक समाज को आकार दिया है, इस सब पे इन्होंने अध्ययन किया और अपनी बातें रखी है। डॉक्टर देवेश विजय जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
6: धन्यवाद।
5: सबसे पहले हम आपके माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे अपने सुनने वालों के लिए भी कि समाज शास्त्र इतिहास ये सब कुछ मानव विज्ञान के दृष्टिकोण को दिखाता है। जब हम इसको समझने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता लेते हैं तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इतिहास के अध्ययन में किस तरह से उपयोगी हो रहा है?
6: आपने दो जुड़ी हुई बातें उठाई हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं दोनों, कि इतिहास और समाजशास्त्र किस रूप में वैज्ञानिक विधा है और जो विज्ञान का अपना इतिहास है वो हमें क्या दर्शाता है, समाज पर विज्ञान का तकनीक का कैसे असर पड़ा है। तो जो पहली बात है कि इतिहास और अन्य समाजशास्त्र मानविकी से थोड़े अलग है, जिसमें आते हैं लिटरेचर फिलॉसफी, वो इस दृष्टिकोण से कि इनका एक वैज्ञानिक विधि होती है, इनमें कल्पना और एब्स्ट्रैक्ट तर्क की बजाय पुख्ता जानकारी। विज्ञान का मतलब क्या है? पुख्ता जानकारी जो कि लॉजिक और कॉरोबोरेटेड फैक्ट्स के आधार पर रची जाती है और ट्रांसमिट की जाती है। और जो प्योर साइंटिस्ट होते हैं उनके पास एक एक्स्ट्रा मेथड होता है एक्सपेरिमेंट का। अब समाजशास्त्र में हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि मानव पर एक्सपेरिमेंट करना नैतिक दृष्टि से उचित नहीं।

0: हिंदुस्तान में ही सबसे पहले आजादी का आंदोलन सफल हुआ, जबकि चल तो सब जगह रहे। तो ये होता है कंपैरेटिव मेथड, जो हमें कुछ वैज्ञानिक पुट लाने की हमें सुविधा देता है समाजशास्त्र में और इतिहास में। अब आपने दूसरा सवाल उठाया था कि विज्ञान का जो इतिहास है वो हमें क्या दर्शाता है कि विज्ञान और तकनीक समाज पर कैसे असर डालती है। तो उसमें देखिए, सबसे पहली गौर करने वाली बात यह है कि जब भी हम किसी भी चीज के परिणाम ढूंढते हैं और कारण ढूंढते हैं, यही हम इतिहास में पढ़ते हैं, 1857 के कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या निकले, अमरीकी क्रांति के कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या निकले। तो इनको हमें त्वरित और लॉन्ग टर्म दोनों स्तरों पे ढूंढना चाहिए। और जो लॉन्ग टर्म परिणाम होते हैं किसी भी साइंटिफिक खोज के या तकनीकी नवाचार के, वो कुछ इंटेंडेड होते हैं यानी कि अपेक्षित होते हैं, कुछ अनपेक्षित होते हैं। इन दोनों को देखना होता है, यानी कि चार तरीके के परिणाम हमें देखने चाहिए। और वो फिर चार स्तरों पर देखे जाते हैं, राजनीतिक परिणाम, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। पर खास बात यह है कि लॉन्ग टर्म भी देखे जाए, दीर्घगामी और तात्कालिक, और अपेक्षित और अनपेक्षित। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा कि हमने एजुकेशन को अब राइट बना दिया, अब ये उसका अपेक्षित परिणाम है कि उससे प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, स्टूडेंट्स जो पास आउट करके निकलते हैं, अब गरीब को भी मौका मिल रहा है, हरेक का राइट है, वो स्कूल मांग सकता है कोर्ट जाकर अगर स्कूल पास में नहीं है, तो उससे तो इकोनॉमिक ग्रोथ हर चीज में और रोजगार वगैरह में सहायता मिलनी चाहिए। लेकिन अनपेक्षित परिणाम ये निकला कि बेरोजगारी बढ़ गई, क्योंकि जो पढ़ लिख जाता है वो कुछ खास तरीके के रोजगार में लगना चाहता है, वो हर तरीके के रोजगार में लगेगा। इसलिए गरीब अनपढ़ आदमी बहुत ही कम बेरोजगार होता है, पढ़े लिखों में ज्यादा बेरोजगारी होती। तो ये हो गया अनपेक्षित परिणाम। इसी तरह से साइंस टेक्नोलॉजी ने तो दुनिया को बदला है। देखिए, दुनिया बदलती है कई कारणों से, मानव समाज बदला है, उसमें जो फास्टेस्ट इन्फ्लुएंस आता है वो तकनीक का आता है। पत्थरों के औजार बनाने से शुरू करने से पहले, आग का कंट्रोल ढूंढने से साथ, या पहिया बना वहां से शुरू करके, वो जो स्टोन एज थी उस समय चेन बहुत स्लो था, लाखों साल में कोई नई खोज होती थी, आज तो हर हफ्ते। अब हम पोस्ट मॉडर्न युग में है, मॉडर्न युग में भी नहीं है, अब रफ्तार परिवर्तन की तकनीक बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से चेंज हो रही है।
1: बिल्कुल, प्रौद्योगिकी के विकास ने जो है, खास करके जो वैज्ञानिक नवाचार जो है ना, उसने क्या है, मानव के विकास में एक नई उड़ान दी है, समाज उस दिशा में तेजी से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि हम धरती से ऊपर उठकर अब ग्रहों की ओर जा रहे हैं, वहाँ भी हम संसाधनों की तलाश कर रहे हैं। आपका 3 दशकों से ज्यादा का शिक्षण अनुभव है, और आप इतिहास, विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इतिहास की भी बात करते हैं, तो जब हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति से लेकर के वर्तमान के समय तक, तो आपको क्या लगता है कि बौद्धिक दृष्टिकोण में या वैज्ञानिक दृष्टिकोण में किस तरह से अंतर आए हैं?
0: देखिए, जैसा मैंने कहा, आधुनिक युग में रफ्तार पकड़ी साइंस ने, और ये शुरू हुआ रेनेसां, पुनर्जागरण के काल से यूरोप में। उससे पहले चीन, भारत वगैरह काफी आगे थे विज्ञान में, लेकिन पुनर्जागरण ने यूरोप को एक नई रफ्तार दे दी। वो गैलीलियो का युग, फिर बाद में न्यूटन, तो उनके तो जवाब नहीं है। और उसके बाद फिर आइंस्टाइन ने न्यूटन का पूरी जो दृष्टि थी उसको बदल दिया, क्योंकि उस समय तक तो रिलेटिविटी का अंदाजा ही नहीं था। फिर उसके बाद अब आजकल क्वांटम फिजिक्स आ गया है, क्वांटम मैकेनिक्स, वो आइंस्टाइन को भी बदल रहा है थोड़ा। तो ये मुख्य जो बड़े बड़े पैराडाइम यानी कि दृष्टियां वैज्ञानिकों की हैं, वो बदलने का इतिहास है। लेकिन जैसा मैंने कहा, प्राचीन काल में हिंदुस्तान और मध्य काल में चीन यूरोप से कहीं आगे। जैसे उदाहरण के लिए मैथमेटिक्स में हमारे यहाँ जो ब्रह्मगुप्त ने या आर्यभट्ट ने जो खोजें की हैं, जीरो का जो महत्व है, ये बहुत बड़ी कल्पना शक्ति चाहिए थी इसको समझने के लिए। सारी दुनिया ने उसको बाद में अपनाया, डेसिमल सिस्टम। और इसी तरह से एस्ट्रोनॉमी में आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया कि एक्सिस पर पृथ्वी घूमती है सूरज के साथ, तो ये तो न्यूटन से पहले यहाँ पर
1: कंसेप्ट आ गया था।
0: कितनी तीव्र कल्पना शक्ति रही होगी। मेडिसिन में वैदिक काल से हमारा जो हीलिंग सिस्टम है, थेरेपीज है, आयुर्वेद और योगा, ये तो दुनिया के लिए गिफ्ट है। और उससे भी पहले जो इंडस वैली का है, जो टाउन प्लानिंग, उस तरह की तो आज मॉडर्न टाइम्स में आके आप आइए, वरना वो कहीं मिली नहीं। वो ड्रेनेज सिस्टम, वो पूरा ग्रिड पैटर्न और पब्लिक बाथ, ये सब चीजें तो
1: बिल्कुल।
0: चीन वो देश है जिसने सबसे पहले किताब बनाई, प्रिंटिंग जहां सबसे पहले शुरू हुई, दुनिया का पहला सेंसस चीन में हुआ, सिविल सर्विस एग्जाम चीन में सबसे पहले शुरू हुआ। जमींदारों पर कंट्रोल करने के लिए एक मैजिस्ट्रेट होना चाहिए, वरना हर जगह जमींदार जुल्म चलता था। तो ये सब चीन में पहले शुरू हुआ,
1: बारूद का आविष्कार।
0: हाँ, चीन में बारूद सबसे पहले चीन में बना। तो लेकिन रेनेसां यानी कि 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी से यूरोप ने बढ़त हासिल कर ली,
1: पुनर्जागरण का
0: जो काल था, उसके बाद वैज्ञानिक क्रांति, न्यूटन का काल, और फिर औद्योगिक क्रांति।
1: बहुत अच्छा। एक बात होती है कि विकास का समाज।

0: अर्थशास्त्र, जिसे सोशियोलॉजी ऑफ अंडर डेवलपमेंट भी कहते हैं, और साथ ही आधुनिक शहरीकरण की जो बात करते हैं। एक तो हमने अपने सिंधु घाटी सभ्यता के शहरीकरण की बात की कि किस तरह से प्लान टाउन प्लानिंग होती थी किस प्लान में। अब वर्तमान समय में देखते हैं अर्बेनाइजेशन की अपनी रफ्तार है, उसी जुड़ी हुई अपनी समस्याएं हो रही है। तो ये जो एक अंडर डेवलपमेंट के साथ जो एक अंडर डेवलपमेंट के दुष्परिणाम भी आ रहे हैं, तो इस प्रक्रिया में आपको क्या लगता है कि कमी कहाँ है और प्रौद्योगिकी इसमें कैसी भूमिका निभा सकती है?
1: देखिये, जैसा मैंने कहा था कि समाज में इंसान विकास चाहता है, क्योंकि विकास बहुमुखी होना चाहिए, केवल आर्थिक तरक्की नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य सबसे ज्यादा, और उसके अलावा नैतिकता का विकास भी होना चाहिए। अब इन सब में अच्छा गवर्नेंस भी चाहिए, तभी हो पाएगा, अच्छी यानी कि राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, और सांस्कृतिक पहलू मजबूत होना चाहिए, परिवार इत्यादि मजबूत होने चाहिए, पर सबसे जो तेजी से असर डालता है वो है टेक्नोलॉजिकल चेंज। लेकिन टेक्नोलॉजिकल चेंज की एक दिक्कत यह है कि उसके अनपेक्षित दुष्परिणाम भी निकलते हैं। टेक्नोलॉजी विकास कर रही है, अविकास भी उसका एक पहलू है, क्योंकि कुछ प्रदेश आगे निकल जाएंगे, कुछ उसी रफ्तार के कारण पीछे रह जाएंगे, असमानता बढ़ेगी, तो असमानता फिर प्राकृतिक संपदा पे दुष्परिणाम, ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, बहुत सारे उसके तकनीकी विकास के दुष्परिणाम भी होते हैं। यहीं पर हमें उचित नीतियां चाहिए। ये नहीं है कि हमें टेक्नोलॉजी को धीमा कर देना है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसके लिए अच्छी बौद्धिक स्तर पर भी चर्चाएं होनी चाहिए और सरकारी स्तर पर उचित नीतियां चर्चाओं के आधार पर बननी चाहिए, तब फिर समन्वित विकास होगा,
0: समन्वित विकास हो सकता है। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जो तकनीकी प्रगति है, टेक्नोलॉजी और साइंस का जो डेवलपमेंट है, वही सामाजिक प्रगति को तय करती है, समाज के लोगों की प्रगति को तय करती है, और खासकर वर्तमान जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दौर है, तो तकनीकी विकास का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत सारी चीजों में द्रुत परिवर्तन भी ला रहा है। तो अगर हमको समाज और प्रौद्योगिकी को एक आपसी संबंध की तरह परस्पर सहयोग की भावना और जिसका दुरुपयोग ज्यादा न हो सके अगर करना हो, तो किस तरह से आप अपने अध्ययन के अनुभव के अनुसार लोगों को बताएंगे या आपके नजर में इस तरह की एक कार्य प्रणाली होनी चाहिए?
1: आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि ये कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से परिवर्तन करने जा रही है, इसलिए उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं उन पर भी नजर रखना जरूरी है। जैसे एआई के अगर जो डिक्टेटर्स हैं दुनिया के, बहुत घातक उपयोग कर सकते हैं, वो वायरस बना सकते हैं खतरनाक, वो रोबोट्स भेज सकते हैं सेना, और वो सर्वेलांस लोगों की पर्सनल जिंदगी पर पूरी नजर रख सकते हैं, सोचना मुश्किल कर सकते हैं, बोलना तो दूर, तो इसके घातक परिणाम भी बहुत हो सकते हैं, इसीलिए उनको डेमोक्रेटिक तरीके से उस पर नियंत्रण रखा जाए बहुत जरूरी है।
0: तो अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो छात्र या जो लोग इसमें अंतर्शोध कर रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट को लेकर, जो कि इतिहास है, इतिहास का अपना विज्ञान है, फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का अपना इतिहास है, सब आपस में जुड़े हुए, इतिहास मतलब सिर्फ वो इतिहास नहीं है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ जो है इतिहास भी बदल रहा है, ऐसी शोधकर्ताओं को, ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे?
1: देखिये, सबसे महत्वपूर्ण है कि अंतर विषय शोध को बिल्कुल अपनाना चाहिए। वो जमाना गया कि आप केवल आर्काइव्स में जाकर के और बगैर संस्कृति को समझे, बगैर फील्ड में जाए, किसान को कभी आपने देखा नहीं कि अनाज में मोटा अनाज, छोटा अनाज क्या होता है, जमीन की उर्वरकता क्या होती है, तो फील्ड वर्क करना बहुत जरूरी है, और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एविडेंस ढूंढना चाहिए, इसी से अंतर विषयक शोध बनता है। और जिस एरिया पर आप शोध कर रहे हैं उसको, जैसे मैंने कहा था, कंपैरेटिव मेथड जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप यही देखिए कि उस समय जापान में क्या हो रहा था, ब्रिटेन में क्या हो रहा था, वहां ऐसा क्यों हुआ, यहां ऐसा क्यों हुआ, इस तरह से एनालिटिकल हिस्ट्री बनता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आजकल जो नया बहुत बड़े परिवर्तन आने वाले हैं टेक्नोलॉजी में, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की तो आम चर्चा होती है, पर बहुत से लोग भूल जाते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन से पावर एनर्जी सस्ती सबको मिल जाएगी, इसके अलावा एंटी एजिंग, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जीन एडिटिंग करके चिर युवा अवस्था बनी रहे, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो ये बड़े परिवर्तन 20 साल में करीब हमारी शायद अगली पीढ़ी को बहुत एक अच्छे आने वाले हैं, पर जैसा मैंने कहा था कि जब तीव्र गति से समाज बदलता है तो उसके कुछ दुष्परिणाम भी निकलते हैं। जैसे सुविधा इतनी बढ़ रही है कि अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो ज्यादा हो गई है, लेकिन स्टेमिना पहले जैसा नहीं है, क्योंकि इतने आराम में हम लोग जी रहे हैं, तो उसी के लिए थोड़ा सा अनुशासन चाहिए। आप योगा हर स्कूल में मेरे ख्याल से सिखाया जाना चाहिए। और दूसरा एक चिंता है, नैतिक मूल्य गिर रहे हैं, परिवार बिखर रहा है, इसके लिए हमें जरूर चिंतित होना चाहिए। मेरे को लगता है कि मूल्यों को बच्चों को में डालने के लिए एक बड़ा अच्छा साधन है

0: अच्छी फिल्में, अच्छी फिल्में सिलेबस में डाल देनी चाहिए क्योंकि अपने आप तो वो देखेंगे नहीं, लेकिन बावर्ची जैसी फिल्म या उपकार जैसी फिल्म अगर सिलेबस में हो, या साउंड ऑफ म्यूजिक हॉलीवुड की कोई बहुत बेहतरीन फिल्म है, वो बच्चों के जहन में उतर जाती है। इनका उपयोग शिक्षाविदों को करना चाहिए।
1: बहुत अच्छा। और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने समाज का और अपने सामाजिक संस्कृति को और अपने इतिहास की भी जानकारी रखें और उसके साथ समन्वय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के साथ करते हुए चले, अपनाते हुए चले। डॉक्टर देवेश विजय जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तकनीकी नवाचार, इसका इतिहास और इतिहास का जो विज्ञान है, वैज्ञानिक विकास हुआ है इतिहास में डिफरेंट बहुत सारे देशों में, उसके बारे में जानकारियां दी। इन सब जानकारियों के लिए और यहां आने के लिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत शुक्रिया आपका।
2: इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक अब संपन्न होता है। वाचन स्वर नीलम अलकानिया, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप शाह।
3: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं।

0: सुबह का ही प्रोग्राम के तहत अभी आपने श्वेता दुबे के गाए हुए भजन सुने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नश्र की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप फहीम अहमद से खबरें सुनिए। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह हलफ बरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और फुटबॉल में भारत ने 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एशिया कप के क्वार्टर फाइनल्स में पहली बार जगह बनाकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। शुभेंदु अधिकारी आज मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। हलफ बरदारी की तकरीब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनक़िद की जाएगी। रियासत नई सरकार की हलफ बरदारी की तारीख की घड़ी का मुशाहिदा करने के लिए तैयार है। ये तकरीब कोलकाता के आइकॉनिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे मुनक़िद होगी। हालिया अख्तिताम पजीर असम्बली इंतखाबात में फैसला कुन वोट हासिल करने के बाद रियासत की सियासी तारीख में पहली मरतबा भारतीय जनता पार्टी की क्यादत वाली सरकार बाकायदा तौर पर ओहदा संभालेगी। हलफ बरदारी की तकरीब में मुल्क भर से पार्टी की हिमायत करने वाले लाखों अफराद, सियासी लीडरों और मुअज्ज़ज़ मेहमानों की आमद का इम्कान है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी की बरसर इकतदार रियासतों के वज़राए आला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। गवर्नर आर एन रवि वजीर आला और नई काबीना के मेम्बरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। पार्लियामानी पार्टी के नौ मुंतखब लीडर शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि रियासत में इदारा जाती बदनवानी की छानबीन के लिए रिटायर्ड जज की सरबराही में एक कमीशन कायम किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आरजी कर अस्पताल और संदेश खाली जैसे वाकयात के सिलसिले में भी तहकीकात शुरू की जाएगी। अधिकारी ने इस जीत को बीजेपी कारकुनों की इज्तिमाई कोशिशों को मौसूम करते हुए पार्टी के मंशूर में शामिल सभी वादों को वक्त पर पूरा करने का अहद किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मगरबी बंगाल में बीजेपी हुकूमत भारत की सरहदों को महफूज बनाएगी और कौमी सलामती के लिए सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करेगी। कल कोलकाता में मगरबी बंगाल के नौ मुंतखब बीजेपी अरकान असेंबली से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि बीजेपी की जीत का मकसद अपनी तंजीम को तौसीह देने या उसके नजरियात को जवाब फराहम करने का नहीं है, बल्कि इस जीत का मकसद मुल्क की कौमी सलामती की सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करना है। उन्होंने कहा कि आसाम, त्रिपुरा और अब मगरबी बंगाल में बीजेपी की हुकूमतें सरहद को नाकाबिले तस्खीर किले में तब्दील कर देंगी। जनाब शाह ने जोर देकर कहा कि बीजेपी हुकूमत में दरअंदाजी और गायों की स्मगलिंग नामुमकिन हो जाएगी। तमिलनाडु में टीवीके के सरबरा सी जोसेफ विजय के तहत सरकार की तश्कील के सिलसिले में अब भी गैर यकीनी सूरत हाल है। नया मोड़ ये आया है कि IUML ने हुकूमत की तश्कील के लिए TVK को अपनी हिमायत की खबरों से इनकार कर दिया। एक और वाकये में ये खबरें भी आ रही हैं कि हलफ बरदारी की तकरीब जो आज मुनक़िद होनी है मुनक़िद

0: की है। आईएमडी के मुताबिक आज छत्तीसगढ़, गंगाई, मगरबी बंगाल, झारखंड और विदर्भ में गरज चमक और 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। फुटबॉल में भारत ने पहली बार 17 साल से कम उम्र की खवातीन के एएफसी एशियन कप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करके तारीख रकम की है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और फुटबॉल में भारत ने 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एशिया कप के क्वार्टर फाइनल्स में पहली बार जगह बनाकर तारीख रकम की है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। अब पेश है अकवाले ज़री का प्रोग्राम शम्मे फरोजा।
2: इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात यानी सारी मखलूकात का सरदार बनाया है। इंसान को यह फजीलत और बरतरी उसकी जसामत और डील डॉल की वजह से नहीं दी गई है, बल्कि इसके इल्म और हुनर और समझदारी और दानिशमंदी की वजह से दी गई है। ये समझदारी और दानिशमंदी खुदा की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत है, और खुदा जिसको चाहता है उसको इल्म हुनर में बरतरी और कमाल अता करता है। दानिशमंदी का इजहार शाइस्तगी और तहजीब की शक्ल में होता है। जो इंसान जितना बाकमाल होता है वो उतना ही महज़ब और शाइस्ता हुआ करता है। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि दानिशमंदी और इल्म हुनर में जाहिरी निखार और खूबसूरती तहजीब और शाइस्तगी से पैदा होती है, यानी खुदा की दी हुई दानिशमंदी की नेमत को दुनिया में आने के बाद तहजीब और शाइस्तगी के खूबसूरत गिलाफ में रखा जाता है। तहजीब और शाइस्तगी का दूसरा नाम अदब है, यानी अदब और इल्म दोनों इंसान का बेहतरीन जेवर है। अदब के बगैर इल्म अधूरा है और इल्म के बगैर अदब नातमाम। अदब इल्म को मुकम्मल करता है और इल्म को रौनक बख्शता है। इल्म अगर जिस्म है तो अदब उसका लिबास है। इस दुनिया में आने के बाद इंसान अपने बड़ों से अदब और तहजीब की तरबियत हासिल करता है। अदब सिखाने के लिए वालिदैन और उस्ताद दोनों यकसां तौर पर जिम्मेदार हैं। वालिदैन का काम सिर्फ जिस्मानी नश्वनुमा की बेहतरीन फिक्र करना नहीं है, बल्कि उन बच्चों की आदत व अतवार की तरबियत करना भी है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला आलिहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई वालिद अपनी औलाद को इससे बेहतरीन तोहफा नहीं देता कि उनको बेहतरीन अदब सिखाए। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपनी लड़कियों की परवरिश इस अंदाज से की कि उनको अदब और तहजीब सिखाई वो जन्नत में मेरा साथी होगा। जब रब्बे कायनात के महबूब का ये इरशाद हो तो फिर भला उस महबूब के दोस्त और बाबे इल्म हजरत अली करमल्लाहु वजहू क्यों न फरमाते कि अदब बेहतरीन कमाल है। दुनिया के बड़े बड़े दानिशमंदों ने इसी नसीहत की अपने शागिर्दों को तलकीन की है। ये कहावत तो हर आम और खास की जबान जद है कि बा अदब बा नसीब और बे अदब बे नसीब। कुरान मजीद में हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम का अपने फर्जंद को नसीहत करने का तफसीली वाकया मजकूर हुआ है। इस कीमती पंदनामे में वो जहां अपने बेटे को तौहीद का दर्स देते हुए और शिर्क से बचाते हुए और नमाज कायम करने और अच्छी चीजों का हुक्म देते हुए और बुराइयों से बचाने की ताकीद करते हुए नजर आते हैं, वहीं वो लोगों के साथ ऊंची आवाज में बात न करने और जमीन पर अकड़ कर न चलने का हुक्म भी देते हुए नजर आते हैं। उनका ये अमल अपनी औलाद को अच्छे अखलाक सिखाने की बेहतरीन मिसाल है। वो फरमाते हैं कि ऐ मेरे बेटे, अपने गाल को लोगों के लिए मत फुलाओ और जमीन पर अकड़ कर मत चलो। बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला हर अकड़ने वाले को और इतराने वाले को पसंद नहीं फरमाते। अपनी चाल को दरमियानी हालत पर रखो और अपनी आवाज को पस्त रखो। बिलाशुबा सबसे बुरी आवाज यकीनन गधों की होती है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के लाखों वाकयात में एक अहम वाकया ये मिलता है कि एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते हजरत अनस रजी अल्लाह अन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना तनावुल कर रहे थे तो आपने उनको तीन नसीहतें इरशाद फरमाई और फरमाया, ए बच्चे, बिस्मिल्लाह पढ़ा करो اور داہنے ہاتھ سے

0: आया करो और बर्तन में अपनी तरफ से खाया करो। कुरान मजीद में जा बजा सहाबे किराम को और सहाबियात को, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुतहरात को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब की तलकीन की गई है और उनकी शान में सूए अदब को सारे नेक आमाल अकारत होने का सबब बताया गया है। सूरे फतह में इरशाद हुआ है, हमने आपको बहुत सारी सिफात वाला रसूल बनाकर भेजा है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम और तौकीर का लिहाज रखा जाए। सूरे हुजरात में फरमाया गया, अपनी आवाजों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से बुलंद मत करो, मबादा इससे तुम्हारे तमाम नेक आमाल अकारत हो जाएं और तुमको खबर भी न हो। सूरे तहरीम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज अजवाज मुतहरात को मुखातब करते हुए ये फरमाया गया कि अगर तुम बिलफर्ज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबला आराई करोगी तो खुदा और नेक ईमान वाले और फरिश्ते उनके मददगार हैं। पैगंबर का अदब तो बहरहाल सारे इंसानों के अदब से बढ़कर है, लेकिन अगर हम अपने चारों तरफ पाए जाने वाले आम समाज ही की बात करें तब भी हर छोटे को अपने बड़े का अदब लाजमी है। औलाद के लिए वालिदैन का अदब और शागिर्द के लिए अपने उस्ताद का अदब बेहद जरूरी है। दीन इस्लाम में वालिदैन की इज्जत और तौकीर को खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बाद सबसे बुलंद मकाम दिया गया है और उनकी बेअदबी को दुनिया और आखिरत में नाकामी और नामुरादी का सबब करार दिया गया है। अगर हम तारीख का मुताला करें तो हम दुनिया के कामयाब तरीन अफराद में ज्यादातर ऐसे अफराद को पाएंगे जिन्होंने अपने बचपन और जवानी में अपने उस्तादों का और अपने वालिदैन का एहतराम किया और उनकी इज्जत की। उसके बरक्स ज्यादातर नाकाम उन लोगों को पाएंगे जिन्होंने बचपन और जवानी में अपने वालिदैन और उस्तादों की बेकदरी की। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इंसानों को अदब सिखाना हैवानों को अदब सिखाने से ज्यादा दुश्वार है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, बेअदब खालिक और मखलूक दोनों का मातूब है। नीज उन्होंने फरमाया, खुदा के साथ अदब का दावा गलत है जब तक तुम मखलूक के अदब का ख्याल न रखो। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, जिसमें अदब नहीं उसमें सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जो बड़ों का अदब और छोटों पर शफकत नहीं करेगा वो मेरी उम्मत में से नहीं है। किसी दानिश्वर का कौल है, अपना अदब करवाने के लिए दूसरों का अदब करो, तुम्हारा एहतराम खुद ब खुद किया जाएगा। खुलासा ये कि अदब इंसान का बेहतरीन जेवर है और अदब बेहतरीन कमाल है।
1: अभी आप सुन रहे थे अख़बार ज़री का प्रोग्राम शमी फरोजा। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात जारी हैं। अब पेश है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम हुस्न गजल। आज के प्रोग्राम में पहले सुनिए प्रमिलापुरी से शकील बदायूनी और जिगर मुरादाबादी का कलाम।

उदित नारायण की आवाज में नगमा भी अपने बेवफा फिल्म से सुना। इसके साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर जारी है उर्दू सर्विस की नशरियात। अब सुनिए तलत महमूद पर फीचर का दूसरा और आखिरी हिस्सा, जिसका उन्वान है वो नर्म मुलायम मखमली आवाज। तहरीर जनाब इदरीस अहमद खान की है।

राग भोपाली की गुलाम मोहम्मद की नाकाबिले फरामोश बंदिश ने उस जमाने में लोगों को मसहूर कर दिया था जब उन्होंने खुद तलत महमूद को सिनेमा के पर्दे पर यह गाना गाते देखा था। आज भी यह गाना शायकीन को साथ साथ गुनगुनाने के लिए मजबूर कर

दिल नादान के अलावा फिल्म मिर्जा गालिब में भी तलत महमूद ने गुलाम मोहम्मद की बनाई धुनों पर अपनी आवाज का जो जादू जगाया था वो आज भी उनके चाहने वालों को झूमने पर मजबूर।

फिल्म सोने की चिड़िया में तलत महमूद और नूतन ने साथ साथ काम किया था। इस फिल्म की मौसीकी ताल के बादशाह ओपी नैयर ने तरतीब दी थी और नगमा निगार थे साहिल उद्यानवी। साहिर ने इस फिल्म के लिए अपनी एक नज्म इस्तेमाल की थी और जैसा कि सभी जानते हैं कि गानों के मुकाबले नज्मों की मौसीकी और उनका गाना दोनों मुश्किल काम होते हैं। मिजाजन तलत महमूद का अंदाज ओपी नैयर की मौसीकी से मेल नहीं खाता था, लेकिन फिर भी ये गाना अपनी बेमिसाल नगमे की वजह से शाकीन के दिलों को आज भी मुतासिर करता है।

शंकर जयकिशन के साथ तलत महमूद के गाए दिलीप कुमार की फिल्म दाग के गानों को 1952 में जबरदस्त मकबूलियत हासिल हुई थी। उसके एक साल के बाद आई फिल्म पतिता का अंग्रेज शायर शैले के ख्याल पर मबनी शंकर जयकिशन का नगमा अपनी जज्बात निगारी के लिए हमेशा याद रखा जाएगा।

मदन मोहन और तलत महमूद की दोस्ती की शुरुआत लखनऊ से हुई थी, जब मदन मोहन वहां ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे। वहां तलत महमूद गजलें गाने आते थे और इन गजलों की मौसीकी मदन मोहन की हुआ करती थी। मदन मोहन को मौसीकी की खुदादाद समझ थी और वो गजलों के आशिक थे। एक दिन उन्होंने तलत महमूद की एक गजल सुनकर कहा था, यह किस्मत ने साथ दिया तो मैं फिल्मों में तुमसे गानों से ज्यादा गजलें गवाऊंगा और मेरे नगमों के जरिए तुम्हारी रेशमी आवाज पूरे मुल्क में गूंजेगी। मदन मोहन की यह पेशेंगोई तब सही साबित हुई जब मदन मोहन ने मधोश समेत अपनी कई फिल्मों के गाने तलत महमूद की आवाज में रिकॉर्ड किए।

बाद में मदन मोहन के साथ तलत महमूद ने आशियाना, जहां आरा और हकीकत जैसी फिल्मों के लिए नहायत खूबसूरत नगमे और गजलें गाई।

आज भी जब रेडियो पर दिलीप कुमार की फिल्म आजाद का गाना बजता है, कितना हसीन है मौसम, तो सबको यही लगता है कि ये गाना तलत महमूद की आवाज में है। जी नहीं, ये गाना सिर्फ तलत महमूद के अंदाज में है और फिल्म के मौसीकार सी रामचंद्र ने गाया है।

इस गाने की कहानी भी अजीब है। वह ये था कि ये गाना तलत महमूद को गाना था, लेकिन अचानक उनके वालिद जनाब मंजर महमूद का लखनऊ में इंतकाल हो गया। सी रामचंद्र नहायत हसास इंसान थे। उनको अच्छा नहीं लगा कि बाप के गम से मजरूह तलत महमूद पर वो गाने के लिए जोर डाले, इसलिए ये गाना उन्होंने खुद तलत महमूद बनकर गा दिया। दोनों की आवाज एक जैसी थी, लेकिन तलत महमूद जैसी लर्जिश सी रामचंद्र की आवाज में नहीं थी। इस फर्क को समझने के लिए आइए सुनते हैं सी रामचंद्र की बनाई तर्ज पर तलत महमूद का ही एक गाना, जो उन्होंने 1955 की एक फिल्म यास्मीन के लिए गाया था।

हिंदुस्तान का फ्रैंक सिनाट्रा कहकर मुतारिफ कराया गया। इस पर तलत महमूद के एक चाहने वाले ने माइक पर आकर कहा था कि इस बात को यूं भी कहा जा सकता है कि फ्रैंक सिनाट्रा अमेरिका के तलत महमूद हैं। इत्तेफाक देखिए कि जब 9 मई 1998 को तलत महमूद का इंतकाल हुआ तो उसके 5 दिन के बाद अमेरिका के तलत महमूद यानी फ्रैंक सिनाट्रा का भी इंतकाल हो गया। दुनिया में जो आया है उसे एक दिन जाना ही होता है, यही कानून फितरत थे। लेकिन तलत महमूद जैसे फनकार अपनी नगमगी और मौसीकी की मिठास की वजह से अपनी नर्म मुलायम मखमली आवाज के साथ हमारे जहनों में, हमारी यादों में हमेशा मौजूद रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे।

अभी आप सुन रहे थे तलत महमूद पर यह फीचर। उनवान था वो नर्म मुलायम मखमली आवाज। तहरीर जनाब इदरीस अहमद खान की थी। पेशकश थी अली मुतशिम रजा की। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन ईआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है।

0: मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, आप मुजीब अख्तर से खबरें सुनिए। सुवेंदु अधिकारी ने आज मगरी बंगाल के पहले बीजेपी वजी अला के तौर पर हलफ लिया। वजी अजम नरेंद्र मोदी और वजी दाखिला अमित शाह लबरदारी की तकरीब में शिरकत की। चिली की वजी खाजा फ्रांसिस्को पेरिस माकिना आज से

भारत का दौरा शुरू करेंगे। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल जारी है। नायब सर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजी अजम नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पोषिशे बैशाख पर खराज अकीदत पेश किया और उनकी जारी और सारी विरासत को याद किया। भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और फुटबॉल में भारत ने 17 साल तक की उम्र की ख्वातीन के एशिया कप के क्वार्टर फाइनल्स में पहली बार जगह बनाकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। सुरेंद्र अधिकारी ने आज मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वज़ीर-ए-आला के तौर पर हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनक़िद की गई। ये तकरीब कोलकाता के आइकॉनिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे मुनक़िद हुई। हालिया अख्तिताम पज़ीर असेंबली इंतिखाबात में फैसला कुन वोट हासिल करने के बाद रियासत की सियासी तारीख में पहली मरतबा भारतीय जनता पार्टी की क़ियादत वाली सरकार ने बाकायदा तौर पर ओहदा संभाला है। हलफ बर्दारी की तकरीब में मुल्क भर से पार्टी की हिमायत करने वाले लाखों अफराद, सियासी लीडरों और मुअज्जम मेहमान तशरीफ फरमा थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी की बरसर इक़्तदार रियासतों के वज़राए आला ने इस तकरीब में शिरकत की। गवर्नर आर एन रवि ने वज़ीर आला और नई काबीना के मेंबरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। पार्लिमानी पार्टी के नौ मुंतखब लीडर सुवेंदो अधिकारी ने ऐलान किया है कि रियासत में इदारा जाति बनवाने की छानबीन के लिए रिटायर्ड जज की सरबराही में एक कमीशन कायम किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आरजी कर अस्पताल और संदेश खाली जैसे वाकयात के सिलसिले में भी तहकीकात शुरू की जाएगी। अधिकारी ने जीत को बीजेपी कारकुनों की इज्तिमाई कोशिशों को मौसूम करते हुए पार्टी के मंशूर में शामिल सभी वादों को वक्त पर पूरा करने का अहद किया। ये तकरीब 25वें बैशाख के मौके पर मुनक़िद की गई है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर का यौम पैदाइश है। इससे तकरीब की सकाफती और अलामती अहमियत बढ़ गई है। पूरे वस्ती कोलकाता सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रोग्राम को खुश उसलूबी के साथ मुनक़िद कराने को यकीनी बनाने के लिए हजारों पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया था। तमिलनाडु में टीवीके के सरबराह सी जोसेफ विजय के तहत सरकार की तश्कील के सिलसिले में अब भी गैर यकीनी सूरत हाल है। नया मोड़ यह आया है कि आईयूएमएल ने हुकूमत की तश्कील के लिए टीवीके को अपनी हिमायत की खबरों से इनकार कर दिया। एक और वाकये में ये खबरें भी आ रही हैं कि हलफबरदारी की तकरीब जो आज मुनक़िद होनी है मुनक़िद नहीं होगी। प्रोफेसर कादी मुहिद्दीन की सरबराही वाली आईयूएमएल ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमीज़ा वेतरी काजागाम को हिमायतनामा नहीं दिया है। एक और हैरानकुन वाकया यह है कि एएमएम के पार्टी के लीडर टीटीवी दिनाकरन ने गवर्नर से रुजू किया है और इस कामराज की तरफ से हिमायतनामा पेश किया है, जो मन्नार्क दोई से मुंतखब वाहिद एमएलए हैं। उन्होंने यह हिदायतनामा एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी एडापड्डी पलानी स्वामी को ज्याला बनाने के हक में पेश किया है। हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस मुकरर किया है। रात दिफा का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि ओहदा संभालने की तारीख से अगले अहकाम तक फौजी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी के तौर पर बेखिदमत अंजाम देंगे। वो जनरल अली चौहान की मुलाजमत की मुद्दत 30 मई को मुकम्मल होने के बाद अपना ओहदा संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि एक इंतहाई मुअज्जज अफसर हैं, जिनकी 4 दहाइयों से ज्यादा की शानदार खिदमात हैं। वो सितंबर 2025 से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरियट में मिलिट्री एडवाइजर्स के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल कमांडर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने मगरबी और शुमाली महाजों पर भी अहम ऑपरेशनल फॉर्मेशन की कमांड भी की है।
حکومت نے وائس ایڈمیرل کرشن سوامی ناتھن کو بحریہ کا اگلا سربراہ مقرر کیا ہے. وزارت دفاع نے کہا ہے کہ وائس ایڈمیرل سوامی ناتھن اس وقت مغربی بحریہ کی کمان کے فلیگ آفیسر کمانڈنگ ان چیف کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں. ایڈمیرل کی تقریباً 4 دہائیوں کی شاندار خدمات ہیں. بھارتی بحریہ میں مختلف عہدوں پر رہتے ہوئے ان کا آپریشنل اسٹریٹجک اور جوانوں سے متعلق بندوبست کا کافی تجربہ

हुआ है। वो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह लेंगे जो 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। चिली के वजीर खारजा फ्रांसिस्को पेरिस माकिना आज से भारत का सरकारी दौरा शुरू करेंगे। वो इस महीने की 15 तारीख तक इस दौरे पर रहेंगे। जनाब माकिना कल नई दिल्ली में एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वो तजारती तकरीबात में भी शिरकत करेंगे जिनका एहतमाम पीर को भारत के खुराक के दरामदकारों के फोरम और एसएचएम ने किया है। मंगल को तजारत के वजीर पीयूष गोयल से बातचीत करेंगे और ताजिरों की एक तकरीब में शिरकत करेंगे जिसका एहतमाम सीआईआई ने किया है। वो सीआईआई की सालाना तजारती समिट 2026 में भी शिरकत करेंगे। बुध के रोज वो वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर से बातचीत करेंगे। इसके बाद वो भारत चिली तजारती वक्त के साथ एक मुश्तरका मीटिंग भी करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पोषिशे बैशाख के मौके पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का ताउन अदब के दायरे से भी कहीं वसी है। जनाब राधाकृष्णन ने टैगोर को एक ऐसा कायदाना मुफक्किर फनकार और माहिर तालीम करार दिया जिसके काम से भारतीय तमद्दुन और इंसानियत की आफाकी अकदार की अक्कासी होती है जिससे समाज और आने वाली नस्लों पर एक लाफानी असर पड़ता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि टैगोर एक मुसन्निफ मुफक्किर और गैर मामूली सलाहियतों के शायर थे। जनाब मोदी ने कहा कि टैगोर ने गैर मामूली फलसफी माहिर तालीम फनकार के तौर पर नक्श कायम किया है और वो भारतीय तहजीब की लाफानी आवाज है। भारत के महकमे मौसमियात ने अगले दो दिन में केरला माहे लक्षद्वीप जनूबी अंदरूनी कर्नाटक तमिलनाडु पुडुचेरी और क्रैकल में शदीद बारिश की पेशगोई की है। आईएमडी के मुताबिक आज छत्तीसगढ़ गंगाई मगरबी बंगाल झारखंड और विदर्भ में गरज चमक और 50 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। आईएमडी ने मशरकी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मराठवाड़ा जैली हिमालयी मगरबी बंगाल सिक्किम साहली आंध्र प्रदेश और अंदरूनी कर्नाटक में आंधी तूफान और बिजली गिरने की पेशगोई की है। इसी तरह की सूरत हाल आज ओडिशा रायलसीमा तेलंगाना कोंकण गोवा साहली कर्नाटक अंडमान और निकोबार जजायर और शुमाल मशरकी रियासतों में रहने का इम्कान है। इसराइल और लबनान दो रोजा सरगर्म बातचीत के साथ फिर से मुज़ाकरात शुरू करेंगे। 14 और 15 मई को होने वाली इस बातचीत के लिए अमरीका ने राह हमवार की है। अमरीका के महकमे खारजा ने बताया कि अमन सलामती से मुतालिक एक जामे माहे के जब्ते की तशहीर के लिए दोनों मुल्कों के वफदों की मुलाकात होगी जिसमें दोनों मुल्कों के अहम मसाइल के हल पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। महकमे खारजा ने बताया कि एक जामे अमन मुकम्मल लुबनानी अथॉरिटी की बहाली और हिजबुल्लाह को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला करने पर मुनहसिर है। अक़वामे मुत्तहदा की सलामती काउंसिल में ईरान की तरफ से अमरीका की हिमायत वाली क़रारदाद के एक मसौदे को मुस्तरद किए जाने के बाद अब नेहरू पर तातुल में शिद्दत आ गई है। ईरान ने कहा है कि इस क़रारदाद में खामियां हैं और इसके पीछे सियासी मकसद कार फरमा है। ईरान ने कहा है कि इस तजवीज से गैर कानूनी इकदाम को कानूनी जवाब हासिल होगा बजाय इसके कि इससे तनाजे को हल करने में मदद मिले। अमरीका ने 10 अफराद और कंपनियों के खिलाफ बंदिशों का ऐलान किया है जिनमें चीन और हांगकांग के अफराद और कंपनियां भी शामिल हैं। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने हथियार और शाहिद ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने में दरकार खाम मवाद को हासिल करने की ईरान की कोशिशों में मदद की है। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के दरमियान एक 3 रोजा जंगबंदी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यह आर्जी मुआहदा दूसरी जंग अजीम में उस वक्त की सोवियत यूनियन के रोल की याद में मनाई जाने वाली रूसी फतह के दिन की तकरीबात के मौके पर किया गया है। फुटबॉल में भारत ने पहली बार 17 साल से कम उम्र के खवातीन के एएफसी एशियन कप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करके तारीख रकम की है। भारत ने कल चीन के शहर शुएंजो में अपने ग्रुप बी के फाइनल में लबनान को 4-0 से हराया। भारत के लिए पटिका बर्मन ने 7वें और 50वें मिनट में और डेवी सेंजम ने 36वें और जोया ने 72वें मिनट में गोल किए। खास खबरें एक बार फिर। सुरेंद्र अधिकारी ने आज मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वज़ीर-ए-आला के तौर पर हलफ लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर-ए-दाखिला अमित शाह
हलफबरदारी की तकरीर में शिरकत की। चिली के वजीर खारजा फ्रांसिस्को पेरिस माकिना आज से भारत का दौरा शुरू करेंगे। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के बारे में गैर यकीनी सूरतेहाल जारी है। नायब सदर जमहूरिया सी पी राधाकृष्णन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को पोशीशे बैशाख पर खराज अकीदत पेश किया, उनकी जारी वसारी विरासत को याद किया और भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। इसी के

0: आज खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश है प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा।

अनुराधा पौडवाल के साथ आपने मनहर उदास को सुना। फिल्म का नाम था हीरो। अब सुनिए लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार को, फिल्म है बेताब।

0: मिस्टर इंडिया फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे किशोर कुमार और अलीशा चिनॉय की आवाजों में। फिल्मी दो गानों का ये प्रोग्राम अभी जारी है। वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है गोपाल कृष्ण गोखले।
1: गोपाल कृष्ण गोखले की पूरी जिंदगी मादरे वतन के कदमों पर जानेसारी की एक अजीम दास्तान है।

0: धोखे का मतलब यही था। जो लोग इस जज्बे के तहत काम करेंगे उनकी राहें आसान होंगी और वो बजा तौर पर गोखले की छोड़ी हुई विरासत के दावेदार बन सकेंगे। ऐसे खादिम वतन उन तोहफों के मुस्तहक होंगे जिनका वादा खुदा ने किया है, और गोखले की जिंदगी इस ईफाए अहद की उम्दा मिसाल है। इस किताब में गांधी जी ने जिस तरह गोखले को खराज अकीदत पेश किया है वो गोखले की अजमत साबित करने के लिए काफी से जायद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गोखले कभी एतराजात का निशाना नहीं बने। उन पर सबसे बड़ा एतराज ये था कि वे बरतानवी कौम पर एतमाद करते थे और यकीन रखते थे कि हुकूमत हिंद के खिलाफ उनके हम वतनों की तमाम शिकायत जल्द या बदेर दूर हो जाएंगी। शर्त बस ये है कि अवाम हिंद की सूरत हाल से इंग्लैंड के हुकाम को आगाह करे। गोखले के इस यकीन की पुष्ट पर कई हकायक मौजूद थे। वो बरतानिया के साथ हिंद के गहरे रवाबित को जरूरी समझते थे। वो चाहते थे हिंद को खुद हुकूमती भी मिल जाए और वो बरतानवी सल्तनत का हिस्सा भी बना रहे। वो समझते थे हिंद की तरक्की के लिए ये बेहद जरूरी है। गोपाल कृष्ण गोखले ने जदीद हिंदुस्तान की तामीर उन बुनियादों पर की थी जिन्हें दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता ने रखा था। उनकी विलादत 9 मई सन 1866 को जिला रत्नागिरी के एक छोटे से देहात में हुई थी। जिंदगी के इब्तदाई 10 साल आबाई गांव में गुजारने के बाद उन्होंने इस हकीकत को पहचाना कि हिंदुस्तानी देहातों में जिंदगी किस कदर मुश्किल और दुश्वार है। उन्होंने अपने हम वतनों की जरूरियात और मुश्किलात को पहचाना। तारीख हिंद में गोखले का अहम तरीन और तारीख साज कारनामा वो सियासी उसूल है जिनसे उन्होंने उम्र भर रहनुमाई हासिल की और बाद में उन्हें खुदान हिंद सोसाइटी नाम की तंजीम के जाब्तों में शामिल किया। हुसूल मकसद की राह में उन्होंने हमेशा ही मकसद पर जरिए को तरजीह दी थी। उनका ईमान था कि आला मकसद के हुसूल के लिए आला जरिया भी जरूरी है। वो हमेशा ही इस उसूल पर अमल पैरा रहे कि सियासत खिदमत आम्मा का बेहतरीन जरिया उस वक्त ही बन सकती है जब उसमें पाकीजगी और रूहानियत शामिल हो। खुदाम हिंद सोसाइटी की तश्कील भी उन्होंने सियासत में पाकीजगी पैदा करने की गरज से की थी। सियासत में आला किरदारी को वो बुनियादी जरूरत समझते थे। उनका कहना था जब तक लोगों में बुलंद किरदारी नहीं होगी स्वराज बेमानी रहेगा, और हुसूल आजादी से कबल कौम के लिए जरूरी है कि वो खुद को इसका मुस्तहक साबित करे। गोखले हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के जबरदस्त हामी थे। उनका ईमान था कि जब तक इन दोनों के दरमियान बाहमी तआवुन और इत्तेहाद का जज्बा पैदा नहीं होगा कौम की हैसियत से हिंद के मुस्तकबिल पर तारीख बादल छाए रहेंगे। मादर वतन की बेलौस खिदमत का जज्बा उनके अंदर बदरजे अतम मौजूद था। उन्होंने सल्तनत बरतानिया की जानिब से नाइटहुड के खिताब और काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी की रुकनियत की पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। उनका ख्याल था ये एजाज मादर वतन की खिदमत की राह में उनके लिए आंचन बन जाएंगे। गोपाल कृष्ण गोखले स्वदेशी तहरीक के बिहानी थे। इसको वो माशी जरूरत के साथ ही जज्बाए हुब्बुल वतनी का लाजमी जुज्व समझते थे। आखिर में इतना ही कहा जा सकता है, गोखले ने मगरब की खूबियों को मशरकी जरूरियात के मुताबिक तराशने और बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। उन्होंने मशरक को मगरब से मिलाने की कोशिश की थी। दोनों के बीच मुफाहमत पैदा करनी चाहिए थी। गो के उन्होंने एक दुश्वार रास्ते का इंतखाब किया था, लेकिन इस राह पर उनके कदमों में कभी लग्जिश पैदा नहीं हुई थी। सियासत में जिस पाकीजगी को पैदा करने की उन्होंने सही की थी, दुनिया भर में इसकी जरूरत हमेशा बाकी रहेगी।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम तारीख साज। आज का मौजू था गोपाल कृष्ण गोखले। तहरीर थी महमूद हाशमी की और रावी थे एसएम शफीक। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: आदमी फिल्म का नगमा आप सुन रहे हैं कुमार सानू साधना सरगम की आवाजों में। इससे पहले आपने सुना तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का नगमा उदित नारायण और श्रेया घोषाल का गाया हुआ। इसके साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर जारी है आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। अब पेश खदमत है प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी। इस सप्ताह की शुरुआत में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद अब ध्यान सरकार के गठन पर केंद्रित हो गया है और वही है आज हमारी चर्चा का विषय, पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की तैयारी, राजनीतिक गतिविधियां और चुनौतियां। इस मुद्दे पर अपने विचार साझा करने के लिए मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और संचिता गुहा और भाजपा प्रवक्ता किया घोष। आप सबका आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में स्वागत है।

0: नमस्कार।
1: धन्यवाद। आज कोलकाता में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा की। चलिए सुनते हैं गृहमंत्री ने क्या कहा।
2: भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्यों की एक मीटिंग यहां आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: तो अभी हमने सुना कि अमित शाह जी ने शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगा दी, जो कि पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। मैं आप तीनों से जानना चाहूंगी, शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में वो क्या कारक थे जिन्होंने उनको इस पद के लिए उपयुक्त बनाया। खेया जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं कि ये जो जनादेश मिला है, इसको आप किस नजरिए से देखती हैं?
3: सबसे पहली बात ये है कि ये जो लड़ाई थी, मैं लड़ाई इसलिए बोल रही हूँ कि ये लड़ाई से किसी भी हद से कम नहीं था। लगातार ये कुशासन पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुई है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर पूरा एक युवा पीढ़ी रस्ते में बैठ गया है। तो ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई एक दिन में तो नहीं हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो लड़ाई जो तृणमूल सरकार थी उनके वर्सेस पश्चिम बंगाल के आम जनगण, उनका जनता ने इस बात तय कर लिया था कि तृणमूल को हटाना है और उनके सामने एकमात्र विकल्प था भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि आजकल देखिए इंटरनेट की जमाना है, हर जगह की खबर मिलती रहती है, जैसे कि लोगों को ये भी पता लगता है कि असम जैसे छोटे राज्य में भी इतना बड़े तादाद में इंडस्ट्री हो रहा है। तो लोगों को लगता है कि पश्चिम बंगाल में हमारे यहाँ क्या है, तस्करी है, राशन घोटाला बोलिए, शिक्षक की नौकरी को लेकर घोटाला बोलिए, तो ये तो पश्चिम बंगाल की संस्कृति नहीं है
1: जी।
3: तो लोगों ने इस बार तय किया था कि पश्चिम बंगाल से जो सरकार इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ करना
1: जी। तो शेखर जी, वो कौन सी ऐसे कारक थे, कौन से फैक्टर्स थे जो शुभेंदु अधिकारी के फेवर में जिन्होंने काम किया?
4: अनुभव जी, आप देखिए पश्चिम बंगाल में जो लंबा सा एक मुहिम चला, जिसका एक बड़ा चेहरा था शुभेंदु अधिकारी
1: जी।
4: पिछले चुनाव से पहले आए थे और उसके बाद जिस तरह नंदीग्राम में ममता को डिफीट किया और इस बार दोबारा भवानीपुर में, दक्षिण कलकत्ते का एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, वहां पे ममता को अपने गढ़ में जाके डिफीट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। और लगातार जिस तरह तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो राजनीतिक जो हिंसा चली आई है उसको मुकाबला करना, आपने देखा 2 दिन पहले किस तरह घटना घटी
1: जी,
4: उनकी सेक्रेटरी को गोली मार के हत्या कर दी गई। तो इस तरह की जो कल्चर है, ये साइकिल ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस जो हमने देखा है, खास करके पहले वामपंथी सरकार में था, इसके बाद में अभी तृणमूल के में भी एक प्रकार से हथियार बन गया, कुछ भी नहीं, ऐसे ही चल रहा था मामला, केवल लोक कल्याण के काम पे कुछ स्कीम्स दे रहे थे और लोग के अंदर ये था कि अगर चुनाव गिराब है, सुरक्षित रूप में अगर होगा तो जरूर वहां पे परिवर्तन आ सकता है। तो इस बार हमने देखा जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने जो व्यवस्था की, जिसके वजह से लोगों ने बिना डर घर से बाहर आके वोट किए। पहली बात, जो SIR को ममता ने बड़ा मुद्दा बनाया, उसको ने भी लोगों ने नकारा दिया, क्योंकि SIR के माध्यम से जितनी फर्जी वोटर्स, घोस्ट वोटर्स भी निकल गए। पश्चिम बंगाल के जनता की जो आशाएं अपेक्षाएं उसको रिफ्लेक्ट करके इतना बड़ा मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी।
1: संचिता जी, आपसे भी यही पूछना चाहूंगी, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, कौन से ऐसे कारक हैं जो शुभेंदु अधिकारी के फेवर में इनके पक्ष में काम कर रहे हैं?
5: शुभेंदु अधिकारी का जो पर्सनल जो फैक्टर है वो दो बार ममता बनर्जी को हरा चुके हैं
1: जी।
5: पर बीजेपी ऐसा पार्टी नहीं है, बीजेपी एक इंडिविजुअल के नाम पे नहीं चलता है, बीजेपी एक ऑर्गेनाइजेशनली ड्रिवन पार्टी है। जैसे शेखर जी ने बताया कि जिस तरह से इलेक्शन कंडक्ट किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो तो बहुत ही, ये 15 साल में पहली बार नहीं, 50 साल में पहली बार शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। किनको वोट दिया है वो बड़ी बात नहीं है, पर वोट दे सकते हैं, सबसे बड़ी फैक्टर थी जो ममता बनर्जी के खिलाफ गया है। वो आजकल रेप मर्डर का असली खूनी जो थे वो तो कभी पकड़ा नहीं गए, तृणमूल को शायद लगा था कि लोग भूल गए हैं, वो कोई फैक्टर नहीं होगा, पर वो बहुत बड़ी फैक्टर थी, लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। पिछले साल मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुआ, अप्रैल 2025 में जो वायलेंस हुआ,

0: दैट वॉज अनदर लैंडमार्क इवेंट इन द हिस्ट्री, वो भी लोग भूले नहीं है.
1: जी.
0: वक्फ बिल पास होने के बाद वेस्ट बंगाल में मुसलमान लोग जैसे हिंदुओं के घर जला दिए हैं, वो कभी हम सोच भी नहीं कर सकते थे. और ये जो बंगाली अस्मिता, बंगाली अस्मिता जिसको जो मुद्दा बनाए थे ना ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने, कि जो बंगाली बोलते हैं वही इंडियन है, पश्चिम बंगाल के लोग और बांग्लादेशी उनको एक ही कर रहे थे, ये अच्छा नहीं लगा.
1: जी जी.
0: और सबको समझ में आ गया ये क्या हो रहा है, और इस बार का वोट उसके खिलाफ है. ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फैक्टर है.
1: और इससे पहले के कार्यक्रम में आगे बढ़े, चलिए सुनते हैं कि विधायक दल की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने और क्या कहा.
2: सबसे पहले मैं दो हाथ जोड़कर जिम्मेदारी के साथ बंगाल की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ. जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्टों के समय से यहाँ पर बनाया जाता था, ममता जी ने इसको और गहरा तरीके से भय में परिवर्तित किया. वहाँ मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी. सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा करकर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ.
1: मैं किया जी से अगला अपना सवाल करना चाहूंगी कि अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आपकी सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी और कौन सी चुनौतियां हैं जिनका आपकी सरकार को अगले कुछ सालों में सामना करना पड़ेगा.
3: हमारे सामने चुनौतियां तो बहुत है, क्योंकि सिर्फ ये 15 साल नहीं, इसके पहले 3.5 दशक का मतलब करीब 50 साल का जो अपशासन पश्चिम बंगाल में हुआ है, जब सारा देश आगे बढ़ रहा था, हम लोग पीछे जा रहे थे. तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, भारी इंडस्ट्री नहीं हमारे राज्य में. यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा, तो जैसे हमारे संकल्प पत्र में हमने वादा किया है कि पहले जो मंत्रिसभा मंत्रिमंडल की बैठक होगा उसमें आयुष्मान कार्ड सबके लिए हम लोग अवेलेबल करेंगे, वो हमारे सबसे जो पहला वादा वो है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी ये प्रतिश्रुति देके गए हैं, पहला बात. दूसरी बात यह कि 45 दिन के अंदर जो 7th Pay Commission पश्चिम बंगाल का जो पेंडिंग है वो बैठाएंगे, क्योंकि राज्य सरकारी जो कर्मचारी है उनका डीए इतने सालों से पेंडिंग है. ममता बनर्जी जी वो जनता की पैसा, टैक्स की पैसा खर्च करके वो डीए बंद करवाने के लिए कहां कहां नहीं गई, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह चली गई. तो ये हमारा वादा है, ये पूरा करेंगे. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जॉब क्रिएशन, क्योंकि पश्चिम बंगाल में यहाँ पर इतना ब्रेन ड्रेन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जॉब नहीं है.
1: जी.
3: वो आप माइग्रेंट लेबरर बोलिए या व्हाइट कॉलर जॉब, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर कौन जॉब करेगा. तो वो हमको वापस लाना है. हमारा बंगाल के जो टैलेंट है, इतने अच्छे अच्छे जो लोग हैं, उनको वापस बंगाल में लाना है, जॉब क्रिएशन है. क्योंकि पश्चिम बंगाल में फिलहाल जो अर्थनीति है, जीडीपी है, बहुत नीचे, सारा देश के मुकाबले इतना बड़ा राज्य है उसके मुकाबले बहुत नीचे चला गया. तो चुनौती तो बहुत सारे हैं, और एक दिन में तो नहीं होगा ये, जो कोई एक महीना में भी नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जो हम एक एक कदम हर दिन के लिए हमारे लिए चैलेंज होगा. और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी सरकार पे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बार बार बोल के गए हैं कि डबल इंजन की सरकार. और आपको तथ्य मैं दे दूं कि ऑलरेडी केंद्रीय सरकार 2,900 करोड़ रुपए का एक मूव जो है हमारे यहाँ ग्रांट किया है कि पश्चिम बंगाल की जो हम लोग पीछे रह गए थे उसको थोड़ा सा पैरिटी लाने के लिए ये राशि नव निर्वाचित पश्चिम बंगाल सरकार को दी जाएगी.
1: शिखर जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे जब हम चुनौतियों की बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो अगली जो सरकार है उसके सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी.
4: बिल्कुल अग्रवाल जी, वहाँ पे सबसे बड़ी बात है 15 साल के बाद सुशासन का शुरुआत होगा.
1: जी.
4: यानी गुड गवर्नेंस. और प्रधानमंत्री की तरफ से यही बड़ी गारंटी है कि जो जो केंद्र के बड़े कार्यक्रम जो है, पीएम आवास योजना हो, आपके जल जीवन मिशन हो, जितने कार्यक्रम को जो ममता ने इम्प्लीमेंट नहीं किया और इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया, या आयुष्मान भारत हो, ऐसे कई कार्यक्रम को राजनीतिक कारण से वहां पर रुकावट डाली थे ममता जी ने, वो सारे चीजें अभी हट जाएगा. अब बंगाल भी राष्ट्रीय जो एक जर्नी चल रही है विकसित भारत के लिए उसमें शामिल हो जाएंगे, खास करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री. देखिए, एक पैसा भी वहां कोई भी इन्वेस्टमेंट की कोई भी ये नहीं थी, स्कोप ही नहीं थी, क्योंकि ऐसा एक शासन था, लोगों को डर था भाई पैसा डालो तो पहले टोलबाजी होगी यानी कट होगी. देखिए, पहले से बिगड़ा हुआ था वामपंथी सरकार के समय, 34 इयर्स जो वहां पे वामपंथी की सरकार, चीजें बहुत बिगड़ी थी, सबको पता है. उसके बाद जब बुद्धदेव भट्टाचार्य जी के नेतृत्व में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश की, तब उसको विरोध करके ममता ने बड़ा ये छेड़ा कैंपेन, और जिसके वजह से ममता को फिर मैंडेट मिली। ममता ने चीजों को और बिगाड़ा, और आज एक परिस्थिति आ गई है बंगाल में, नौजवान के लिए सबसे बड़ी चीज नौकरी चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे सारे बंगाल के जो हमारे बच्चे हैं जो शिक्षा लेकर आते हैं बाहर, सबको बाहर जाना पड़ रहा है। ये चीजों पर एक रोक लगेगी, जितनी जल्दी वहां पे इंडस्ट्री की छोटे बड़े जो भी उद्योग शुरू हो सकता है उसका होगा, और सबसे बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश होगा। क्योंकि अभी तक ऐसा एक रूल चल रहा था कि शासन और पार्टी और सरकार पुलिस कोई फर्क नहीं था, सब कुछ पार्टी के दादा तय करते थे और आपस में भी लड़ते थे इलेक्शन के लिए। देखिए एक चीज बताना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल की भ्रष्टाचार को भी हमें समझना है, इतने सालों से क्या हो रहा था, क्या भ्रष्टाचार होता है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो कोई कमीशन ले लेते, यहाँ पे प्रोजेक्ट तो होता ही नहीं है, या प्रोजेक्ट में जो भी पैसे वो खा जाते थे, और लोक कल्याण के लिए भी जो पैसा खर्चा होता था उसमें भी पैसे खाते थे। तो ऐसी एक हालत बन गया है जो उसको पूरा पूरा खत्म करके, और अभी जो नया गवर्नमेंट बनेगा उस पर आप देखेंगे बहुत चीजें होंगी, और सबसे बड़ी बात शांति कायम हो जाएगी, पॉलिटिकल वायलेंस की बिल्कुल बंद, और तीसरी बात लोगों को एक सुरक्षा महसूस करेंगे, यह सबसे बड़ी बात है।
1: संचिता जी आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि इस बार तृणमूल कांग्रेस को केवल 80 सीटें ही मिल पाई हैं, जो कि 2021 में उसके द्वारा जीती गई 2015 सीटों के मुकाबले में बहुत कम है, आधी से भी कम है। फिर भी तृणमूल कांग्रेस जो है वो राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। तो नतीजों के बाद जो जिस तरह के घटनाक्रम हमने देखे हैं उसे देखते हुए आप राज्य की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस और इसकी प्रमुख ममता बनर्जी की भूमिका को किस तरह से देखती हैं?
0: देखिए ममता बनर्जी तो अभी तक अपनी हार स्वीकार कर ही नहीं पाई, अभी तक अपने आप को चीफ मिनिस्टर बोल रही है, जबकि गवर्नर ने असेंबली डिसॉल्व कर दिया है उसके बाद भी। तो आई थिंक ये बात उनके दिमाग में थोड़ा बैठने में टाइम लगेगा, और जो वो बोल रही है कि वो अभी पूरा भारतवर्ष घूम घूम के बीजेपी को सारे हटाएंगी, उसके बारे में तो क्या ही बोले। तो तृणमूल कांग्रेस से अभी टोन जैसे आ रहे हैं लीडर से, मेरे ख्याल से कुछ लोग बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। अब बीजेपी उनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं वो तो बीजेपी की बात है, और कुछ लोग तृणमूल टीएमसी में रह जाएंगे। जितना तक मैंने सुना है कि बहुत सारा टीएमसी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में जो एक दूसरे से लड़ाई जो चल रही थी वो सब एकदम बाहर आ रही है, ये और भी बाहर आती जाएगी। हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि जैसे सद्दाम हुसैन ने जब कुवैत इन्वेड किया था और अमेरिका ने उनको हटा दिया, उन्होंने सारे जो ऑयल वेल था तेल की खनी आग जला दिए, तो सद्दाम हुसैन हट जाने के बाद भी वो आग जलती रही। तो ममता बनर्जी भी ऐसा ही कुछ करना चाह रही है।
1: शेखर जी, जो भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत ने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य को किस तरह प्रभावित या फिर आप कहिए कि परिवर्तित किया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल आज तक पारंपरिक रूप से वामपंथ का गढ़ रहा है, तो पश्चिम बंगाल की राजनीति और पूरे भारत की अगर हम बात करें तो इंडिया ब्लॉक जो है भाजपा की जीत ने उसको किस तरह से प्रभावित किया है?
4: देखिए बहुत बड़ा फर्क यही पड़ेगा, हमारे राजनीति में सुशासन एक माइलस्टोन बन गया है कि कोई पार्टी की हार या जीत इस ये पे मेजर किया जाएगा, वो लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, गरीबों के लिए क्या कर सकते हैं, किसान के लिए क्या कर सकते हैं, महिला के लिए क्या कर सकते हैं। एक प्रकार से जो राजनीतिक हिंसा पर भी एक बड़ी रोक लगेगी और बड़ी मैसेज जाएगी। आपने सही कहा कि बीजेपी के लिए अपना एक इमोशनल जर्नी है, पहले जनसंघ की जो फाउंडर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके प्रति एक बहुत बड़ा ऑनर है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो कल्पना थी सोनार बंगला का, आज वो सपना को साकार करने में पहला कदम है।
1: शेखर अय्यर जी, संचिता गुहा और किया घोष, आपने आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में शामिल हुई और पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की जो तैयारियां हैं उसके परिपेक्ष में राजनीतिक गतिविधियों और चुनौतियों पर हमसे बातचीत की, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
5: सुर्खियों में
6: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आलमी खबरें नशर होंगी।
7: ये आकाशवाणी है, अब आप मुदम्मर से आलमी खबरें सुनिए। सुविंदु अधिकारी ने आज मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हल्फ लिया। वजीर आजम ने मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने हलफ बरदारी की तकरीब में शिरकत की। चिली के वजीर खारजा फ्रांसिस्को पेरिस माकिना आज से भारत का दौरा शुरू करेंगे। आज پوچیشا بوئشاخ کے موقع پر رابندر ناتھ ٹیگور کا 165واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے. ایران کو ہتھیاروں کی مدد دینے کی بنا پر امریکہ نے 10 افراد اور کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی ہیں اور فٹ بال

फुटबॉल में भारत ने 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार जगह बनाकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शुभेंदु अधिकारी को मगरबी बंगाल के बीजेपी के पहले वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया। उनके साथ पांच दूसरे काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया। इन वजीरों के नाम हैं दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किरतानिया, निशित परमानिक और खुशुदीराम तुदू। वजीर आजम मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, कई मरकजी वजीरों और बीजेपी की सरकार वाली रियासतों के उदराए आला ने हलफ बरदारी की तकरीब में शिरकत की। ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले वजीर आजम ने एक रोड शो भी किया। चिली के वजीर खारजा फ्रांसिस्को पेरिस माकिना आज से भारत का सरकारी दौरा शुरू करेंगे। वो इस महीने की 15 तारीख तक इस दौरे पर रहेंगे। जनाब माकिना कल नई दिल्ली में एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वो तजारती तकरीबात में भी शिरकत करेंगे, जिनका एहतमाम पीर को भारत के खुराक के दरामदकारों के फोरम और एसोचैम ने किया है। मंगल को वो तजारत के वजीर पीयूष गोयल से बातचीत करेंगे और ताजिरों की एक तकरीब में शिरकत करेंगे, जिसका एहतमाम CII ने किया है। वो CII की सालाना तजारती समिट 2026 में भी शिरकत करेंगे। बुध के रोज वो वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से बातचीत करेंगे। इसके बाद वो भारत चिली तजारती वफद के साथ एक मुश्तरका मीटिंग भी करेंगे। रविन्द्रनाथ ठाकुर के 165वें यौम पैदाइश पर आज पोचीशा बोईशाख के मौके पर रविन्द्रनाथ जयंती मनाई जा रही है। पूरी दुनिया में सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है और खास प्रोग्राम शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी समेत पूरे मगरबी बंगाल और बांग्लादेश में मुनक्किद किए जा रहे हैं। इन प्रोग्रामों में संगीत, शायरी, रक्स और ड्रामे का इनेकाद किया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन और वजीर आजम मोदी ने पोचीशे बोईशाख के मौके पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को खिराज अकीदत पेश किया। हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमानी को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS मुकरर किया है। वजारत दिफा का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमानी ओहदा संभालने की तारीख से अगले अहकाम तक फौजी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमत अंजाम देंगे। वो जनरल अनिल चौहान की मुलाजमत की मुद्दत 30 मई को मुकम्मल होने के बाद अपना ओहदा संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमानी एक इंतहाई मुअज्जिज अफसर हैं, जिनकी 4 दहाइयों से ज्यादा की शानदार खिदमत है। वो सितंबर 2025 से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल कमांड के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने मगरबी और शिमाली महाजों पर अहम ऑपरेशनल फॉर्मेशंस की कमांड भी की है। हुकूमत ने वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामी नाथन को बहरिया का अगला सरबराह मुकरर किया है। वजारत दिफा ने कहा है कि वाइस एडमिरल स्वामी नाथन इस वक्त मगरबी बहरिया की कमान के फ्लेग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडमिरल की तकरीबन 4 दहाइयों की शानदार खिदमत है। भारतीय बहरिया में मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हुए उनका ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक और जवानों से मुताल्लिक बंदोबस्त का काफी तजुर्बा है। वो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह लेंगे, जो 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका ने 10 अफराद और कंपनियों के खिलाफ बंदिशों का ऐलान किया है, जिनमें चीन और हांगकांग के अफराद और कंपनियां भी शामिल हैं। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने हथियार और शाहिद ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने में दरकार खाम मवाद हासिल करने की ईरान की कोशिशों में मदद दी है। अमरीका की तरफ से ये बंदिशें सर डोनाल्ड ट्रंप के सर शी जिनपिंग के साथ एक मीटिंग के लिए चीन जाने के मनसूबे से कुछ दिन पहले आयद की गई हैं, क्योंकि ईरान के साथ जंग खत्म करने की कोशिशों में तातुल पैदा हो गया है। एक बयान में अमरीकी महकमे खजाना ने कहा कि वो ईरान के फौजी सनती ठिकानों के खिलाफ
اقتصادی کارروائی کرنے کو تیار ہیں تاکہ ایران کو ہتھیار بنانے کی صلاحیت کو اثرینوں پروان چڑھانے سے روکا جا سکے. محکمے نے کہا کہ وہ ایئر لائن سمیت ایسی کسی بھی غیر ملکی کمپنی کے خلاف کارروائی کرنے کو بھی تیار ہیں جو ایران کی ناجائز تجارت کی حمایت کرتی ہو. وہ ان غیر ملکی مالی اداروں پر دوسرے دور کی بندش عائد کر سکتا ہے جو ایران کی کوششوں میں مدد دے رہے ہیں.

0: जिनमें वो इदारे भी शामिल हैं जो चीन की छोटी आजाद रिफाइनरी से वाबस्ता हैं। माहिरीन का कहना है कि महकमे खजाना की इस कार्रवाई का मकसद आबनाए हुरमुज और इलाकाई इत्तेहादियों में जहाजों की आमदोरफ्त में धमकी देने की ईरान की सलाहियत के खिलाफ कार्रवाई करना है। ईरान ने आबनाए हुरमुज बंद कर दी है जो ईरान और ओमान के दरमियान एक तंग आबी गुजरगाह है जहां से दुनिया के खाम तेल और सयाल बनाई गई कुदरती गैस का पांचवा हिस्सा गुजरता है। अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान की तरफ से अमरीका की हिमायत वाली करारदाद के एक मुसव्वदे को मुस्तरद कर दिए जाने के बाद आबनाए हुरमुज पर तातुल में शिद्दत आ गई है। ईरान ने कहा है कि इस करारदाद में खामियां हैं और इसके पीछे सियासी मकसद कारफरमा है। ईरान ने कहा है कि इस तजवीज से गैर कानूनी इकदाम को कानूनी जवाब हासिल होगा बजाय इसके कि इससे तनाजे को हल करने में मदद मिले। ईरान ने अक्वामे मुत्तहिदा के रुकन मुल्कों से अपील की है कि वो इस मुजव्वजा करारदाद की हिमायत न करें। इस करारदाद को अमरीका के साथ साथ बहरैन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर की हिमायत हासिल है और इसमें तवानाई की दुनिया की सबसे अहम गुजरगाह में जहाजों की आजादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए कहा गया है। अमरीका ने ईरान पर कमर्शियल जहाज लाने के लिए खतरा पैदा करने और बहरी ट्रैफिक को कमजोर करने का इल्जाम आयद किया है। इसी दौरान ईरान की फौज ने कहा है कि अमरीकी फौजों ने मुत्तहिदा इमारात में फुजैरा बंदरगाह के नजदीक ईरान के एक तेल टैंकर और एक और जहाज को निशाना बनाया था जबकि इत्तला के मुताबिक अमरीका के फजाई हमलों में बंदर खमीर, सिरिक और किशम जजीरे में शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। इधर ईरान का फजाई निजाम भी अपने दिफा के लिए सरगर्म है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के दरमियान एक तीन रोजा जंगबंदी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आर्जी मुआहिदा दूसरी जंग अजीम में उस वक्त की सोवियत यूनियन के रोल की याद में मनाई जाने वाली रूसी फतह के दिन की तकरीबात के मौके पर किया गया है। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में जनाब ट्रंप ने कहा कि यह जंगबंदी 9 मई से 11 मई तक रहेगी और इसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान किसी भी तरह की फौजी कार्रवाई मुअत्तल रहेगी। ट्रंप ने कहा कि आर्जी मुआहिदे की दरख्वास्त खुद उन्होंने बराह रास्त की थी। उन्होंने कहा कि इस मुआहिदे में दोनों तरफ से 1,000 कैदियों को रिहा किया जाना भी शामिल है। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि मुज़ाकरात फिलहाल जारी हैं जिनका मकसद जंग को मुस्तकिल तौर पर खत्म करना है। इस जंग को उन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद से अब तक सबसे बड़ी जंग करार दिया। यौम फतेह रूस में गैर मजहबी एक अहम तरीन छुट्टी का दिन है जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन दूसरी जंग अजीम में उस वक्त की सोवियत यूनियन की नाजी जर्मनी पर फतेह की याद मनाया जाता है जिसे रूस ने हुब्बुल वतनी की अजीब जंग के नाम से जाना जाता है। फुटबॉल में भारत ने पहली बार 17 साल से कम उम्र के खवातीन के एएफसी एशियन कप के क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करके तारीख रकम की है। भारत ने कल चीन के शहर शुजू में अपने ग्रुप बी के फाइनल में लबनान को 4-0 से हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने आज मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। वजीर आजम ने मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने हलफ बरदारी की तकरीब में शिरकत की। चिली के वजीर खारजा फ्रांसिस्को पेरिस माकिना आज से भारत का दौरा शुरू करेंगे। आज पुचीशे बोईशाख के मौके पर रविन्द्रनाथ टैगोर का 165वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। ईरान को हथियारों की मदद देने की बिना पर अमरीका ने 10 अफराद और कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। और फुटबॉल में भारत ने 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार जगह बनाकर तारीख रकम की है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। पेश हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। शुभेंदु अधिकारी ने आज मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने हलफ बरदारी की तकरीब में शिरकत की। चिली के वजीर खारजा फ्रांसिस्को पेरिस माकेनिया आज से भारत का दौरा शुरू करेंगे। आज पोचीशे बोईशाख के मौके पर रविन्द्रनाथ टैगोर का 165वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। ईरान को हथियारों की मदद देने की बिना पर अमरीका ने 10 अफराद और कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। और फुटबॉल में भारत ने 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एशिया कप के क्वार्टर फाइनल्स में पहली बार जगह बनाकर तारीख रकम की है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर उर्दू सर्विस की पहली मजलिस का वक्त अब खत्म होता है। दिन में 3 बजे दूसरी मजलिस के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज बात हो रही है फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा की। श्रोताओं, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। तो कहानी है बहन भाइयों की। प्रशांत और जसबीर मॉन्ट्रियल कनाडा में रहते हैं। माता पिता के तलाक के कारण दोनों अलग हो जाते हैं। प्रशांत माँ के साथ इंडिया चला आता है, जबकि जसबीर पिता के साथ वहीं रह जाती है। इसके बाद पिता द्वारा धोखा दिए जाने पर जो जैनिस है वो घर छोड़ देती है और बन जाती है हिप्पी, और अपना नाम रख लेती है जसबीर से जैनिस। इसके बाद वर्षों बाद पिता के बुलावे पर जब प्रशांत काठमांडू आता है और देखता है कि उसकी बहन नशे की आदी हो चुकी है तो अपनी पहचान को पूरी तरह भूल चुकी है। बस वहीं से संघर्ष शुरू होता है और प्रशांत जुट जाता है पूरी तरह से अपनी बहन को हिप्पियों के चंगुल से छुड़ाने के लिए और वापस उसकी जिंदगी अच्छी बनाने के लिए। तो कहानी ऐसी थी कि लोगों के दिलों को छू गई थी, क्योंकि अक्सर जो कहानियां हम फिल्मों में देखा करते थे वो नायक नायिका के बीच में ज्यादा दिखाई देती थी, लेकिन ये जो कहानी थी ये बहन और भाई के प्रेम की थी। तो इसलिए लोगों के मन में इस फिल्म के लिए एक अलग ही बात थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में देवानंद, जीनत अमान, मुमताज, प्रेम चोपड़ा, अचला सचदेवा थी, और सबसे ज्यादा जो चर्चा हुई इस फिल्म में वो हुई जीनत अमान की। उनका बोल्ड अंदाज, अलग स्टाइल, स्क्रीन प्रेजेंस उस समय के लिए बिल्कुल नया था। और कहा जाता है कि इस फिल्म के लिए कई अभिनेत्रियों से संपर्क किया गया था इस रोल के लिए, लेकिन बहुत सारे, क्योंकि ये जो रोल था ये थोड़ा सा उस समय के देखते हुए बोल्ड किरदार था, तो हर अभिनेत्री इसके लिए राजी नहीं हो रही थी। इवन दो बताया तो ये भी जाता है कि मुमताज को भी पहले यही रोल ऑफर हुआ था, लेकिन सबने मना कर दिया था और फिर कास्ट किया गया, जीनत अमान का ऑडिशन लिया गया और जीनत अमान को इस रोल में बेहतरीन जो किरदार उन्होंने करके दिखाया है वो आज तक याद किया जाता है।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और मैं हूँ इस कार्यक्रम में आपके साथ, आप इसके इस कार्यक्रम की होस्ट विजेता चतुर्वेदी। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा की। जब इस फिल्म में जीनत अमान को कास्ट किया गया था, उससे पहले वो मॉडलिंग कर रही थी और मिस एशिया पैसिफिक का खिताब भी जीत चुकी थी, लेकिन उसके बाद उनका करियर आगे नहीं बढ़ रहा था, तो उन्होंने इंडिया छोड़ने का मन बना लिया था। और ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने अपने बैग वैग पैक कर लिए थे। उसी दौरान जब ये मूवी की बनने की बात आई तो उनको ऑडिशन किया गया और ऑडिशन में वो सिलेक्ट भी हो गई, लेकिन वो बताती हैं कि उस दौर में जो फिल्में हैं वो दो दो तीन तीन साल तक बनती थी, उनकी एडिटिंग इतना लंबा समय लेती थी। तो फिर जब काम नहीं मिल रहा था तो फिर दोबारा से उन्होंने जाने का सोचा। तब कहते हैं देव साहब से उन्होंने बात की और इस फिल्म की एडिटिंग को जल्दी से करवाया, और जब ये फिल्म लोगों के सामने आई तो रातों रात जीनत अमान को सुपरस्टार बना दिया और नजर में आ गई थी। क्योंकि ये जो जीनत अमान का जो उस वक्त का जो देख जिस तरह की वो दिखती थी, बाकी सब हीरोइनों से काफी अलग दिखाई देती थी, उनका स्टाइल जो था वो बिल्कुल अलग था, इसलिए उन्होंने बहुत ही जल्दी अपने दर्शकों के दिल में एक अलग से जगह बना ली। श्रोताओं, बात की जाए इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन की तो भारत के अलावा नेपाल में भी इसकी शूटिंग की गई है, वहां की खूबसूरत वादियां दिखाई

गई हैं और बहुत ही हिप्पी जो कल्चर इस फिल्म में दिखाया गया है, बहुत ही वास्तविक दिखाया गया है। उस दौर में विदेशों में शूटिंग करना एक बहुत बड़ा कल्चर था, बहुत बड़ी बात होती थी और खासतौर से देवानंद की फिल्मों में तो ऐसा जरूर होता था कि वो अपने फिल्म का कुछ हिस्सा देश के बाहर जरूर करते थे। काठमांडू की गलियां, मंदिर, खुले माहौल में इस फिल्म को एक अलग ही पहचान दी। और अब बात करते हैं फिल्म के म्यूजिक की। दोस्तों, फिल्म का जो म्यूजिक दिया वो दिया था महान संगीतकार आरडी बर्मन ने और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्म के गाने आज भी सदाबहार है और सबसे बड़ा सुपरहिट गाना जो है वो अब मैं आपको सुनवाने जा रही हूं। और यही गाना इस फिल्म की पहचान भी बना।

और हमारे बहुत सारे श्रोता भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, तो आइए उनकी भी संदेश हम यहाँ शामिल कर लेते हैं। तो सबसे पहला संदेश हमारे पास आया कविता गौड़ और दिग्दर्शन का, मेरठ कैंट से लिखते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म पर केंद्रित आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, शानदार उत्तम प्रस्तुतिकरण और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका भी धन्यवाद कि आपने अपनी इतना अच्छा मेल हमें भेजा है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा जुड़ रहे हैं, लिखते हैं एक फिल्म हरे रामा हरे कृष्ण की कहानी गीत सुन रहे हैं, गजब कहानी, गजब संगीत और लाजवाब गीत। भोपालगढ़ राजस्थान से जुड़ रहे हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार और लिखते हैं कि हरे रामा हरे कृष्णा जिसे देवानंद ने निर्देशित किया और नशाखोरी खिलाफ इस फिल्म में दिखाया गया है, जिसमें अभिनय किया था देवानंद, जीनत अमान, मुमताज और प्रेम चोपड़ा ने, आनंद बख्शी के लिखी हुई गीतों ने और संगीत से सजाया आर डी बर्मन ने, उन गीतों को आवाज दी आशा भोसले की।

0: किशोर कुमार, आर डी बर्मन, उषा उत्थुप ने, और इस फिल्म के बारे में जो बातें बताई हैं आपने, ये बहुत ही रोचक लग रही हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी जुड़ रहे हैं शांति नगर सोनीपत से और लिखते हैं, वी आर लिसनिंग प्रोग्राम और एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, स्टोरी, ऑल टाइम हिट्स। जी हाँ, बिल्कुल, इस फिल्म के गाने ऑल टाइम हिट्स ही हैं जो हमेशा ही अच्छे लगते हैं। अगला संदेश हमारे पास देवशंकर तमूरिया, जय देव तमूरिया, तुषार देव तमूरिया, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा, मास्टर अल कबीर, किकरी मेटा, बेलहारी पाटन दुर्ग से संतोष शर्मा और रुक्मणी शर्मा भी जुड़ रहे हैं, भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा जुड़ रहे हैं, दतरंगी से, पिपारिया से, कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता और समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति, राधे, दीपक, अंकु राघव, गांव फरासी, जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जुड़ रहे हैं, लिखते हैं कि हरे रामा हरे कृष्णा की कहानी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है और जो जानकारी आप दे रही हैं बहुत ही बढ़िया है, फिल्म के गीत भी बहुत ही अच्छे हैं। खुशनुमा प्रस्तुति, गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से जुड़ रहे हैं, शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जुड़ रहे हैं, वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक जुड़ रहे हैं, नलेश्वर नगर नरवेल से पीएस नुहारकर, निर्मला और विशाल जी जुड़ रहे हैं, अजीत भावसार भी जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जुड़ रहे हैं और लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हेना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का संदेश रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, और वीरमगांव गुजरात से अजीत भवसार, प्रमिला भवसार। तो ये हमारे श्रोताओं के संदेश, तो आपके इतने प्यारे प्यारे संदेशों के नाम, एक और गीत इस फिल्म से।
1: तो इस्तेमाल करो हाथ पाओ, माउंट एवरेस्ट पे जाओ, मून पे जाओ, यहाँ पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। अफीम, चरस, गांजा के बीच गुनगुनाने से कुछ नहीं होगा।
2: अगर यही भक्ति है, यही भगवान है, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, जिसका जप जपते रहते हो, तो उतार के फेंक दो इन मालाओं को, बहा दो इन फूलों को बागमती नदी की धारा में, वहां ज्यादा शोभा देंगे।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोता, इस फिल्म की खास बात यह है कि ये जो फिल्म है, इसे हिप्पी संस्कृति को जब देवानंद ने पढ़ा था तो उनके मन में ये विश्वास आया था कि इस पर भी एक फिल्म बननी चाहिए, लोगों के बीच जागरूकता आनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त पर नशाखोरी तेजी से बढ़ रही थी। इसको दूर करने के लिए उन्होंने इस फिल्म का निर्माण करने का सोचा। आर डी बर्मन ने वेस्टर्न और इंडियन म्यूजिक का एक अनोखा मिश्रण इस फिल्म में किया। इस फिल्म के लिए जीनत अमान को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, और जो उनका लुक और स्टाइल था वो युवाओं के बीच में फैशन ट्रेंड बन गया था। श्रोताओं, इस फिल्म का संदेश सिर्फ मनोरंजन करना नहीं था, इसने समाज को सोचने पर मजबूर किया। हालांकि इस फिल्म को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, लेकिन गानों को लेकर या फिर इसमें जो जिस तरह की कल्चर दिखाया गया है उसको लेकर, लेकिन इस फिल्म का संदेश जो था वो एकदम साफ था कि जो परिवार टूटते हैं, गलत संगत जो युवाओं की हो जाती है, उसको दोबारा से जिंदगी में किस तरह से शामिल किया जाए, इसी संदेश को लेकर 1971 में यह फिल्म आई थी और लोगों के मन पर छा गई थी। तो श्रोताओं, ये फिल्म एक फिल्म नहीं बल्कि अपने दौर का एक आईना थी। इस फिल्म ने संगीत दिया, संदेश दिया और हिंदी सिनेमा को एक नई सुपरस्टार दी, जीनत अमान। तो इसी के साथ हमारा आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें मेल करके जरूर बता सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने आज पश्चिमी बंगाल के नवे मुख्यमंत्री वजों सहुं चुक ली है। तमिलनाडु विच टीवी के मुखी सी जोसफ बिजले की अगवाई हेठ सरकार के गठन नूं लैके अनिश्चितता बनी हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS और वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन समुद्री फौज के अगले मुखी होंगे। खाड़ी इलाके में ईरान और अमरीका विचकार तनाव बढ़ गया है। IPL क्रिकेट में आज जयपुर में 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल होगा। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਵੇਂਦੁ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ BJP ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
5: ਆਮੀ ਸੁਵੇਂਦੁ ਅਧਿਕਾਰੀ

0: दोष अग्निमित्र पॉल, अशोक कितानिया, निशित प्रमाणिक और सुधीराम टोडू।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
0: वजीर आजम ने मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, कई मरकजी वजीरों और बीजेपी की सरकार वाली रियासतों के वज़राए आला ने हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत की। ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले वजीर आजम ने एक रोड शो भी किया। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के लिए दरकार अक्सरियत की हिमायत में कमी की वजह से नई सरकार बनाने में दाखिल हो रही है। सीपीआईएम के कौमी जनरल सेक्रेटरी बेबी ने कहा है कि ये गवर्नर का फर्ज है कि वाहिद सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए मदद करे। चेन्नई में नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने गवर्नर पर इल्जाम लगाया कि वो दिल्ली के इशारों पर ताखीर के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जमहूरी अमल में ताखीर करके बीजेपी रियासत में एआईएडीएमके सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान एएमएम के सरबराह टीटीवी दीनाकरन ने मांग की है कि उनकी पार्टी के एमएलए की तरफ से हिमायत का फर्जी खत टीवीके को दिए जाने के मामले पर गवर्नर को कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी तरफ एआईएडीएमके के अरकान असेंबली पुदुचेरी से चेन्नई पहुंच गए हैं, जो पार्टी जनरल सेक्रेटरी ई पलानीसामी से गुफ्तगू करेंगे। वजीर आजम ने मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। दिन में लगभग 11 बजे वजीर आजम बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के 45 साल पूरे होने की तकरीब में शामिल होंगे और आर्ट ऑफ लिविंग बैल अक्वामी मरकज में नए तामीर किए गए ध्यान मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम प्रोग्राम के दौरान वहां मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। इसके बाद वजीर आजम ने मोदी हैदराबाद रवाना हो जाएंगे और तकरीबन 3 बजे हैदराबाद में कई तरक्याती प्रोजेक्टों की बुनियाद रखेंगे और उनका इफ्तिताह करेंगे, जिनकी मालियत 9,400 करोड़ रुपए बताई जाती है। सोमनाथ मंदिर की असर नौ तामीर के 75 साल पूरे होने के मौके पर सोमनाथ अमृत पर्व 2026 मनाया जा रहा है। इस 5 रोजा तकरीब के दौरान मंदिर की तारीखी अहमियत को उजागर किया जाएगा। इस तकरीब को यादगार बनाने के लिए वजीर आजम ने मोदी पीर को सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। कानूनी खिदमात की कौमी अथॉरिटी NLSA आज पूरे मुल्क में दूसरी कौमी लोक अदालत 2026 का इनेकाद कर रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए NLSA के मेंबर सेक्रेटरी संजीव पांडे ने बताया कि शमूलियत और आवाम पर मरकूज तरीकों के जरिए तनाजात के बआसानी निपटारे और अदालतों पर बोझ को कम करना इस इकदाम का मकसद है। उन्होंने बताया कि मुसालहत के काबिल फौजदारी मामलात, बैंकों के चेक वापस होने के मामलात और बैंक की रकम वसूल करने के तनाजात समेत इस लोक अदालत में बड़े पैमाने पर तनाजात निपटाए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि 2023 और 2025 के दरमियान 12 कौमी लोक अदालतों का इनेकाद किया गया, जिसमें 26 करोड़ मामलात का निपटारा किया गया।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के दरमियान रिवायती रिश्तों की तारीफ की। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने खारजी मामलात और त्रिनिदाद एंड टोबैगो के कैरीकॉम मामलात की वजारत में परचम कुशाई के मौके पर खिताब किया। वजीर मौसूफ ने दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे सकाफती रवाबित और तारीखी रिश्तों का जिक्र किया। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों मुल्कों के दरमियान कपड़ों, खेलों और रिवायतों में यकसानियत पाई जाती है। डॉक्टर जयशंकर ने त्रिनिदाद और टोबैगो की वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसा से मुलाकात की और बाहमी ताउन को मजीद मजबूत करने के इकदाम के बारे में तबादला ख्याल किया। हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुरमानी को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS मुकर्रर किया है। वजारत दिफा का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल सुरमानी ओहदा संभालने की तारीख से अगले अहकाम तक फौजी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमात अंजाम देंगे। हुकूमत ने वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को बहरिया का अगला सरबराह मुकर्रर किया है। वजारत दिफा ने कहा है कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन इस वक्त मगरबी बहरिया की कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। एडमिरल की तकरीबन चार दहाइयों की शानदार खिदमात हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर के 165वें यौम पैदाइश पर आज पोचीशे बोईशाख के मौके पर रविन्द्र जयंती मनाई जा रही है। पूरी दुनिया में सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है।

खास प्रोग्राम शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी समेत पूरे मगरबी बंगाल और बांग्लादेश में मुनक्किद किए जा रहे हैं। इन प्रोग्रामों में रविन्द्र संगीत, शायरी, रक्स और ड्रामे का इनेकाद किया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम ने मोदी ने पोचीशे बोईशाख के मौके पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर को खिराज अकीदत पेश किया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पीएमजेजेबीवाई और अटल पेंशन योजना को पूरे मुल्क के शहरियों की खिदमत में 11 साल मुकम्मल हो गए हैं। खजाने की वजारत ने बताया कि सभी शहरियों खासतौर से समाज के कमजोर तबकों को इक्तिसादी सहूलत देने के लिए इन स्कीमों का आगाज किया गया था। इन स्कीमों के बारे में बात करते हुए मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बताया कि वजीर आजम मोदी ने पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी जन सुरक्षा स्कीमों का आगाज किया था ताकि कम कीमत पर इंश्योरेंस और पेंशन के फायदे हासिल किए जा सकें। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने काले धन को जायज बनाने के एक मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी है। काले धन को जायज बनाने के इस मामले में हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड और इसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा शामिल हैं। दो रोजा बहरहिंद मुजाकरात आईओडी 10 कल नई दिल्ली में खत्म पजीर हुए। तब्दील होती दुनिया में बहरहिंद का खिता इन मुजाकरात की थीम थी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सुविंदु अधिकारी मगरी बंगाल के बीजेपी के पहले वजीर आला बन गए हैं। उन्होंने 5 काबिनी उदरा के साथ हलफ लिया। तमिलनाडु में सरकार बनाने पर सियासी तातुल बरकरार है। टीवी के पार्टी को अक्सरियत मिलना बाकी है। कानूनी खिदमात की कौमी अथॉरिटी तनाजात के बासानी हल के लिए पूरे मुल्क में लोक अदालत का इनेकाद कर रही है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बाहमी ताउन को मजबूत करने की गरज से त्रिनिदाद और टोबैगो की वजीर आजम से मुलाकात की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 वैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्रवाई की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में

0: पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
1: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की।

0: दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। दो दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
1: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने एफएम स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है प्रोग्राम एक ही कलाकार का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में।

श्रोताओं, आज हम बात करेंगे संगीत के एक ऐसे सितारे की जिनकी आवाज आज भी दिलों को छू जाती है। किंग ऑफ गजल के नाम से मशहूर इस सिंगर की आवाज सुनकर दिल पिघल जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तलत महमूद साहब की। 24 फरवरी 1924 को लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। लखनऊ जो शायरों और संगीतकारों का शहर है, वहीं एक सांस्कृतिक परिवार में तलत साहब की तीसरी संतान थी। पिता मंजूर महमूद जी एक गांधीवादी थे और अमीनाबाद में क्यूरियो शॉप चलाते थे। बचपन से ही इनको संगीत के प्रति दीवानापन था, जो छोटे तलत अक्सर बड़े बड़े उस्तादों की महफिलों को घंटों सुनते थे। फिर इन्होंने मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक, जो अब भातखंडे विश्वविद्यालय है, यहाँ से पंडित एस सी आर भट्ट से शास्त्रीय संगीत सीखा और यहीं से शुरू होती है एक ऐसे सफर की कहानी जो आने वाले

में भारतीय संगीत को एक नई दिशा देने वाला था। आगे चलकर कैसे तलत महमूद ने भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयां दी जानेंगे, पर अभी सुनिए इनके फिल्म दाग का ये बेहतरीन सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं तलत महमूद साहब, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, हर महान कलाकार की तरह तलत महमूद का सफर भी आसान नहीं था। महज 16 साल की उम्र में 1939 में इन्होंने लखनऊ ऑल इंडिया रेडियो पर गजलें गाना शुरू किया। दाग मीर जिगर की शायरी को इनकी नर्म मखमली आवाज में सुनकर लोग खुश हो जाते थे। इनकी आवाज में वो मिठास थी जो कहीं और नहीं मिलती। यहीं से इनकी जर्नी शुरू हुई जो आगे चलकर भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयां दे गई। लखनऊ के बाद तलत महमूद की जिंदगी का अलग पड़ाव था कोलकाता। 40 के दशक में ये शहर कला और संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र था। यहां इनकी मुलाकात हुई मशहूर संगीतकार पंकज मलिक से। कोलकाता में ही इन्होंने अपना पहला गीत सब दिन एक समान नहीं आता, बन जाऊंगा क्या से क्या मैं, इसका तो कुछ ध्यान नहीं था, रिकॉर्ड किया। लेकिन असली सफलता मिली 1944 में जब HMV ने इनकी एक गजल रिलीज की, तस्वीर तेरी दिल में दिल मेरा बहला न सकेगी। इस एक गजल ने पूरे हिंदुस्तान में हलचल मचा दी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस जमाने में इस रिकॉर्ड की लाखों कॉपियां बिकी थी। इतना ही नहीं, कोलकाता में काम करते हुए इन्होंने कुछ बंगला गाने भी गाए। वहां के लोग इन्हें तपन कुमार के नाम से जानते थे। और तो और, इन्होंने 16 बंगला फिल्मों में कैमियो रोल भी किया। बंगला सिनेमा के बाद इनका अगला पड़ाव था बुम्बई। दोस्तों, इस सफर में आपको ले जाएंगे, पर उससे पहले सुनिए इनकी एक और फिल्म से एक खूबसूरत सा गीत।

अभी आपने सुना देख कबीरा रोया फिल्म से ये गीत, जिसे तलत महमूद साहब ने गाया था। श्रोताओं, कोलकाता ने तलत साहब को वो मंच दिया जहां से इनकी शोहरत की खुशबू बुम्बई तक पहुंचने लगी। बात करते हैं उस दौर की जब तलत महमूद ने माया नगरी बुम्बई का रुख किया। 1949 के आसपास ये बुम्बई आए। उसी समय भारतीय सिनेमा का गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा था। यहां इनकी मुलाकात दिग्गज संगीतकार अनिल विश्वास से हुई। अनिल दा ने इनकी आवाज को परखा और फिल्म आरजू में मौका दिया। गाना था ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहां कोई ना हो। इस गाने ने तलत साहब को रातों रात फिल्म इंडस्ट्री का सबसे चहेता सिंगर बना दिया। फिर संगीतकार नौशाद, श्री रामचंद्र और शंकर जयकिशन जैसे दिग्गजों ने इनके लिए धुने बनाना शुरू कर दिया। तलत साहब की आवाज की सबसे खास बात ये थी कि वो जब गाते थे तो ऐसा लगता था जैसे वो आपके कानों में आकर कोई राज की बात कह रहे हों। इन्होंने दिलीप कुमार, राज कपूर

और देवानंद जैसे सुपरस्टार के लिए अपनी आवाज दी। उस दौर में इन्होंने लता मंगेशकर, सुरैया, मोहम्मद रफी और मन्ना डे जैसे दिग्गजों के साथ गीत गाए। इतना ही नहीं दोस्तों, तलत महमूद सिर्फ एक बेहतरीन सिंगर ही नहीं बल्कि एक अभिनेता भी थे। क्यों चौंक गए ना आप, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे, पर अभी सुनिए इनकी आवाज में टैक्सी ड्राइवर फिल्म से ये बेहतरीन गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो कलाकार हैं वो हैं तलत साहब, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, म्यूजिक की दुनिया में तो तलत साहब छा ही चुके थे, लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व और खूबसूरत चेहरे ने फिल्म निर्माताओं को इनकी ओर खींचा। वो दिखने में किसी भी बड़े हीरो से कम नहीं थे। तलत साहब ने करीब 13 फिल्मों में एज एन एक्टर काम किया, जिनमें दिले नादान, वारिस, रफ्तार, डाक बाबू, एक गांव की कहानी और मालिक फिल्म प्रमुख थी। हालांकि तलत साहब स्वभाव से बहुत ही शर्मीले और सीधे साधे इंसान थे, एक्टिंग की चकाचौंध इन्हें बहुत ज्यादा रास नहीं आई, फिर ये सिर्फ गीत गाने लगे। तलत साहब ने सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि 12 भाषाओं में करीब 750 गाने गाए। इनकी गजलें आज भी क्लासिक मानी जाती हैं। इनकी पर्सनल लाइफ की बात करिए तो दोस्तों, 1951 में इन्होंने अपनी फैन लती

का मुल्लिक से शादी की, जिन्हें बाद में नसरीन कहा जाने लगा। फिर इनके दो बच्चे हुए खालिद और सबीना। तलत महबूब हमेशा लाइमलाइट से दूर रहते थे, पर अपनी मखमली आवाज की वजह से ये वेलवेट वॉइस ऑफ इंडिया कहलाए। इसी बात पर चलिए सुनते हैं इनकी फिल्म रूप की रानी चोरों के राजा से ये गीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं तलत साहब। और श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल से, और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं तलत साहब के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। फिल्मी गानों के अलावा तलत महमूद का असली जो इश्क था वो गजल ही था। इन्होंने गजल गायकी को महफिलों से निकालकर आम आदमी के ड्राइंग रूम तक पहुंचाया। ये पहले भारतीय सिंगर थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाइव कॉन्सर्ट किए। संगीत के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गजल की अदायगी में जो ठहराव और अल्फाजों का सही उच्चारण तलत साहब के पास था, जो बहुत कम गायकों में देखने को मिलता है। समय के साथ हर चीज बदलती है, और यही बदलाव तलत महमूद साहब के करियर में भी आया। 70 के दशक के बाद संगीत का अंदाज बदलने लगा, तेज और एनर्जेटिक गानों का दौर शुरू हुआ और तलत साहब की मुलायम आवाज को कम मौके मिलने लगे। लेकिन तलत साहब ने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि अपनी गरिमा और क्लास को बनाए रखा और स्टेज शोज और गजलों के माध्यम से अपने फैन से जुड़ाव बनाए रखा। अपनी मखमली आवाज की वजह से इन्हें 1992 में पद्म भूषण से नवाजा गया, जो इनकी कला के प्रति

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप जुड़े हुए हैं और आपके मेल हमारे पास आ चुके हैं, तो हम जल्दी जल्दी आपके मेल पढ़ लेते हैं। और ये है, लिखते हैं होस्ट राखी बैनर्जी, गुड आफ्टरनून। आज एक ही कलाकार में तलत महमूद जी के बारे में बेहतरीन जानकारी मिल रही है। शो का आगाज नाइस सॉन्ग से हुआ, इतना ना मुझसे तू प्यार को जता। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, चैतन्य मेघा और चंडीगढ़ से राहुल रचिता और केशु खुराना जी का। और आगे बढ़ते हैं और ये है बुलंदशहर से एमएस अब्बासी, कस्बा गन्नौर से फारूक अली खान, फैजी फरार, फरीन फरहान, फारिया ताहिरा। और ये है पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा टिल्लू नायक जी का। और ये भी लिखते हैं कि उन्हें प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है और इन्हें बहुत लंबा सा एक मेल लिखा है। और आगे चलते हैं, ये है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी से, इनका दोबारा आ गया है। और ये है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से ए पी एस नावाहरकर, निर्मला विशाल, मलकापुर से नारायण राजकुमार आशीष। और ये है फारूक अली खान, फैजी फराज। और आगे चलते हैं, ये है सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। और ये है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा और पूजा परिहार। और देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया और मास्टर अल कबीर हैं, ये बलौद छत्तीसगढ़ से हैं। और छत्तीसगढ़ जुड़ी लाइन मुंगेली से है मोहम्मद इस्तफाक खतीजा और मोहम्मद अशफाक आफरीन, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं तलत महमूद साहब की। मित्रों, कुछ आवाजें कभी नहीं मरती हैं और तलत महमूद जी की आवाज भी उन्हीं में से एक है। आज ही के दिन यानी 9 मई 1998 को 74 साल की उम्र में इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था, लेकिन इनकी यादें और इनके गाने आज भी हमारे साथ हैं। इनकी गायकी ने भारतीय संगीत को एक नई पहचान दी और ये साबित किया कि गाना सिर्फ सुरों का खेल नहीं है, बल्कि दिल से जुड़ी एक भावना है। आज भी जब इनके गाने प्ले होते हैं तो दिल में एक सुकून सा महसूस होता है। इसी सुकून को महसूस करते हुए आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं और आप सुनिए इनकी फिल्म से ये आखिरी गीत।

कुछ श्रोताओं का और मेल आ चुका है, हम उन्हें भी पढ़ लेते हैं। ये हैं ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान, जय हिंदपाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश और इनके परिवार के सभी सदस्य। और ये है पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी का। और

श्रोताओं, आशा है कि आपको ये संगीतमय सफर पसंद आया होगा। अगले शो में फिर मिलेंगे। फिलहाल अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए, लेकिन आप सुनते रहिए गीत और गुनगुनाते रहिए संगीत।

सामीन आदाब, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सपहर के 3 बजे हैं, हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है।

सामिन आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद, जिनमें 3:30 हम पेश करेंगे सुबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में राजस्थानी लोकगीत। 4:00 से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5:00 हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने तक मुख्तसर तारुफ हमारे यहां से नशर होने वाले इन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुआ चाहते हैं, कुछ ही लम्हों में खबरें नशर होंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप माजिद अली से खबरें सुनिए। शुभेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के बीजेपी के पहले वजीर आला बन गए हैं। उन्होंने 5 काबिनी उजरा के साथ हलफ लिया। चिली के वजीर खारजा फ्रांसिस्को परेज मैकेना का आज से भारत का दौरा शुरू हो रहा है। कानूनी खिदमात की कौमी अथॉरिटी तनाजात के बासानी हल के लिए पूरे मुल्क में लोक अदालत का इनेकाद कर रही है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने बाहमी ताउन को मजबूत करने की गरज से त्रिनिदाद और टोबेगो की वजीर आजम से मुलाकात की और भारत की खवातीन की फुटबॉल टीम ने 17 साल तक की उम्र की AFC खवातीन एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार पहुंचकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शुभेंदु अधिकारी को मगरबी बंगाल के बीजेपी के पहले वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया। उनके साथ 5 दूसरे काबिनी वजीरों ने भी हलफ लिया। इन वजीरों के नाम हैं दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किर्तानिया, निशित प्रमाणिक और शुदीराम टूडू। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, कई मरकजी वजीरों और बीजेपी की सरकार वाली रियासतों के वजराए आला ने हलफ बरदारी की तकरीब में शिरकत की। ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले वजीर आजम ने एक रोड शो भी किया। नागालैंड के वजीर आला निफियू रायो ने शुभेंदु अधिकारी को मगरबी बंगाल के वजीर आला के ओहदे का हलफ लेने पर मुबारकबाद दी है। जनाब रियो ने उनके और उनकी वजारती कौंसिल के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया है और कहा है कि वो कामयाबी के साथ अपने ओहदे की

मुद्दत पूरी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। दिन में लगभग 11 बजे वजीर आजम बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के 45 साल पूरे होने की तकरीब में शामिल होंगे और आर्ट ऑफ लिविंग बैन अल-अक़वामी मरकज में नए तामीर किए गए ध्यान मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम प्रोग्राम के दौरान वहां मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। इसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैदराबाद रवाना हो जाएंगे और तकरीबन 3 बजे हैदराबाद में कई तरक्याती प्रोजेक्टों की बुनियाद रखेंगे और उनका इफ्तिताह करेंगे, जिनकी मालियत 9,400 करोड़ रुपए बताई जाती है। सोमनाथ मंदिर की असर-ए-नौ तामीर के 75 साल पूरे होने के मौके पर सोमनाथ अमृत पर्व 2026 मनाया जा रहा है। इस 5 रोजा तकरीब के दौरान मंदिर की तारीखी अहमियत को उजागर किया जाएगा। इस तकरीब को यादगार बनाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर को सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। मवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया कल अपने पार्लियामानी हल्के गुना का दौरा करेंगे। वहां अडानी सीमेंट प्लांट का संग बुनियाद रखेंगे। उनके साथ मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉ मोहन यादव भी होंगे। दौरे के दौरान कई तरक्याती प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया जाएगा। ग्वालियर चंबल खित्ते में सीमेंट का यह पहला प्लांट होगा। अडानी ग्रुप ने गुना में लगभग 3,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का ऐलान किया था और इसमें से 1,100 करोड़ रुपए के करीब सीमेंट प्लांट लगाने पर सर्व किए जाएंगे। चिली के वजीर खारजा फ्रांसिस्को पेरेज माकेना आज से इस महीने की 15 तारीख तक भारत का दौरा करेंगे। जनाब माकेना कल नई दिल्ली में एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वो तिजारती तकरीबात में भी शिरकत करेंगे, जिनका एहतमाम पीर को भारत के खुराक के दरामदकारों के फोरम और एसोचैम ने किया है। मंगल को वो तिजारत के वजीर पीयूष गोयल से बातचीत करेंगे और ताजिरों की एक तकरीब में शिरकत करेंगे, जिसका एहतमाम CII ने किया है। वो CII की सालाना तिजारती समिट 2026 में भी शिरकत करेंगे। बुध के रोज वो वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर से बातचीत करेंगे और इसके बाद वो भारत चिली तिजारती वफद के साथ एक मुश्तरका मीटिंग भी करेंगे। कानूनी खिदमात की कौमी अथॉरिटी NLSA आज पूरे मुल्क में दूसरी कौमी लोक अदालत 2026 का इनेकाद कर रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए NLSA के मेंबर सेक्रेटरी संजीव पांडे ने बताया कि शमूलियत और अवाम पर मरकूज तरीकों के जरिए तनाजात के बआसानी निपटारे और अदालतों पर बोझ को कम करना इस इकदाम का मकसद है। उन्होंने बताया कि मुसालियत के काबिल मुजरिमाना मामलात, बैंकों के चेक वापस होने के मामलात और बैंक की रकम वसूल करने के तनाजात समेत इस लोक अदालत में बड़े पैमाने पर तनाजात निपटाए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि 2023 और 2025 के दरमियान 12 कौमी लोक अदालतों का इनेकाद किया गया, जिसमें 26 करोड़ मामलात का निपटारा किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज भारत और त्रिनिदाद और टोबेगो के दरमियान रिवायती रिश्तों की तारीफ की। अपने दौरे के दौरान डॉ जयशंकर ने खारजी मामलात और त्रिनिदाद और टोबेगो के कैरिकॉम मामलात की वजारत में परचम कुशाई के मौके पर खिताब किया। वजीर मौसूफ ने दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे सकाफती रवाबित और तारीखी रिश्तों का जिक्र किया। डॉ जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों मुल्कों के दरमियान कपड़ों, खेलों और रिवायतों में यकसानियत पाई जाती है। डॉ जयशंकर ने त्रिनिदाद और टोबेगो की वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसर से भी मुलाकात की और बाहमी तआवुन को मजीद मजबूत करने के इकदाम के बारे में तबादले ख्याल किया। भारत के उमूर खारजा के वजीर ममलिकत पवित्र मार्गरेटा ने कोस्टारिका के नए मुंतखबा सदर की हलफ बरदारी की तकरीब में शिरकत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर मौसूफ ने कहा कि उन्होंने सदर जमहूरिया, वजीर आजम और मुल्क के अवाम की तरफ से कोस्टारिका के सदर और सरकार को नेक ख्वाहिशात पहुंचाई। पाकिस्तान के इंसानी हकूक से मुतालिक कौंसिल ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे की मजम्मत की है और इसे अवाम पर बराह रास्त हमला करार दिया है। इससे पहले पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 14.92 रूपये का इजाफे का ऐलान किया था और इस तरह वहां पेट्रोल 415 पाकिस्तानी रूपये फी लीटर हो गया।

0: है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है और यह भी 415 रुपए फी लीटर हो गया है। आबनाए उर्मुज के करीब कल एक लकड़ी की छोटी कश्ती में आग लगने की वजह से एक भारतीय बाशिंदा और चार दीगर जख्मी हो गए। सरकारी जराये ने बताया कि करीब से गुजर रहे एक जहाज ने हमले के मेम्बरान को बचा लिया। जख्मियों का दुबई में इलाज चल रहा है और वो सही सलामत हैं। जराये ने मजीद बताया कि आग लगने की वजूहत का पता लगाया जा रहा है। भारतीय कौंसल खाने के अफसरान ने कल रात ही बचाए गए भारतीय बाशिंदों से मुलाकात की। मेक्सिको की सदर क्लोडिया शेनडोम ने इन दावों को गलत बताया है कि अमेरिका में मेक्सिको का कौंसल खाना मकामी सियासत में दखल दे रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मेक्सिको में अमरीकी कौंसल खाना और दूसरे मुल्कों में दीगर कौंसल खानों की तरह मेक्सिको का कौंसल खाना भी अपने शहरियों के तहफ्फुज के लिए काम कर रहा है। खबर मिली है कि अमरीका की जनूबी कमान ने मशरकी बहरुल काहिल में मुनशियात के धंधे में मुबैना तौर पर मुलविस एक कश्ती पर हमला करके उसे डुबो दिया। इस वाकये में दो अफराद मारे गए और एक जिंदा बच गया। एक मीडिया पोस्ट में अमरीकी जनूबी कमान ने यह भी बताया है कि इस किश्ती के जरिए मुनशियात का धंधा करने में दहशतगर्द तंजीमें मुलव्विस हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। फुटबॉल में भारत ने पहली बार 17 साल से कम उम्र के खवातीन के एएफसी एशियन कप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करके तारीख रकम की है। भारत ने कल चीन के शहर सुझोऊ में अपने ग्रुप बी के फाइनल में लबनान को 4-0 से हराया। भारत के लिए प्रातिका बर्मन ने 7वें और 85वें मिनट में, देवी सेंजाम ने 36वें और जोया ने 72वें मिनट में गोल किए। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के बीजेपी के पहले वजीर आला बन गए हैं। उन्होंने 5 काबिनी वजरा के साथ हलफ लिया। चिली के वजीर खारजा फ्रांसिस्को परेज मकेना का आज से भारत का दौरा शुरू हो रहा है। कानूनी खिदमात की कौमी अथॉरिटी तनाजात के बासानी हल के लिए पूरे मुल्क में लोक अदालत का इनेकाद कर रही है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने बाहमी तआवुन को मजबूत करने की गरज से त्रिनिदाद और टोबेगो की वजीर आजम से मुलाकात की। और भारत की खवातीन की फुटबॉल टीम ने 17 साल तक की उम्र की एएफसी खवातीन एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार पहुंचकर तारीख रकम की है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1031 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर अपने प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। सामईन, आज के मेरी पसंद प्रोग्राम के नगमे हमने लिए हैं तलत महमूद के गाए हुए। आज मारूफ गजल गुलकार तलत महमूद का यौम वफात है। तलत महमूद 24 फरवरी 1924 को लखनऊ में पैदा हुए। आप एक मजहबी घराने से थे। मौसीकी और गाना आपके यहां ममनू था, लेकिन तलत महमूद में हिम्मत नहीं आ रही और धीरे धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा, मौसीकी की तालीम हासिल की और फिर एक नुमाया नाम कमाया। आज के मेरी पसंद के नगमे हमने उन्हीं की आवाज में लिए हैं जो खिराज अकीदत हैं उर्दू सर्विस की जानिब से।

तलत महमूद ने बहुत छोटी उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था और 16 साल की उम्र में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ से गजलों का प्रोग्राम आगाज किया। उनकी आवाज की इंफरादियत थी, उनकी मखमली आवाज जिसने लोगों को उनका गिरविदा बना दिया।

सूबाई लोक गीतों के प्रोग्राम में सामने भी आप सुन रहे थे छोटी बानो, मंगी बाई, अफरोज बानो और नूर मोहम्मद लांगा के गाए राजस्थानी लोक गीत। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। फिल्मी नगमों के आज के प्रोग्राम में लीजिए पहले समाप्त फरमाइए लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम की आवाजों में दाग फिल्म का नगमा। नगमा निगार साहिल लुधियानी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

उदित नारायण और साथियों को आप सुन रहे थे नगमा निगार थे आनंद बख्शी मौसीकार जतिन ललित फिल्म थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और समझ लीजिए सुनिए एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में देव कोहली का लिखाई गई जिसे मौसीकी सजाए राम लक्ष्मण ने फिल्म है मैंने प्यार किया।

सुन रहे थे कुमार सानू और अनुराधा पोडवाल की आवाजों में दाग फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया था राजेश रोशन ने। और सामने लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में एस डी बर्मन की मौसीकी सजाया नगमा फिल्म है इश्क पर जोर नहीं।

समझने वालों समझ लो इसमें।

धर्मा फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और अर्शद भोसले की आवाजों में। मौसीकार थे सोनी कोमी। और शामिल लीजिए, सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश किशोर कुमार की आवाज में धर्मात्मा फिल्म का नगमा। नगमा निकार इंदिवर, मौसीकार कल्याण जी आनंद जी।

तेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

सिलसिला फिल्म कलाक आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की आवाजों में। नगमानी गाते जावेद अख्तर, मौसीकार शिव हरी। और आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश सूरज और चांद फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में।

शोला, ये रंग है के जादू, ये नैन है के झूले, ये जुल्फ है के बादल, ये नैन है के झूले, ये जुल्फ

0: पेंशन के फायदे हासिल किए जा सके। हुकूमत ने वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को बहरिया का अगला सरबराह मुकर्रर किया है। वजारत दिफा ने कहा है कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन इस वक्त मगरबी बहरिया की कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। एडमिरल की तकरीबन चार दहाइयों की शानदार खिदमात है। भारतीय बहरिया में मुख्तलिफ अहदों पर रहते हुए उनका ऑपरेशनल स्ट्रेटजिक और जवानों से मुतालिक बंदोबस्त का काफी तजर्बा है। हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS मुकर्रर किया है। वजारत दिफा का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि ओहदा संभालने की तारीख से अगले अहकाम तक फौजी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमात अंजाम देंगे। रविन्द्रनाथ ठाकुर के 165वें यौम पैदाइश पर आज पोचिशे बोईशाख के मौके पर रविन्द्र जयंती मनाई जा रही है। पूरी दुनिया में सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है और खास प्रोग्राम शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी समेत पूरे मगरबी बंगाल और बांग्लादेश में मुनद किए जा रहे हैं। इन प्रोग्रामों में रविन्द्र संगीत, शायरी, रक्स और ड्रामे का इनेकाद किया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने पोचिशे बोईशाख के मौके पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर को खराज अकीदत पेश किया। चिली के वजीर खारजा फ्रांसिस्को पेरेज माकेना आज से इस महीने की 15 तारीख तक भारत का दौरा करेंगे। जनाब माकेना कल नई दिल्ली में एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वो तजारती तकरीबात में भी शिरकत करेंगे जिनका एहतमाम पीर को भारत के खुराक के दरामदकारों के फोरम और एसोचैम ने किया है। मंगल को वो तिजारत के वजीर पीयूष गोयल से बातचीत करेंगे और ताजिरों की एक तकरीब में शिरकत करेंगे जिसका एहतमाम CII ने किया है। वो CII की सालाना तिजारती समिट 2026 में भी शिरकत करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कानूनी खिदमात की कौमी अथॉरिटी नालसा आज पूरे मुल्क में दूसरी कौमी लोक अदालत 2026 का इनेकाद कर रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए NALSA के मेंबर सेक्रेटरी संजीव पांडे ने बताया कि शमूलियत और अवाम पर मरकूज तरीकों के जरिए तनाजात के बआसानी निपटारे और अदालतों पर बोझ को कम करना इस इकदाम का मकसद है। उन्होंने बताया कि मुसालियत के काबिल मुजरिमाना मामलात, बैंकों के चेक वापस होने के मामलात और बैंक की रकम वसूल करने के तनाजात समेत इस लोक अदालत में बड़े पैमाने पर तनाजात निपटाए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि 2023 और 25 के दरमियान 12 कौमी लोक अदालतों का इनेकाद किया गया जिसमें 26 करोड़ मामलात का निपटारा किया गया है। शुमाली श्रीलंका में कनकेस थुराई और भारत में नागापट्टिनम के दरमियान चलने वाली एक मुसाफिर कश्ती को जुमे की रात को समंदर में कई घंटों तक रुकना पड़ा क्योंकि उसके इंजन में खराबी आ गई थी। इस कश्ती में 144 मुसाफिर सवार थे और नागापट्टिनम के साहिल से तकरीबन दो बहरी मील दूर कालार के पास इसके इंजन में खराबी आ गई। खबर मिली है कि अमेरिका की जनूबी कमान ने मशरकी बहरुल काहिल में मुनशियात के धंधे में मुबैना तौर पर मुलविस एक कश्ती पर हमला करके उसे डुबो दिया। इस वाकये में 2 अफराद मारे गए और एक जिंदा बच गया। एक मीडिया पोस्ट में अमेरिकी जनूबी कमान ने यह भी बताया है कि इस कश्ती के जरिए मुनशियात का धंधा करने में दहशतगर्द तंजीमें मुलविस हैं। खबरों में यह भी कहा गया है कि कार्रवाई के दौरान अमरीका के फौजी हमले को भी नुकसान पहुंचा है। आबनाए उर्मुज के करीब कल एक लकड़ी की छोटी कश्ती में आग लगने की वजह से एक भारतीय बाशिंदा हलाक और 4 दीगर जख्मी हो गए। सरकारी जराये ने बताया है कि करीब से गुजर रहे एक जहाज ने हमले के मेम्बरान को बचा लिया। जख्मियों का दुबई में इलाज चल रहा है और वो सही सलामत हैं। जराये ने मजीद बताया कि आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। भारतीय कौंसल खाने के अफसरान ने कल रात ही बचाए गए भारतीय बाशिंदों से मुलाकात की। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज भारत और त्रिनिदाद और टोबेगो के दरमियान रिवायती रिश्तों की तारीफ की। अपने दौरे के दौरान डॉ जयशंकर ने खारजी मामलात और त्रिनिदाद और टोबेगो के कैरिगोम मामलात की वजारत में परचम कुशाई के मौके पर खिताब किया। वजीर मौसूफ ने दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे सकाफती रवाबित और तारीखी रिश्तों का जिक्र किया। डॉ जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों मुल्कों के दरमियान कपड़ों, खेलों और रिवायतों में यकसानियत पाई जाती है। डॉक्टर जयशंकर ने त्रिनिदाद और टोबेगो की वजीर आजम कमला प्रसाद विशेसर से भी मुलाकात की और बाहमी तआवुन को मजीद मजबूत करने के इकदाम के बारे में तबादला ख्याल किया। फुटबॉल में भारत ने पहली बार 17 साल से कम उम्र के खवातीन के एएफसी एशियन कप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करके तारीख रकम की है। भारत ने कल चीन के शहर सुझोउ में अपने ग्रुप बी के फाइनल में लबनान को 4-0 से हराया। भारत के लिए प्रातिका बर्मन ने 7वें और 85वें मिनट में और देवी संजम ने 36वें और जोया ने 72वें मिनट में गोल किए। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने पर भारत 2026 के फीफा अंडर 17 खवातीन आलमी कप में अपनी जगह बना लेगा। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के बीजेपी के पहले वजीर आला बन गए हैं। उन्होंने 5 काबिनी गुजरा के साथ हलफ लिया। चिली के वजीर खारजा फ्रांसिस्को परेज मकेना का आज से भारत का दौरा शुरू हो रहा है। कानूनी खिदमात की कौमी अथॉरिटी तनाजात के बासानी हल के लिए पूरे मुल्क में लोक अदालत का इनेकाद कर रही है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने बाहमी तआवुन को मजबूत करने की गरज से त्रिनिदाद और टोबेगो की वजीर आजम से मुलाकात की। और भारत की खवातीन की फुटबॉल टीम ने 17 साल तक की उम्र की एएफसी खवातीन एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार पहुंचकर तारीख रकम की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 71 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं या हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होती हैं। शाम में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार। एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा ए अमृतसर केंद्र ए। तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिन दी पंजाबी सेवा। शाम दे 5 बजे ने हुन साडी दूजी सभा शुरू हुंदी ए। सभा दी शुरुआत जाओ सब तो पहला सुनते हां सराय की प्रोग्राम चौक माहिती।

सूफियाना कलाम तुहा को पसंद आया ना। आबिदा परवीन दा नाम तुसा सुना होसी, उंदे गाए कलाम भी सुने होसी। आबिदा परवीन पाकिस्तान दे सूफी गावन आले हिन, गावन आले ही नहीं ए सूफी संगीत दे बनावन वाले मुखी भी हिन। इन्हा को आज दे समय दा बखूबी सूफियाना कलाम गावन आला मन्या वेंदा है। उंज ता बहु सारा सूफी गावन आले ते गावन आलिया ने अपने सूफी गावन कीते खास पहचान हासिल कीती है। सूफियाना कलाम मुख रूप विच फारसी विच लिखे वेंदे हिन, पर पंजाबी, सिंधी ते अरबी कविता विच सूफियाना कलाम दा लिखा जाना आम है। पंजाबी, मुल्तानी, बहावलपुरी ते सराइकी विच लिखे सूफियाना कलाम दा जवाब नहीं। बुल्ले शाह दे एक कलाम दे कुछ बोल तुहा को सुनवेंदी हां। पढ़ पढ़ आलम फाजिल होया, कदे अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़दा, जेड़ा घर बैठा ओनू फड़िया ही नहीं। किनी डूंघाई इना लफसा विच। ते गाल असा शुरू कीती हई आबिदा परवीन तू, तो उन्हां दी आवाज विच सुनेंदे हां ए कलाम।

मंजूर ढल्ला बहुत फुकराह शायर था, उसने मिसालें दे दे के सस्सी से पूछा कि इश्क वालों को तो नींद नहीं आती, तुझे कैसे आ गई।

सारे वाकिफ हो किन्ना हा को कढ घिनन वाला उना दा ए शेर है, रगा विच दौड़ दे फिर दे असी नहीं कायल, जदन अख तू ही ना टपकिया ता वाला लहू की है। भाई वाह, एक होर शायर दा शेर है, तलब मौत दे क्यों करना गुनाहे कबीरा है, मरने दा शौक है ता इश्क क्यों नहीं करें दे। संत फकीर प्रेम को बहु ऊपर दा दर्जा दिंदे हिन, इन्हां दे बोल प्यार दे सारे भाव को अपने विच समो लेंदा है। हर सूफी कवि दे कलाम विच हिक गल आम है, वो आधे हिन कि रब दी इच्छा भी यही है कि इंसान इंसान को प्यार करे। सारा इको रब दे प्राणी हिन, प्रेम दे जरिए ही इंसान इंसान दे करीब आवदा है। ते प्रोग्राम दे आखिर विच सुनेंदे हां नुसरत फतेह अली खां को।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, 100.9 मेगाहर्ट्स से DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। शाम दे 6:30 बज रहे ने। हुन पेश है देहाती प्रोग्राम।

0: हां जी रोलिया राम जी
1: सिंगारा सिंह जी बच्चे आलो आज ना तुहानू एक नाटक सुनाउणा नाटक दा नाम है मौत अली बाबे दी।
0: अच्छा जी
1: सुनो फिर
0: सुनाओ जी फिर
2: ले मेरी भैन चाह पी ले तू सवेर दा कुछ नहीं खाता
3: नीला जो भैने मेरा तो पानी दा घुट लगाउण नू दिल नहीं करदा की करा हाय मैं सुरदे साई मैं ततड़ी ओदी तिता नाली क्यों नहीं सड़ गई हाय मैं किवे लगाऊंगी जिंदगी
2: नी नकम्मी मरिया नाल मर के गुजारा नहीं हुंदा कल दी रो रही है कुछ हासिल होया हिम्मत कर हिम्मत
3: निकले करा हिम्मत मुक गया मेरा सारा हौसला
2: अपने बच्चियां वाल वेख कौन है एना दा हुन तेनू प्यो भी बनना पैना जे तू ही ढेरी टा दिती तेना दा कौन आसरा बनू जीना पैना ही तेनू अपने घर लई अपने बच्चियां लई ते अपने लई नाले तू कोई वखरा नहीं करन लगी सदियां तो ऐसे तरह हुंदा आया
3: मैंने कुछ नहीं सुझदा पया मैं की करा ऐदा लगदा जिवें मेरी सारी जिंदगी अंधेरा छा गया किस पासे तो कोई रोशनी दी किरण नजर नहीं आंदी
2: हर हनेरा दिन निकलन ते खत्म हो जांदा हिम्मत कर तेरे हनेरे दा भी एक दिन अंत होवेगा बस रब ते भरोसा रख चुप कर जा आ वेख नी प्रेमा आ वेख अखबार वालिया ने की कुफर को लिया लिखे है महकमे विच राम लाल ते रिश्वत दा केस चलता सी राम लाल ने 40,000 रुपए रिश्वत मंगी ते रंगी हत्थी फड़िया गया नौकरी तो बर्खास्तगी दी नमोशी तो डरदिया आत्महत्या कर गया
4: नीरा झूठ है जे राम लाल रिश्वत खांदा हुंदा तो मेरे घर भंग क्यों पुजदी जे ओ रिश्वत खांदा हुंदा तो सरकारी स्कूलां विच पढ़दे मेरे बच्चे फीसां लई तरसदे क्यों साडे बच्चे यतीमां वांगू क्यों पलदे महकमे वालियो तुहाडा किते भला नहीं होना
2: महकमे वालियां दा भला कित्थों होना जिन्नू एहो जे साऊ बंदे ते तोहमत लगाउण लग्या शर्म भी ना आई।
5: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष अग्निमित्रा पॉल अशोक कीर्तनिया खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले एक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
6: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे, इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
5: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इस जयंती के अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलक वेत्री कड़गम टीवीके ने दावा किया है कि उनकी पार्टी को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए 120 विधायकों का समर्थन हासिल हो गया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी टीवीके को नई सरकार बनाने के लिए तमिलनाडु विधानसभा के 234 सदस्यों में से बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा जबकि पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेल अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन भी शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी

0: सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड रीएंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात पांचवें स्थान पर है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मन पसंद कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। नीलम बहन, हमारे जो पशुपालक भाई हैं, किसान भाई हैं, ये बखूबी जानते हैं कि जो हमारे पशु होते हैं, खासकर दुधारू पशु, वो कितना सहयोग हमारे किसान परिवारों को, पशुपालक परिवारों को करते हैं, और साथ ही साथ पशुपालन और खेती का जो संतुलन है वो हमारे किसान भाइयों के परिवार में भी संतुलन बनाए रखता है। क्योंकि जब कभी कुछ खेती में घाटा हो जाए तो कहीं ना कहीं जो भरपाई होती है वो पशुओं से पूरा हो जाती है। और हम देख रहे हैं कि अब गर्मी बढ़ती चली जा रही है, तो जिस तरह से हम इंसानों को गर्मी लगती है हम अपना बचाव करते हैं और पशु तो अपनी बात कह भी नहीं पाते हैं, तो ये तो हमारे पशुपालक भाइयों को और किसान भाइयों को ही समझना पड़ेगा कि जो गर्मी है, हीट स्ट्रोक है, उससे अपने पशुओं को कैसे बचाएं, क्या इसके लक्षण है, कैसे पहचाने, जिनको जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि आज के समय में पशु बहुत कीमती है, ऐसे में अगर पशु को गर्मी लग जाती है तो अचानक से जो दूध का उत्पादन है वो तो कम होता ही है, साथ ही साथ उसको ठीक करने में भी काफी पैसा खर्च हो जाता है। तो हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को ऐसे मौसम में पशुओं का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
1: बिल्कुल शशि भाई, दुधारू पशु हमारे किसान भाइयों की आय को दोगुना करने और रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ पशु देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना रहे हैं। लेकिन कई बार पशुओं में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, गर्मी लग जाती है, जिसके कारण पशुपालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। गर्मी का प्रकोप बढ़ते ही पशुपालकों के सामने दुधारू पशुओं की सुरक्षा बड़ी चुनौती बन जाती है। लू और बढ़ते तापमान से पशुओं को बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतना जरूरी है।
0: बिल्कुल नीलम बहन, तो इसी क्रम में अपने किसान बहन भाइयों को एक बातचीत सुनवाते हैं, जिसका विषय है पशुओं में हीट स्ट्रोक के लक्षण और प्राथमिक उपचार। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अनूप कालरा और इनसे बात कर रहे हैं शिव नंदन लाल। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: किसान भाइयों नमस्कार, हम अपने कार्यक्रम में समय पर निश्चित तौर पर कृषि वैज्ञानिकों को बुलाते हैं, और उसके साथ साथ क्योंकि जो भी हमारे किसान भाई हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो पशुपालन भी करते हैं। और जो पशु पालते हैं, जब मौसम बदलता है तो इस बदलते हुए मौसम का प्रभाव जिस तरीके से आम आदमी पर पड़ता है, उस तरीके से हमारे पशुओं पर भी पड़ता है। और जब धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाती है और गर्मी चरम सीमा पे हो जाती है, तो उससे देखते हैं कि पशु कभी अस्वस्थ हो जाते हैं, कभी उनमें बेचैनी दिखाई देती है, जिसका प्रभाव हमारे जो पशुपालन से होने वाला उत्पादन पर पड़ता है। और जहां किसी किसान का पशु बीमार होता है तो निश्चित तौर पे हमारे पशुपालक को भी चिंता हो जाती है। गर्मियों में किस तरीके से इस तनाव से अपने पशुओं को बचाया जाए, उसके क्या कारण हैं, लक्षण क्या हैं, और उसका बचाव कैसे किया जाए और उपचार के बारे में जानेंगे। आज हमारे साथ हैं पशुपालन विशेषज्ञ

0: डॉक्टर अनूप कालरा जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार शिवनंदन जी।
0: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि जब मौसम बदलता है तो इसका प्रभाव हमारे पशुओं पर भी पड़ता है। तो आम आदमी तो समझ लेता है कि तापमान बढ़ गया, ये हो गया, लेकिन पशुओं का कैसे समझा जाए?
1: देखिए, इसे आपको और हमें तनाव होगा तो हम पंखे के नीचे आ जाएंगे
0: जी,
1: कूलर में चले जाएंगे, एसी में बैठ जाएंगे, लेकिन पशु क्या करे। जैसे आपको और हमें तनाव होता है गर्मी से, ऐसे ही पशुओं को भी होता है, लेकिन सिर्फ ये है कि हमारे पशु बोल नहीं पाते हैं। तो कुछ चीजें जो मुझे लगता है जो हमें अपने किसान भाइयों को ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि जैसे ही पशु को बाहर बांधते हैं तो वो सुबह के समय ही उसको बाहर बांधे, जब थोड़ा मौसम ठंडा है, 7-8 बजे तक, 9 बजे तक, जैसे जैसे गर्मी बढ़े तो उसको वो शेड के नीचे ले आए। अब कहीं कहीं पे जो है पुआल की वो बनी होती है तो वहां छाया ले लें, कहीं अगर नहीं जगह है तो कोई घना पेड़ है उसके नीचे पशु को खड़ा कर दें, जिससे कि गर्मी का सीधा जो प्रकोप है वो हमारे पशुओं पे ना पड़े। तो पहली चीज तो ये है
0: जी।
1: दूसरा, पशुओं को पानी भरपूर दिया जाए। ऐसे तो हमारे किसान भाई बहुत जागरूक हैं, लेकिन कई बार क्या होता है पशु को पानी चाहिए, वो गए, वो वहां से पानी निकाला, अब वो पानी है गर्म क्योंकि धूप से गर्म हो गया है वो। तो ऐसा पानी दें जो ठंडा हो, कम से कम रूम टेम्परेचर का पानी हो, जिससे कि जब पशु उस पानी को ग्रहण करे तो उसको ठंडक महसूस हो। तो एक तो भरपूर पानी दिया जाए और गर्म पानी ना दिया जाए। तीसरी चीज, आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारी जड़ी बूटियां वर्णित है जिनके सेवन से पशुओं में तनाव को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है, और ये हमारे पशुपालक भाई इसको भली भांति जानते होंगे क्योंकि आप और हम भी अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आंवले का इस्तेमाल करना, आम का इस्तेमाल करना, तुलसी का इस्तेमाल करना, अश्वगंधा का इस्तेमाल करना। तो अगर ऐसे पशुपालक भाई जो हैं, पशु विशेषज्ञ हैं, जहां पे भी वो हैं, उनसे ऐसे संपर्क कर ले कि ऐसे अगर कोई बाजार में ऐसी कोई दवा मिलती है तो उसका सेवन रोज 50 ml से 100 ml जरूर करवाएं। इससे क्या होगा कि जो गर्मी का प्रकोप है जो पशुओं के ऊपर हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। चौथी चीज, इस समय में क्या होता है कि पशुओं की खाने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे घट जाती है
0: जी।
1: तो घटने की वजह से क्या होता है कि उसकी पाचन क्षमता में फर्क पड़ जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी कम हो जाती है। तो इसलिए इसको समय समय के ऊपर डॉक्टर की सलाह के साथ में कुछ वाइटामिन, जैसे वाइटामिन ए, वाइटामिन ई, वाइटामिन सी और कुछ जड़ी बूटियों का जैसे सेवन है, तो ये देने से एक तो क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहती है और गर्मी सहन करने की जो क्षमता होती है वो भी बनी रहती है। तो ऐसे कुछ मुझे लगता है कि चीजों पे अगर हमारे पशुपालक भाई ध्यान देंगे तो निश्चित ही अपने पशुओं को गर्मी के प्रकोप से बचा सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने तो शुरू से और आखिरी तक विस्तार से बताया, लेकिन हमें गर्मी हुई तो उसका एहसास होने लगता है, और एहसास तो पशुओं को भी होता है, लेकिन जो उसका मालिक है, पशुपालक है, तो वो कैसे समझे?
1: देखिए, एक तो क्या होगा इसमें, जब भी स्ट्रेस होगा या गर्मी होगी तो पानी की पीने की क्षमता बढ़ेगी, उसको प्यास ज्यादा लगेगी, लार कई बार गिरना शुरू हो जाएगी साइड से
0: जी।
1: क्योंकि उससे क्या होता है कि उसको ठंडक मिलती है जब वो सूखता है। दूसरा, खाना कम करना शुरू कर देगा वो, दूध देने की क्षमता है वो घट जाएगी। मान लीजिए कि जानवर 10 लीटर दूध दे रहा है तो हो सकता है कि वो 8 लीटर के ऊपर आ जाए, आप सोचोगे पता नहीं क्या है। तो ऐसे कुछ लक्षण हैं जिनको मुझे लगता है कि अगर ध्यान में रखा जाए तो पहचाना जा सकता है कि पशुओं पे गर्मी का तनाव हो रहा है। और इस वर्ष तो मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि भारत के ऊपर एल नीनो का इफेक्ट होने वाला है, जिससे कि जो पैसिफिक महासागर है उसके ऊपर जो असर पड़ने वाला है उससे भारतवर्ष में गर्मी का बहुत ज्यादा प्रकोप होने वाला है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि भी हम अपने पशुओं को समय समय पे जानकारी देते रहें और पशुओं को गर्मी के प्रकोप से बचाएं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम लोगों का उद्देश्य ये है कि जो पशुपालक है उसको रोज आमदनी मिले दूध से। अगर उसको हम गर्मी के प्रकोप से नहीं बचा सकते हैं तो उसके दूध में कटौती आएगी, दूध में कटौती आएगी तो समझिए कि उसकी आमदनी में भी कटौती हो गई।
0: पशु का स्वास्थ्य गिरेगा तो निश्चित तौर पे उसके प्रोडक्शन में कमी आएगी और प्रोडक्शन में कमी आएगी तो किसान की आमदनी
1: भी कम हो जाएगी। तो गर्मी का प्रकोप सीधा जो है उसकी आमदनी से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित ही अगर इन बातों पे ध्यान दिया जाता है तो मुझे लगता है कि हमारे पशुपालक जो है इस समस्या से निपटने के लिए सजग रहेंगे।
0: तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने पानी का जिक्र किया, तो पानी पिलाने के लिए बहुत से हमारे किसान भाई, उनके पास

0: चांदी होती है उसमें भर देते हैं, तो उसकी भी साफ सफाई, क्यों गर्मी में पानी गर्म हो जाता है।
1: एक तो आपने सही कहा, एक तो पानी गर्म तो नहीं पिलाना चाहिए उसको, ऊपर से धूप का प्रकोप है, बोला चलो पशु को यहाँ बांध दो, एक तो वो है। दूसरा ये कि साफ सफाई का गर्मियों में विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कई बार बैक्टीरिया या ऐसे इस तरह की जो है कई सारी बीमारियां होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो स्वच्छ पानी दें और ठंडा पानी दें, इसका विशेष ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी।
0: दरअसल क्योंकि गर्मियों में जिस तरीके से जब ज्यादा गर्मी लगती है हम कोशिश करते हैं कि स्नान कर ले, तो क्या पशुओं को भी नहलाना उचित रहे?
1: अगर पानी की कमी ना हो पशुपालक के पास में, तो निश्चित ही उसको सुबह और शाम अगर नहलाएं, भैंसों को खास तौर पे, क्योंकि उनके अंदर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होती, जैसे हम लोगों को पसीना आता है भैंसों में वैसा पसीना नहीं आता है, तो इसलिए उनको तो तालाब में छोड़ दिया जाता है, जितने समय तालाब में रहेंगी उतना अच्छा है, एक तो वो है। लेकिन अगर गाय तो जाती नहीं है तालाब में, तो उसको सुबह और शाम जो है उसके ऊपर 5 से 10 मिनट पानी का छिड़काव किया जाए, लेकिन ठंडे समय में, मतलब सुबह के समय कर दिया और शाम के समय कर दिया। दोपहर के समय जब बहुत गर्मी का प्रकोप है तब उसको अंदर जो है कोई ऐसी जगह रखें जो छायादार हो, पेड़ के नीचे हो, जिससे उसको गर्मी का असर कम से कम हो। जैसे बोरी होती है, अनाज की बोरी आती है, तो अनाज की बोरी को आपने गीला कर दिया और गीला करके पशु है उसके ऊपर रख दिया, या जहां आपने छाया में रखा है वहां पे बांध दिया, तो उससे क्या होगा कि जब गर्म हवा भी चलेगी तो पशुओं को उसका प्रकोप नहीं लगेगा, अंदर ठंडी हवा उसको मिलती रहेगी।
0: दरअसल बहुत से जागरूक किसान ऐसे हैं जहाँ पे उनके दुधारू पशु बंधे होते हैं वहाँ पे कूलर भी लगाते हैं।
1: ऐसी पंजाब में हम पीछे गए थे शिवनंदन जी, एक बड़ा ये होता है PDFA करके एक संस्थान है वहाँ पे, प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन, वहाँ पे मतलब हमने ऐसी गाय देखी जो प्रतिदिन 70 से 80 लीटर दूध देती है, वो AC में रहती है। आप सोचिए कि 80 लीटर दूध की कीमत कितनी होगी, अगर 40 रुपए के हिसाब से भी आप कैलकुलेट करो तो कितनी हो गई। लेकिन ये चीज आपने बहुत अच्छी कही, हमारे जो भारतवर्ष की जो गाय है जैसे साहिवाल हो गई, थारपारकर हो गई, हरियाणा हो गई, इनको गर्मी कम लगती है और गर्मी का प्रकोप भी इनके ऊपर कम होता है,
0: अगर सहन शक्ति ज्यादा होती है।
1: बिल्कुल, आप दूसरी जर्सी ले लेंगे या होल्स्टीन ले लेंगे तो इनके ऊपर गर्मी का प्रकोप ज्यादा होता है और बीमार भी ज्यादा होती है। तो ब्रीड का सिलेक्शन जो है वो भी बहुत मायने रखता है,
0: मतलब जितना ज्यादा उत्पादन उनसे मिलता है उतनी सेंसिटिव होती हैं,
1: इतनी सेंसिटिव होती है, इसीलिए उनको AC में रखा जाता है, क्योंकि गर्मी अगर हो गई तो एकदम से बीमार हो जाती है वो, और कोई भी बीमारी पकड़ सकती है, दूध देने की क्षमता एकदम से कम हो जाती है। मतलब ये तो ये है कि पशुपालक अगर थोड़ी दूर की सोचें तब, लेकिन अगर हम सोचें कि आज, तो आज के आज तो हमारे पशुपालक भाई अपनी गाय नहीं बदल लेंगे, लेकिन ये है कि उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है कि कौन से ब्रीड का पशु आपने रखा है। जैसे भैंस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता,
0: लेकिन जैसे आपने डॉक्टर साहब जिक्र किया कि भैंस को जो हड़िया तालाबों में भी छोड़ देते हैं उसको ठंडाने के लिए, और कभी कभी क्या है कि आपने पशु को पानी नहीं पिलाया है, नहीं दिया, और आपने जोहड़ में छोड़ दिया और उसको प्यास लगी, वो वहां का गंदा पानी पी ले।
1: देखिए, मैंने जो देखा है, पशु अपने खाने का चारा और पीने का पानी वो अपने तरह से कोशिश करता है कि मैं स्वच्छ से स्वच्छ पानी पीऊं और अच्छा से अच्छा चारा खाऊं, लेकिन कई बार ऐसी समस्या आ जाती है कि प्यास लगी है और आपने वो वाला पानी पी लिया जो स्वच्छ नहीं है, तो उसमें पेट में कीड़ों की समस्या हो सकती है
0: जी,
1: क्योंकि वो घास के साथ भी जा सकते हैं, उस पानी के साथ भी जा सकते हैं
0: जी।
1: अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं, डायरिया भी हो सकता है, क्योंकि समर डायरिया जो है वो भी एक बहुत कॉमन है, मतलब कि पेट खराब हो जाता है और लूज मोशन होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका भी यही एक कारण है। तो इसलिए निश्चित ही हमारे पशुपालक भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि स्वच्छ पानी दें, समय समय के ऊपर दें, इवन जो उसको आप संतुलित आहार दे रहे हैं
0: जी जी।
1: वो भी ऐसा हो जिसमें हरे चारे की मात्रा अच्छी हो, क्योंकि गर्मियों में हरा चारा कम मिलता है
0: जी।
1: लेकिन हरा चारा यथासंभव जहां जहां हो उसको हरा चारा दें, और जो संतुलित आहार दें भी वो थोड़ा डेंस हो, क्योंकि पशु क्या है कि खाना कम खा रहा है
0: जी।
1: तो अगर वो खाना कम भी खा रहा है तब भी जितनी उसकी क्षमता है उतना उसको दाना मिल जाए।
0: डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि पशुओं को पेट की भी समस्या हो जाती है, तो इस समय क्या पशुओं को जैसे नमक है, कोई चूर्ण है, अपने विटामिन का जिक्र
1: जी, किया। जी।
0: अगर हल्का सा आप उसको कोई नमक या मिनरल मिक्सचर देते हैं तो वो पानी ज्यादा पिएगा, क्योंकि पानी की जरूरत है, उसको किया जा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये बिल्कुल सही कहना है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग बाहर से आते हैं गर्मी से, तो हम क्या

0: करते हैं, नींबू पानी पीते हैं, उसमें नमक डाल लेते हैं, क्योंकि नमक डालने से तो सोडियम क्लोराइड मिल गया और नींबू डालने से जो है विटामिन सी मिल गया। तो ऐसा ही पशुओं के लिए भी इलेक्ट्रोलाइट्स बाजार में उपलब्ध है, तो वो डॉक्टर की सलाह से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, अन्यथा नमक तो निश्चित देना ही चाहिए। मतलब अगर आप नमक देंगे तो फायदेमंद है। और इलेक्ट्रोलाइट्स भी पशुओं के लिए मिलते हैं, डीकैट के नाम से कई सारे और आते हैं, तो आपको पशु चिकित्सक सलाह देंगे और वो इस्तेमाल करने से निश्चित ही फायदा होगा।
1: तो डॉक्टर साहब, जो हमारे पशुपालक हैं उनके पशु स्वस्थ रहें, किसी तरीके के उनके पशुओं पर गर्मी का ज्यादा प्रभाव न पड़े, उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: मैं तो सिर्फ तीन मुख्य बातें कहना चाहूंगा कि गर्मी का प्रकोप जैसे ही आपको लगे आप सजग हो जाएं और पशु प्रबंधन ऐसा करें कि उसको स्वच्छ पानी मिले, अच्छा आहार मिले और छायादार जगह में पशुओं को आप रखें। और जैसा ही आपको लगता है कि भाई गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है तो कुछ ऐसे चीजें इस्तेमाल करने से, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ आयुर्वेदिक उपचार हैं वो किए जा सकते हैं, विटामिन्स मिनरल मिक्सचर्स दिए जा सकते हैं, जिससे कि गर्मी का जो प्रकोप पशुओं पे हो रहा है उसका असर कम हो। कैल्शियम भी साथ में दिया जा सकता है। और इन सारी चीजों का अगर हमारे पशुपालक भाई ध्यान रखते हैं तो अपने पशुओं को गर्मी के प्रकोप से वो निश्चित बचा सकते हैं।
1: अब अगर कोई दिक्कत आती है तो पास के पशु चिकित्सक को अवश्य दिखाएं।
0: वेट ना करें कि भाई चलो कल सुबह तक रुक जाते हैं, क्योंकि गर्मी का प्रकोप ऐसा होता है कई बार ज्यादा होने से पशु रात रात में गिर के खत्म भी हो सकता है।
1: तो निश्चित तौर पे डॉक्टर अनूप कालरा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हमारे जो पशुपालक हैं अपने पशुओं का ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनका जो पशु है निश्चित तौर पे वही उनकी आमदनी का साधन भी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे ये बातचीत पशुओं में हीट स्ट्रोक के लक्षण और प्राथमिक उपचार। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अनूप कालरा और इनसे बात कर रहे थे शिव नंदन लाल।
3: और अब नीलम बहन अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं राजेंद्र जाटव और किस्सा रहेगा सरवर नीर का।

0: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे, ये रागिनी कलाकार थे राजेंद्र जाटव।
1: नीलम बहन, भारत सरकार देश के किसान भाइयों और गरीब नागरिकों को सहायता पहुंचाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक योजना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि गौवंशीय पशुओं में नस्ल सुधार, संरक्षण और दूध की उत्पादकता में वैज्ञानिक रूप से वृद्धि करने के लिए काम किया जाए।
0: बिल्कुल सचिव भाई, पशुपालन के अंदर गाय हम सबका आधार रही है। गाय का महत्व देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक है। गाय का सामाजिक, पारंपरिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्व माना गया है। हमारे भारत में गाय की जो प्रजाति पाई जाती है उसे बास इंडिकस के नाम से जाना जाता है, जिसे हम साधारण भाषा में देसी गाय कहते हैं। ऐसे में स्वदेशी गायों के संरक्षण और विकास के लिए कई प्रयोगशाला बनाई गई हैं और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके किसानों को देसी गायों के पालन और इनके उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए काफी मदद की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत भारतीय देसी गाय की नस्ल जैसे गिर, साहिवाल, राठी, देवनी, थारपाकर, रेड सिंधी आदि गायों का विकास किया जाएगा और कृत्रिम गर्भाधान के जरिए इनकी नस्ल को अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा।
1: तो किसान बहन भाइयों, अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी पशुपालन और डेयरी विभाग में जाके संपर्क कर सकते हैं और इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो नीलम बहन, ये तो जानकारी रही राष्ट्रीय गोकुल मिशन की, और अब समय हो चला है कि अपने किसान बहन भाइयों से अनुमति ली जाए। लेकिन अनुमति लेने से पहले अपने किसान बहन भाइयों को बताते चलें कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम के बारे में।
0: कल ग्राम संसार कार्यक्रम में बहन भाई सुनेंगे पत्रों के उत्तर और लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम। इसके साथ ही बहन भाई चर्चा सुनेंगे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में, और बहन भाइयों आपको प्रधानमंत्री प्रणाम योजना की भी जानकारी दी जाएगी।
1: और कल के कृषि जगत कार्यक्रम में किसान बहन भाइयों के पत्रों के उत्तर और उनकी पसंद के लोक गीत सुनवाए जाएंगे। इसके अलावा कृषि विपणन अवसंरचना योजना की जानकारी दी जाएगी। तो किसान बहन भाइयों, ये तो जानकारी रही कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम की। लेकिन आज का ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी किसान बहन भाइयों को राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स। शाम के 7:30 हुए हैं और ये समय होता है गजल और कव्वालियों का। लेकिन आज हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में गजल, और गजल में सबसे पहले हम ले रहे हैं चंदन दास की ये खूबसूरत गजल।

बहुत ही खूबसूरत गजल अभी आपने सुनी चंदनदास की आवाज में, और अब सुनते हैं अगली गजल जिसे आवाज से सजाया है जगजीत सिंह ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली और गुरुग्राम में छापेमारी कर पंजाब के कैबिनेट मंत्री को गिरफ्तार किया। दिल्ली सरकार चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान में होम्योपैथी और यूनानी ओपीडी सेवा शुरू करेगी। दिल्ली में सेंट्रल रिज का 673 हेक्टेयर क्षेत्र आरक्षित वन घोषित। और अनीश भानवाला ने नई दिल्ली में आयोजित 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज पश्चिम बंगाल में नव निर्वाचित भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। श्रीमती गुप्ता ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और बंगाल की जनता को दिल्ली की ओर से बधाई दी। इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने बंगाल की जनता विशेषकर महिलाओं और बेटियों के साहस तथा संघर्ष की सराहना करते हुए राज्य के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये जीत केवल राजनीतिक आंकड़ों की जीत नहीं है, बल्कि बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले 321 भाजपा कार्यकर्ताओं के बलिदान की भी जीत है।
1: ये जीत उन 321 भाजपा कार्यकर्ताओं के बलिदान की आहुति की यात्रा पे टिकी है। जब आज यहाँ बंगाल में नया सूर्योदय हुआ है और नई सरकार बन रही है, इन 321 भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी जान कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं दी, उन्होंने अपनी जान सोनार बंगला के भविष्य के लिए दी।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में बंगाल की जनता ने अत्याचार और भ्रष्टाचार का दौर देखा, लेकिन अब जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव करने का फैसला लिया है।
2: बंगाल की बेटियों के लिए, बंगाल की महिलाओं के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा युग 15 साल अत्याचार का, दमन का खेला, परंतु अब बंगाल की जनता ने सोनार बंगला लिए जो वोट किया है, आज की ये सुबह, आज का ये सूरज उस बंगाल के लिए है जहां विकास होगा, जहां विश्वास होगा, और विश्वास और विकास के साथ बंगाल पूरे देश के साथ आगे बढ़ेगा।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इससे पहले ईडी ने दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी।
3: ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। ईडी ने बताया कि ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। ईडी ने कथित तौर पर दिल्ली स्थित गैर मौजूद फर्मों से कई फर्जी जीएसटी बिल प्राप्त किए ताकि फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट, निर्यात क्रेडिट पर जीएसटी रिफंड और ड्यूटी ड्रॉबैक लाभ का दावा किया जा सके। ईडी के अनुसार इन लेन देन से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
0: एक अन्य मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने श्रावंती ग्रुप के प्रमोटर दंडामुदी वेंकटेश्वर राव उर्फ डीवी राव सहित 3 लोगों को करीब 284 करोड़ रुपए के धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी ने बताया कि गुरुग्राम के सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की दी थी। आरोप था कि डीवी राव के नियंत्रण वाली डीजेडब्ल्यू इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने विभिन्न संस्थानों से फर्जी तरीके से ऋण प्राप्त किए थे और ऋण चुकाने की धनराशि वैध ऋणदाताओं को लौटाने के बजाय फर्जी कंपनियों को हस्तांतरित कर दी गई। ईडी ने बताया कि आरोपियों ने आरटीजीएस बैंकिंग प्रणाली का दुरुपयोग किया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ कर 3 मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी आईपीओ स्कैम, डिजिटल अरेस्ट और फॉरेक्स ट्रेडिंग धोखाधड़ी में संलिप्त थे और इन्होंने पीड़ितों से कुल 1,22,00,000 से अधिक रूपये की ठगी की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप, फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, सोशल

0: मीडिया और फर्जी सरकारी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर लोगों को निवेश, आईपीओ फंडिंग और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डराकर ठगी करते थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राजधानी में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने सेंट्रल रिज के 673 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित कर दिया है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के अंतर्गत इस क्षेत्र को यह दर्जा दिया गया है। ये क्षेत्र सरदार पटेल मार्ग और राष्ट्रपति भवन स्टेट के आसपास स्थित है।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली रिज प्राचीन अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है, जिसे राजधानी का ग्रीन लंग्स भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिज क्षेत्र वायु गुणवत्ता सुधारने, भूजल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि आरक्षित वन घोषित किए गए रिज क्षेत्रों में नीम, पीपल, शीशम, जामुन, इमली और आम जैसे देसी तथा पर्यावरण के अनुकूल प्रजातियों के वृक्ष बड़े स्तर पर लगाए जाएंगे। अब तक दिल्ली में कुल 4,754 हेक्टेयर रिज क्षेत्र को आरक्षित वन का दर्जा मिल चुका है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के अन्य रिज क्षेत्रों को भी जल्द आरक्षित वन घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से अतिक्रमण और पर्यावरणीय क्षरण पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अनुपम मिश्र।
0: दिल्ली सरकार का आयुष निदेशालय चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान में होम्योपैथी और यूनानी ओपीडी सेवा शुरू करेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस पहल से लोगों को बिना आर्थिक बोझ के समग्र उपचार और तनाव प्रबंधन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आयुष निदेशालय डॉक्टरों और स्टाफ की तैनाती करेगा। इस पहल से आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी और यूनानी जैसी आयुष पद्धतियों के जरिए एक ही मंच पर समग्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज रोहिणी सेक्टर 24 में नई जल पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना के माध्यम से क्षेत्र में स्वच्छ, नियमित और निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। श्री सिंह ने कहा कि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार नई पाइपलाइन बिछाने, पुरानी लाइनों को बदलने और जल नेटवर्क को मजबूत करने का काम कर रही है। श्री सिंह ने अधिकारियों को जल आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने मॉनसून कार्य योजना 2026 की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परिषद ने ताज मानसिंह के पास भूमिगत नालियों और कवर स्टॉर्म वाटर ड्रेन की जांच पहली बार रोबोटिक तकनीक का उपयोग शुरू किया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री चहल ने बताया कि 31 मार्च तक पहले चरण की 100% गाद सफाई पूरी कर ली गई थी, वहीं दूसरा चरण 15 जून तक पूरा हो जाएगा। 3.5 करोड़ रुपए की लागत से गाद सफाई का कार्य किया जा रहा है। परिषद क्षेत्र में पुराना किला, दयाल सिंह कॉलेज, पंचकुइया रोड, हनुमान मंदिर और सत्य सदन समेत 5 प्रमुख संवेदनशील स्थान चिन्हित किए गए हैं। इन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे और सेंसर आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अमीशा।
0: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाहिनी आज केशवपुरम जोन के अंतर्गत कमला नगर क्षेत्र में सफाई अभियान का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री वाहिनी अधिकारियों और कर्मचारियों को सिंधोरा कला गांव में स्थित रेलवे अंडरब्रिज की तुरंत सफाई का निर्देश दिया। श्री वाहिनी ने गुलाबी बाग स्थित पार्क का उद्घाटन किया और रोशन नारा बाग में झील की सफाई, पंप हाउस निर्माण तथा उद्यान विभाग के जर्जर कार्यालय की मरम्मत करने का आदेश भी दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA द्वारा दिल्ली की तेजी से बिगड़ती जलीय संपत्तियों के पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार पर प्रस्तुत एक प्रस्तुति की समीक्षा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि DDA 77 जलाशयों के पुनरुद्धार कार्य को तुरंत शुरू कर रहा है। बैठक में द्वारका, रोहिणी और नरेला सब सिटी में परिवर्तनकारी विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन और विस्तार योजना का भी समीक्षा कर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा परिचालन उत्कृष्टता और नवाचार की दिशा में किए जा रहे प्रयास प्रभावशाली हैं। उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय हवाई अड्डा और एरो सिटी इकोसिस्टम का

0: उपयोग कर राष्ट्रीय राजधानी को व्यापार, पर्यटन तथा निवेश के वैश्विक केंद्र के रूप में और अधिक मजबूत किया जा सकता है। उपराज्यपाल ने विमान शोर प्रदूषण जैसी समस्याओं के समाधान के साथ विकास और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया, जिसमें सड़कों पर धूल के स्तर का आकलन करने और शहर में सड़क सफाई और झाड़ू लगाने के कार्यों की समीक्षा की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि समीक्षा अभियान में कुल 19 हवाई दस्ते की टीमें शामिल थी, जिन्होंने नोएडा प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाली 46 सड़क खंडों को कवर किया। दिल्ली सरकार ने बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के पास हीट वेव एक्शन प्लान के अंतर्गत विशेष कूलिंग जोन तैयार किया है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि यहां 70 से 80 लोगों के बैठने की व्यवस्था, ठंडे पानी और ORS की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार केवल व्यवस्था बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि लोगों तक सीधी राहत पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने आज दिल्ली में प्रोजेक्ट मीट के दूसरे चरण की शुरुआत की। ये पहल किशोर विद्यार्थियों के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में स्वास्थ्य संबंधी मॉड्यूल, सहकर्मी सहायता गतिविधियां और अभिभावक सहभागिता कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। दूसरे चरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 60 से अधिक CBSE स्कूल शामिल हुए हैं। नई दिल्ली में 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी प्रतियोगिता में अनीश भानवाला ने आज स्वर्ण पदक जीता। रेलवे का प्रतिनिधित्व कर रहे अनीश ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में यह पदक अपने नाम किया। डॉ करणी सिंह शूटिंग रेंज में चैंपियनशिप के फाइनल में अनीश ने 31 का स्कोर करके पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश के सूरज शर्मा दूसरे, जबकि पंजाब के विजयवीर सिद्धू ने तीसरे स्थान पर रहे।
1: नई दिल्ली की डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में चैंपियनशिप के फाइनल में अनीश ने 31 का स्कोर करके पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश के सूरज शर्मा दूसरे, जबकि पंजाब के विजयवीर सिद्धू तीसरे स्थान पर रहे। 50 मीटर पिस्टल IPC मिक्स्ड SH1 सीनियर वर्ग में दिल्ली की भक्ति शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान की सारिका अंदाना दूसरे और हरियाणा के संदीप कुमार तीसरे स्थान पर रहे। जूनियर पुरुष वर्ग में मध्य प्रदेश के सूरज शर्मा ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल जूनियर पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। टीम स्पर्धा में आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट का दबदबा देखने को मिला। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल पुरुष टीम स्पर्धा में आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि हरियाणा ने रजत और नौसेना की टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। 50 मीटर पिस्टल पुरुष वर्ग में हरियाणा के कपिल बैंसला और महिला वर्ग में हरियाणा की केतन मलिक ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रादेशिक समाचार के लिए स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
0: सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। राजधानी में आज दिन के समय धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल मौसम साफ रहेगा, वहीं कल का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पश्चिम बंगाल में नव निर्वाचित भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली और गुरुग्राम में छापेमारी कर पंजाब के कैबिनेट मंत्री को गिरफ्तार किया। दिल्ली सरकार चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान में होम्योपैथी और यूनानी ओपीडी सेवा शुरू करेगी। दिल्ली में सेंट्रल रिज का 673 हेक्टेयर क्षेत्र आरक्षित वन घोषित। और अनीश भानवाला ने नई दिल्ली में आयोजित 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार

0: का हुनर साईं, और कदम में डूब का खतरा, कदम में पार का रंग, कदम में डूब का खतरा, कदम में पार का रंग, यही किनारे दरिया यही भंवर साईं, यही किनारे दरिया यही भंवर साईं। और खुद अपने आप को पहचानना जरूरी है, खुद अपने आप को पहचानना जरूरी है, खुद अपने आप से थोड़ी सी बात कर साईं, खुद अपने आप से थोड़ी सी बात कर साईं। और शिकस्ते जात भी उम्दा, शिकस्ते दुनिया भी, शिकस्ते जात भी उम्दा, शिकस्ते दुनिया भी, मिला है जो भी मोहब्बत के नाम पर साईं, मिला है जो भी मोहब्बत के नाम पर साईं। और एक दूसरी गजल है कि दिल उसी शख्स के ध्यान में है, दिल उसी शख्स के ध्यान में है, वो जो मसरूफ इम्तिहान में है, दिल उसी शख्स के ध्यान में है, वो जो मसरूफ इम्तिहान में है, खूबरूई में खाल खाल एक दिल, खूबरूई में खाल खाल एक दिल, नाक के ऐन दरमियान में है, खूबरूई में खाल खाल एक दिल, नाक के ऐन दरमियान में है। और बात से कबल बुए खुश का हुनर, बात से कबल बुए खुश का हुनर, उन लबों के गुलाब दान में है, उन लबों के गुलाब दान में है। और एक हरे रंग की परी शायद, एक हरे रंग की परी शायद, मेरे ख्वाबों के आसमान में है। और एक गुलाबी तरंग का अफसू, एक गुलाबी तरंग का अफसू, उसकी भीगी हुई जबान में है। नींद मेरी मेरा सुकून तसनीफ, नींद मेरी मेरा सुकून तसनीफ, उसी आगोशे मेहरबान में है। एक गजल कुछ यूं है कि किस बहारा से होकर आए थे, किस बहारा से होकर आए थे, कौन सी फसल हो गए हैं हम, कोई भी ठीक बात कहने पर वाजिबुल कत्ल हो गए हैं हम, कोई भी ठीक बात कहने पर वाजिबुल कत्ल हो गए हैं हम। और कुछ भी कहने से डरते रहते हैं, बात इशारों में करते रहते हैं, कुछ भी कहने से डरते रहते हैं, बात इशारों में करते रहते हैं, भीड़ की नजर हो गए हैं हम, खौफ की नस्ल हो गए हैं हम, भीड़ की नजर हो गए हैं हम, खौफ की नस्ल हो गए हैं हम। और उसकी सब बद दिमागियों पर हम हुस्न को दे रहे हैं बस तरजीह, उसकी सब बद दिमागियों पर हम हुस्न को दे रहे हैं बस तरजीह, इश्क तेरी इनायतों से ही दुश्मन अक्ल हो गए हैं हम, इश्क तेरी इनायतों से ही दुश्मन अक्ल हो गए हैं हम। और डालियों पर फुदकने वालों को किसने दी है सजाए यकरंगी, डालियों पर फुदकने वालों को किसने दी है सजाए यकसमती, बंदरों की सिफात वाले थे भेड़ की नकल हो गए हैं हम, बंदरों की सिफात वाले थे भेड़ की नकल हो गए हैं हम। कुछ एक अशार और पढ़ देता हूँ, ये गजल के चंद अशार यूं हैं कि जुर्म है राहे अदब में ये हुनर पाना भी,
1: जुर्म है राहे अदब में,
0: जुर्म है राहे अदब में ये हुनर पाना भी, अपने बारे में बहुत धीरे से चिल्लाना भी, अपने बारे में बहुत धीरे से चिल्लाना भी, इतना बेफहम हूँ बेरंग हूँ बेफायदा हूँ, इतना बेफहम हूँ बेरंग हूँ बेफायदा हूँ, कि समझना मुझे बेकार है समझाना भी, कि समझना मुझे बेकार है समझाना भी। और तुझसे मुमकिन हो तो उस सांस पे कर रक्स बदन, तुझसे मुमकिन हो तो उस सांस पे कर रक्स बदन, जिसको आता हो किसी दीप सा जल जाना भी, जिसको आता हो किसी दीप सा जल जाना भी, काहिली मेरी तबीयत है अमल इश्क मेरा, काहिली मेरी तबीयत है अमल इश्क मेरा, कुछ न होने से ही होगा यहाँ हो जाना भी, कुछ न होने से ही होगा यहाँ हो जाना भी। और ये सलीका ये अदा और ये बातों का रचाओ, ये सलीका ये अदा और ये बातों का रचाओ, तुझसे कुछ जल तो रहा है तेरा दीवाना भी, तुझसे कुछ जल तो रहा है तेरा दीवाना भी। और लहर खाती हुई साड़ी की कसम जाने अदा, लहर खाती हुई साड़ी की कसम जाने अदा, तेरी

0: पोशाक का एक नाम है पैमाना भी, तेरी पोशाक का एक नाम है पैमाना भी। बहुत शुक्रिया। मैं अब हमारे दरमियान मौजूद उसामा जाकिर साहब से इल्तिमास करूंगा कि वो अपनी गजल के अशआर सुनाएं।
1: मैं एक गजल से इब्तिदा करता हूँ, पेश खिदमत है। अपने नूर को मिट्टी कर और मेरी मिट्टी पानी कर, मौला मेरी मूरत को सोलह आने मनमानी कर, और मेरा नाम ठिकाना हो,
0: मेरा नाम ठिकाना हो
1: सब खुश आवाज परिंदों का।
0: क्या बात है। मेरा नाम ठिकाना हो,
1: मेरा नाम ठिकाना हो सब खुश आवाज परिंदों का, मेरी जात को जंगल कर और जंगल कोहिस्तानी कर।
0: क्या बात है भाई, वाह वाह वाह वाह।
1: वो मेरा होना अपने होने की पहचान बनाकर गूंद,
0: मेरा होना अपने होने की पहचान बनाकर गूंद,
1: मेरा होना अपने होने की पहचान बनाकर गूंद, मेरी मिट्टी चाक पे धर और कुन की कारस्तानी कर।
0: क्या बात है भाई, वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर है।
1: मेरा होना अपने होने की पहचान बनाकर गूंद, मेरी मिट्टी चाक पे धर और कुन की कारस्तानी कर, और क्या तेरा दिल बहलाएगी सूखे घुटनों की चटपट।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या तेरा दिल बहलाएगी,
1: क्या तेरा दिल बहलाएगी
0: सूखे घुटनों,
1: सूखे चटपट घुटनों की चटपट, मन में प्रेम का रस भर मौला हर सजदा नूरानी कर।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छे भाई, वाह।
1: मन में प्रेम का रस भर मौला हर सजदा नूरानी कर, और या तो कम कर दिल की तह में हर एक चाह की गहराई।
0: हाय हाय, चाह की गहराई का जवाब नहीं, वाह वाह।
1: और या तो कम कर दिल की तह में हर एक चाह की गहराई, या फिर मेरे तन के भीतर दमखम भी लाफानी कर।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह।
1: या तो कम कर दिल की तह में हर एक चाह की गहराई, या फिर मेरे तन के भीतर दमखम भी लाफानी कर, और पीले रेगिस्तान से सुनकर नीले पानी की गाथा।
0: पीले रेगिस्तान से सुनकर,
1: पीले रेगिस्तान से सुनकर नीले पानी की गाथा, चिकनी चिकनी मिट्टी चीख रही है बाबा खत्म कहानी कर।
0: चिकनी मिट्टी चीख रही है,
1: चिकनी मिट्टी चीख रही है बाबा खत्म कहानी कर। एक और गजल के कुछ
0: जी शेर साथ फरमाएं।
1: प्यासे होठों की खातिर खाली प्याला हूँ मैं,
0: प्यासे होठों की खातिर खाली प्याला हूँ,
1: प्यासे होठों की खातिर खाली प्याला हूँ मैं, सूखी आंखों में पानी भरने वाला हूँ मैं।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह।
1: और एक नदी के तूफानों का चौकीदार भी हूँ,
0: एक नदी के तूफानों का चौकीदार भी,
1: एक नदी के तूफानों का चौकीदार भी हूँ, एक जंगल के आसेबों का रखवाला हूँ मैं।
0: वाह वाह वाह,
1: एक नदी के तूफानों का चौकीदार भी हूँ, एक जंगल के आसेबों का रखवाला हूँ मैं, और मेरे ख्वाब की कोख से जन्मी तू नवजात शिशु।
0: आया है, क्या बात है, वाह वाह वाह।
1: मेरे ख्वाब की कोख से जन्मी तू नवजात शिशु, तेरी किलकारी से फूट रही ज्वाला हूँ मैं।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह।
1: तेरी किलकारी से फूट रही ज्वाला हूँ मैं,
0: क्या बात है।
1: और मेरी आंख में टूटने वाली एक किरण है तू,
0: मेरी आंख में टूटने वाली,
1: मेरी आंख में टूटने वाली एक किरण है तू, तेरे ख्वाब में गढ़ने वाला एक भाला हूँ मैं।
0: हाय हाय, वाह वाह, फिर से पढ़िए, वाह वाह वाह।
1: मेरी आंख में टूटने वाली एक किरण है तू,
0: वाह,
1: तेरे ख्वाब में गढ़ने वाला एक भाला हूँ मैं। और एक और गजल के चंद शेर
0: जी।
1: अपने तेवर थाम संवरिया,
0: अपने तेवर थाम संवरिया,
1: कांप कांप बल खाए सड़क।
0: क्या बात है,
1: अपने तेवर थाम संवरिया,
0: कांप कांप
1: कांप कांप बल खाए सड़क, चलने वाली तेरी चाल पे जालिम मर ना जाए सड़क।
0: क्या बात है,
1: और पड़े पड़े ये दिन भर झोंके दुनिया की आंखों में धूल।
0: पड़े पड़े ये दिन भर झोंके दुनिया की आंखों में,
1: पड़े पड़े ये दिन भर झोंके दुनिया की आंखों में धूल, रात को एक साये के पीछे पीछे चलती जाए सड़क।
0: हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: और चलते चलते सोच रहे हो,
0: चलते चलते सोच

0: रहे हो।
1: चलते चलते मत सोचो।
0: वाह वाह, चलते चलते सोच रहे हो, चलते चलते मत
1: चलते
0: सोचो।
1: चलते सोच रहे हो,
2: चलते चलते
1: चलते चलते मत सोचो, सोच की अंधियारी खाई में गिरकर डूब न जाए सड़क।
0: क्या बात है, वाह वाह।
1: सोच की अंधियारी खाई में गिरकर डूब न जाए सड़क, और दीवानों को चूमने वाले,
0: दीवानों को चूमने वाले,
1: दीवारों को चूमने वाले तुझ पर कमरे तारी हो,
0: दीवारों को चूमने वाले तुझ पर कमरे तारी हो,
1: दीवारों को चूमने वाले तुझ पर कमरे तारी हो, घर को लौटने वाले तुझको रस्ते में मिल जाए सड़क।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी।
1: घर को लौटने वाले तुझको रस्ते में मिल जाए सड़क। एक और गजल है, दुनिया भर से ऊब गए हो, आओ पधारो
0: दिल हारो, वाह वाह
1: दिल हारो।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी गजल है।
1: दुनिया भर से ऊब गए हो, आओ पधारो दिल हारो, खुद से भी बेजार हुए हो,
0: क्या बात है,
1: मौका मारो
0: दिल हारो
1: दिल हारो।
0: बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह।
1: और हर बंदूक की काली नाल के अंदर रख के लाल गुलाब।
0: क्या बात है, हर बंदूक की काली नाल,
1: हर बंदूक की काली नाल के अंदर रख के लाल गुलाब, हर अंधी सरहद की आंख में गोली मारो,
0: वाह वाह दिल हारो। क्या बात है, वाह कमाल की गजल है, क्या शेर।
1: जो भी धड़कता दिल मिल जाए उससे टूट के प्यार करो,
0: जो भी धड़कता दिल मिल जाए,
1: जो भी धड़कता दिल मिल जाए उससे टूट के प्यार करो, ख्वाब भरी सारी आंखों की नजर उतारो
0: दिल
1: दिल हारो। और दिन निकले तो सूरज की हर एक किरण का मुंह चूमो।
0: क्या बात है, वाह वाह। दिन निकले तो,
1: दिन निकले तो सूरज की हर एक किरण का मुंह चूमो, और रातों को चांद का कोमल नूर निहारो
0: दिल दिल हारो। वाह वाह वाह, क्या बात है उसमा, कमाल।
1: पहली दूसरी तीसरी दुनिया सब माया का झांसा है।
0: क्या बात, सच्चाई है बिल्कुल, वाह।
1: पहली दूसरी तीसरी दुनिया सब माया का झांसा है, दुनिया एक है दुनियादारो, इसे संवारो दिल हारो। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: पहली दूसरी तीसरी दुनिया सब माया का झांसा है, दुनिया एक है दुनियादारो, इसे संवारो दिल हारो। सामईन, आप सुन रहे थे अभी उसामा जाकिर को, जिन्होंने बड़े कमाल के अशआर सुनाए, और उनका लहजा आपने महसूस किया होगा कि बेहद मुनफरिद था। अब मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे दरमियान मौजूद इस महफिल के आखिरी शायर जनाब विपुल कुमार से, कि वो अपने कलाम से हमें महसूस फरमाए
3: कुछ शेर।
0: इरशाद,
3: खाने सोखते दिल का मकीन कोई नहीं,
0: खाने सोखते दिल का मकीन,
3: खाने सोखते दिल का मकीन कोई नहीं, तू नहीं है तो मेरे शोला नशीं कोई नहीं।
0: क्या
1: बात, क्या बात है,
3: तू नहीं है तो मेरे शोला नशीं
0: कोई नहीं। क्या बात है, वाह वाह।
3: चांद चेहरे भी चमकते हैं गुलो सुंबल भी,
0: चांद चेहरे भी चमकते हैं,
3: चांद चेहरे भी चमकते हैं गुलो सुंबल भी, तेरी दुनिया में मगर दिल सा नगी कोई नहीं। एक आवाज लगाता हूँ कोई है भी यहाँ,
0: एक आवाज लगाता हूँ,
1: एक आवाज लगाता,
3: एक आवाज लगाता हूँ कोई है भी यहाँ, एक आवाज सी आती है कहीं कोई नहीं।
0: क्या बात है, वाह वाह, क्या शेर है भाई, बहुत अच्छा।
3: एक आवाज लगाता हूँ कोई है भी यहाँ,
0: बहुत अच्छा।
3: एक आवाज सी आती है कहीं कोई नहीं,
0: वाह वाह वाह।
3: एक आलम है फरावानी मर्दुम से मगर, एक आलम है फरावानी मर्दुम से मगर, मैं जहाँ जिसको बुलाता हूँ वहीं कोई नहीं।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह वाह।
3: मैं जहाँ जिसको बुलाता हूँ
0: वहीं कोई नहीं। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह।
3: सवाद शाम में सब वैशियों का जलसा हो,
0: सवाद शाम में सब वैशियों का जलसा,
3: सवाद शाम में सब वैशियों का जलसा हो, लहू का राग हो और सुरतराज प्यासा हो। सुना रहे हैं मुझे लोग दास्तां उसकी,
0: सुना रहे हैं मुझे लोग दास्तां,
3: सुना रहे हैं मुझे लोग दास्तां उसकी, इस एतमाद से जैसे किसी ने देखा हो। सुना रहे हैं मुझे लोग दास्तां उसकी, इस एतमाद से जैसे किसी ने देखा हो।
0: क्या बात है, वाह वाह।
3: किसी के होंठ सुरों में कलाम करते हूँ,
0: किसी के होंठ सुरों में कलाम करता
3: किसी
0: है।
3: का रंज उदासी की

0: कहीं कहीं किवाड़ की दस्तक ही से न खुलता हो।
1: क्या बात है, क्या जबान है, बहुत अच्छे भाई।
0: मैं ये समझ के लगे गुल से बात करता हूँ, कोई तो बाग में मेरा हिसाब लिखता हो।
1: क्या बहुत अच्छा।
0: इस धमक से तू अगर पांव रखेगा मुझमें, फिर कोई चश्मा नया फूट बहेगा मुझमें। क्यों न कुछ शोर उठाऊं कि वो खामोश मिजाज, बे इरादा ही सही ध्यान तो देगा मुझमें। घर में चलते हुए डरता हूँ कि कोई साया आके टकराएगा और आ ही बसेगा मुझमें। घर में चलते हुए डरता हूँ कि कोई साया आके टकराएगा और आ ही बसेगा मुझमें।
1: बहुत अच्छे भाई।
0: इस कदर तंग है दिल अपनी परेशानी से, सैर अच्छी है मगर कौन रहेगा मुझमें। वक्त झाड़ेगा नए हिजर के मौसम का शजर, और एक लम्हा कोई आन गिरेगा मुझमें।
2: बहुत अच्छा।
0: वक्त झाड़ेगा नए हिजर के मौसम का शजर, और एक लम्हा कोई आन गिरेगा मुझमें। एक ही बुत से निकल जाएगा इल्हाद का तीर, सांस में नाद जो अटका है बजेगा मुझमें।
1: क्या बात, फिर से बड़ी।
0: एक ही बुत से निकल जाएगा इल्हाद का तीर, सांस में नाद जो अटका है बजेगा मुझमें।
1: क्या बात है।
0: मेरे नाजुक मेरी मिट्टी पे बहुत रक्स न कर, ध्यान की रुत है कोई फूल खिलेगा मुझमें। आंखों की स्याही बरती है ख्वाब रकम करने के लिए, इस पर भी वो कहता है कम है सुरमे की कलम करने के लिए। मेरे खुश्क बदन की ख्वाहिश में कई बादल उड़ते फिरते हैं, कई नदियां बहती रहती हैं मेरी खाक को नम करने के लिए। तू किन बागों का हुस्न लिए इस तपती रेत पे बैठा है, आए या हुए मस्ती होश में आ एक दश्त हरम करने के लिए। कहता है वो जालिम सब्र करो क्या तेग के नीचे गर्दन है, और एक इशारा होता है मुझे गर्दन खम करने के लिए। बहुत शुक्रिया।
3: सामईन, आप सुन रहे थे विपुल कुमार को। इसी के साथ ये मुशायरा अपने अख्तिताम की तरफ बढ़ता है, और हमारे साथ मौजूद थे जनाब शहबाज रिजवी, जनाब उसामा जाकिर और जनाब विपुल कुमार, साथ में खाकसार तसनीफ हैदर। उम्मीद है कि आपको ये मुशायरा पसंद आया होगा। शुक्रिया।
4: सामईन, अभी आप मुशायरे से महजूज हो रहे थे, मुशायरे की निजामत कर रहे थे जनाब तसनीफ हैदर। इसी के साथ अपनी मेजबान फरहीन इकबाल को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मुशायरा, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। और आइए चलते हैं और सुनते हैं फिल्म संगीत, और कार्यक्रम फिल्म संगीत का सुनते हैं सबसे पहला प्यारा सा गीत।

जी हाँ दोस्तों, ना जाने क्या क्या ढूंढता है ये पागल दिल, और ना जाने कितनी कितनी अर्जियां लगाता है कि केवल एक बार, सिर्फ एक बार वो चेहरा देखने को मिल जाए, है ना।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओ, अब समय है समाचार संध्या का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 99 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से

0: आकाशवाणी के लिए ओभिरूप भट्टाचार्य।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ

0: में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रज जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से यह निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमरीका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
1: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांध्र कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वामदलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. 5 MLAs also sworn in as Cabinet Ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties. Set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtania, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as Cabinet Ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of the BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishak, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. We have more from our correspondent.
4: After taking the oath as Chief Minister of West Bengal, Shubhendu Adhikari held meeting with the Chief Secretary, Home Secretary and other officials of the state at the PWD tent at Maidan. Meanwhile, renovation works are underway at the Writers Building in Kolkata for reshifting of the Secretariat of the State Government, which was shifted from this heritage building to the Navanno after Mamata Banerjee.

किया जाएगा। आज की फनकार हैं इस प्रोग्राम में सुमित्रा रॉय चौधरी। 9:45 पर खबरें नश होंगी और 9:55 पर मशवरे सेहत के सिलसिले के तहत कुछ बातें होंगी आपकी सेहत के हवाले से। रात 10 बजे जनाब सिराज अनवर का तहरीर करदा मिजाही ड्रामा आप सुनेंगे तलाश। 10:30 फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आप सुनेंगे तामिले इरशाद। ये प्रोग्राम जारी रहेगा 11:30 तक। दौरान प्रोग्राम 11 बजे खबरें बर्रे सगीर से का उर्दू न्यूज बुलेटिन में नशर किया जाएगा। रात 11:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम सुर्खियों में। 11:45 पर क्लासी की मौसीकी के प्रोग्राम बज़्म मौसीकी में आप समाप्त करेंगे उस्ताद यूनुस हुसैन खान का गाया राग मलहुआ केदार में ख्याल। शब के 12 बजे आलमी खबरें नशर की जाएंगी और 12:10 पर क्लासिक की मौसीकी में हम आपको सुनवाएंगे विदुषी अनुपम महाजन का सितार पर बजाया राग यमन और एक धुन राग भैरवी में। 12:30 आखिरी शब प्रोग्राम में हम आपकी नजर करते हैं सदाबहार पुराने फिल्मी नक में। 12:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 1 बजे उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पसीर हो जाएंगी। सामिन ये थे एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशो नले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है प्रोग्राम एक फनकार। इस प्रोग्राम में आज की फनकारा हैं सुमित्रा रॉय चौधरी।

0: मजाज लखनवी का कलाम पेश कर रही थी सुमित्रा रॉय चौधरी। इस गजल के साथ ही एक फनकार प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DT फ्री डिश पर हमारी नशा जारी है। शब के 9:45 हो चुके हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: शगुफ्ता यास्मीन से खबरें सुनिए। शोभेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। 5 अरकान असम्बली ने भी काबीना वजीर के तौर पर हलफ लिया। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने कांग्रेस, VCK, IUML और बाएंबाजू की पार्टियों की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वो कल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। भारत ने MIRV निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दिनभर के दौरे में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। और तीरंदाजी में शंघाई में वर्ल्ड कप स्टेज 2 में मर्दों के इन्फिरादी कंपाउंड मुकाबले में भारत के साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल में बीजेपी कानून साज पार्टी के लीडर शुभेंदु अधिकारी ने आज रियासत के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। इस तरह उन्होंने रियासत में पहली बीजेपी सरकार की कमान संभाल ली है। गवर्नर RN रवि ने जनाब शुभेंदु अधिकारी को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक शानदार तकरीब में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वजीर आला के हमरा 5 काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया। इनमें दिलीप घोष, अग्नि मित्रा पॉल, अशोक किर्तानिया, निशित प्रमाणिक और क्षुदीराम टूडू शामिल हैं। तमिलनाडु में तमिलगा वित्री करगम टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में लोकभवन में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आलिकर से मुलाकात की और 120 अरकान असेंबली की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारे नामानिगार ने बताया कि रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आलिकर कल सुबह 10 चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में जोसेफ विजय और उनकी काबीना को हलफ दिलाएंगे। हालिया असेंबली इंतखाबात में TVK पार्टी 108 सीटें जीतकर वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि सरकार बनाने के लिए 234 रुकनी तमिलनाडु असेंबली में अक्सरियत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। हलफबरदारी की तकरीब में वजीर आजम नरेन्द्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, NDA और BJP की सरकार वाली रियासतों के वज़राए आला, भारतीय जनता पार्टी के सदर नितिन नबीन और पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने 207 सीटें जीती हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें मिली। तृणमूल कांग्रेस रियासत में पिछले 15 साल से इक्तदार में थी। भारत ने ओडिशा में डॉ APJ अब्दुल कलाम जजीरे से MIRV निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल

का मियां आजमाइश की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दिफा ने कहा कि कई तरह के पेलोड्स के साथ इस मिसाइल का तजुर्बा किया गया। इसमें बहर हिंद के खित्ते में एक वसी जोग्राफियाई इलाके में फैले हुए मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने MIRV सलाहियत वाले अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश पर दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO भारतीय फौज और सनत की सताइश की है। जनाब सिंह ने कहा कि इससे बढ़ते हुए खतरात के खिलाफ मुल्क की दिफाई तैयारी में नुमाया इजाफा होगा। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। सुबह तकरीबन 11 बजे वजीर आजम बेंगलुरू में द आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं सालगिरह तकरीबात में शिरकत करेंगे। इसके बाद वजीर आजम मोदी हैदराबाद जाएंगे, जहां वो तेलंगाना में तकरीबन 9,400 करोड़ रूपये मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम मोदी गुजरात का भी 2 रोजा दौरा करेंगे, जो कल ही से शुरू होगा। पीर के रोज वजीर आजम मोदी सोमनाथ मंदिर के अहिया की 75वीं सालगिरह के मौके पर सोमनाथ अमृत महोत्सव में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने 11 साल पहले NDA सरकार की जानिब से शुरू की गई समाजी सिक्योरिटी और पेंशन की अहम स्कीमों के असरात को उजागर किया है। इनमें PM जीवन ज्योति बीमा योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना शामिल हैं। जनाब मोदी ने कहा कि इन इकदाम से मुल्क के आवाम के लिए अजमत, वकार, यकीन दहानी और माली सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के सरकार के अहद की अक्कासी होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि PM जीवन ज्योति बीमा योजना और PM सुरक्षा बीमा योजना से सबसे निचली सतह पर लोगों की जिंदगी पर मुस्बत असर पड़ा है और समाजी सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क मजबूत हुआ है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने कौमी पंचायत अवार्ड 2025 के फातिहीन का ऐलान कर दिया है और इस एजाज के लिए मुल्क भर से 42 पंचायतों को मुंतखब किया गया है। पंचायती राज की वजारत ने मुतला किया है कि अवार्ड पेश किए जाने की तकरीब आइंदा माह की 3 तारीख को नई दिल्ली में होगी। वजारत के मुताबिक कर्नाटक को सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं और उसकी 6 पंचायतों को मुंतखब किया गया है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की 5 पंचायतें चुनी गई हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से वाबस्ता मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। इससे कबल ED ने इस केस के सिलसिले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 मकामात पर छापे मारने की कार्रवाई अंजाम दी थी। काले धन को जायज शक्ल देने की रोकथाम के 2002 के एक्ट की फौजदारी दफात के तहत ये कार्रवाई की गई है। एजेंसी ने बताया कि इस केस का ताल्लुक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मोबाइल फोन की फर्जी GST खरीद के जरिए मुबैना तौर पर बड़े पैमाने की मनी लॉन्ड्रिंग और दुबई से नाजायज रकूमात की भारत मुंतकली से है। मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने रिलायंस ADA ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ दर्ज किए गए 3 केसों के सिलसिले में मुंबई में 17 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी। CBI के मुताबिक तलाशी की यह कार्रवाई इन कंपनियों के डायरेक्टरों के रिहायशी ठिकानों के साथ साथ उन जैली कंपनियों के दफातर में की गई जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक फंड्स को मुंतकिल करने के लिए किया गया था। एजेंसी ने कहा है कि इस कार्रवाई के नतीजे में काबिल एतराज दस्तावेजात कब्जे में ली गई हैं। CBI ने कहा है कि गुज़श्ता कुछ महीनों के दौरान सरकारी मिल्कियत के मुख्तलिफ बैंकों और LIC की जानिब से दर्ज कराई गई शिकायतों की बुनियाद पर अनिल अंबानी की सरबराही वाले रिलायंस ग्रुप के खिलाफ 7 केस दर्ज किए गए। हजारों करोड़ रुपए की मुबैना धोखाधही के सिलसिले में ये शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। दिफा के वजीर ममलिकत संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में AIOS मुसल्ला फाद से मुतल्लिक ऑफ्थेल्मोलॉजी अपडेट 2026 का इफ्तिताह किया। इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आंखों के अमराज की कुल हिंद अंजुमन के साथ इश्तराक में नई दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल के महकमा अमराज चश्म की जानिब से किया जा रहा है। इसमें भारत और बैरून मुल्क से फौज के आंखों के अमराज के माहरीन और दीगर सिविलियन माहरीन आंखों के अमराज के सिलसिले में तहकीक, इख्तरा और तिब्बी महारत के सिलसिले में एक मुश्तरका प्लेटफार्म पर यकजा हो रहे हैं। अमरीका ने कहा है कि वह मुजवजा 14 निकाती फ्रेमवर्क पर ईरान के बाजाब्ता जवाब का इंतजार कर रहा है, जिसका मकसद इलाकाई महाजराई को फैलने से रोकना है। मगरबी एशिया के खित्ते में फौजी और सियासी कशीदगी का सिलसिला जारी है।
अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीकी सिफारतकारी में मसरूफ है, और उधर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह इशारा दिया है कि ईरान के जवाब से मुजाकरात के अगले मरहले का तायुन हो सकता है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्षी ने अमरीका की हालिया फौजी कार्रवाई पर नुकताची

इस्तेमाल करने से आपके जिस्म के जो जिल्द है वो रूखी हो सकती है, जैसे मिसाल के तौर पर मुहासों की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर बढ़ती उम्र जिससे जिसमें कोलेजन बनना जो है कम हो जाता है, जिससे हमारी जो जिल्द है वो पतली और रूखी हो जाती है। और इसके अलावा मौसम की अगर बात की जाए तो सर्दियों में तो अक्सर आपने देखा होगा ठंडी हवा की वजह से या फिर कम ह्यूमिडिटी की वजह से खुश्की जो है चेहरे पर भी आ जाती है और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी आ जाती है। बहरकैफ अब क्या करना चाहिए इसके लिए, कुछ कुदरती तरीके तो आपको जरूर बताएंगे जनाब। और इस शहद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जो हवा से नमी खींचकर आपकी जिल्द को लॉक कर देता है। और कैसे इस्तेमाल करें, 10-15 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं, फिर गुनगुने पानी से धो लीजिए, किधर आसान है जनाब। अब बात कर लेते हैं एलोवेरा जेल की। इसमें हीलिंग और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो बिना चिपचिपाहट के नमी देता है। रात को सोने से पहले ताज़ा जेल लगाएं ताकि रात भर ये अपना असर दिखा सके। मलाई और बेसन का मास्क तो जनाब बहुत आसान है, घर में ये तो अक्सर रहती है और बच्चे तो बड़े पसंद करते हैं मलाई, इसलिए थोड़ी सी मलाई बच्चों की चुरा कर आप ले सकते हैं और बेसन में मिलाकर उसका एक मास्क बनाइए और उसको चेहरे पर लगाइए। और कुछ देर के बाद हल्के जो नॉर्मल पानी होता है उसी से आप उसको धो दीजिए। देखिए फिर चेहरा कैसा चमकने दमकने लगेगा। रोशन चेहरा, भीगे जुल्फें, दूं किसको किस पर तरजी, एक कसीदा धूप का लिखूं, एक गजल बरसात के नाम, ये शेर भी याद आ गया अपनी जिल्द के हवाले से। और कच्चा दूध जो है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड ना सिर्फ जिल्द को साफ करते हैं बल्कि रूखेपन को जड़ से कम करने में मददगार साबित होता है। और नारियल के तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और ये रूखी जिल्द के लिए सुपर फूड कहा जाता है। इसमें मौजूद फैटी एसिड जो है वो जिस्म के मसाम को खोल देते हैं और उनको फिर भरने के बाद उनको अपने उसको चिकना बना देते हैं। और ओटमील का इस्तेमाल भी किया जाता है, इसके लिए जैतून के तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेट्रोलियम जेली की अगर बात की तो खासतौर कोहनी, घुटनों और एड़ियों जैसे सख्त और बहुत ज्यादा सूखे हिस्सों के लिए बहुत उम्दा काम करती है, तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, इससे आपकी वो परेशानी जो है दूर हो सकती है। अब जो तो बहुत सारे जनाब टोटके हैं वो हम बताने लगे तो बड़ा वक्त चाहिए उसके लिए, तो आज के लिए मैं समझता हूँ कि इतना ही काफी रहेगा। और जब वक्त मिलेगा, मौका मिलेगा, तो आइंदा किसी प्रोग्राम में फिर इस हवाले से हम अपनी बात को जारी रखेंगे। आज के सेगमेंट में बस इतना ही। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTV रेडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। और अब पेश खिदमत है जनाब सिराज अनवर का तहरीर करदा मिजाही ड्रामा तलाश।

0: क्या मुसीबत है, न जाने घर की चीजें कहाँ गायब हो जाती हैं। बड़ी एहतियात से लाकर रखे थे फ्रेम में, अब वो फ्रेम ही नहीं मिलता, न जाने कहाँ छू मंतर हो गया।
1: छू मंतर क्या कह रहे हो, क्या कोई जादू टोना हो रहा है?
2: अरे जादू तो तुमने कर रखा है पूरे घर पर, कोई चीज मिलकर ही नहीं देती।
1: क्या चीज नहीं मिल रही है, मुझे भी तो बताओ।
2: क्या खाक बताऊं तुम्हें, तुम भला ढूंढने में कम मदद करोगी, मेरी चीज है ना, इसलिए तलाश करने में वक्त लगेगा तुम्हें। तुम्हारी कोई चीज होती तो खोती नहीं।
1: ना जाने क्या जरूर बोले जा रहे हो, अभी आकर सुनती हूँ।
2: अजी बस सुन लिया, मेरी बात कोई सुनिए कभी तुमने।
0: इसी दीवार पर तो लटका हुआ था वो फ्रेम, कहाँ गया वो?
1: ऐनक का फ्रेम ढूंढ रहे हो? अरे ढूंढ लो, वहीं कहीं होगा।
2: हाँ जी मैं खुद ही ढूंढ लूंगा, तुम वहीं बैठी रहना।
0: समझ में नहीं आता कि जमीन खा गई आसमान। ओफो, इस घर वर के तो अंदाजे निराले हैं, चीज लाकर कहीं रखो और मिलती कहीं और है।
1: मिल गया?
2: नहीं मिला, बड़ा सा फ्रेम था बसंती रंग का, समझी? बसंती।
1: बसंती, ये बसंती कौन है?
2: ओफो, मैं पागल हो जाऊंगा। अरे यहाँ आकर सुनो मैं क्या कह रहा हूँ।
1: हाँ तो मैं आ गई।
0: आ गई।
1: आप बोलो ये बसंती कौन?

0: है?
1: तुम्हारी सौत समझी?
0: क्या जिठाई से कह रहे हो, शर्म नहीं आती?
1: मैं कहता हूँ मुझसे मत बोलो, मुझसे मत बोलो, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान।
0: बसंती का नाम जो आ गया अलग पर, पुरानी जान पहचान लगती है शायद।
1: बसंती बसंती कोई नहीं है, मैं तो बसंती रंग के फ्रेम की बात कर रहा था, बसंती रंग के फ्रेम की।
0: बसंती रंग का फ्रेम?
1: वही फ्रेम नहीं मिल रहा है। ओहो, अगर नहीं मिला तो साहब से बुरा बनूंगा और 15 रुपए का नुकसान होगा अलग।
0: कैसा नुकसान? अरे फ्रेम तो लगा हुआ है तुम्हारी आंखों पर।
1: अरे भाई ये फ्रेम नहीं, मैं किसी दूसरे फ्रेम की बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा ठीक है, मगर ये नुकसान वाली बात क्या है?
1: अरे 15 रुपए का नुकसान हो जाएगा वर्षा, पूरे 15 रुपए का। सामना जाने क्या समझे, पता नहीं कमबख्त कहाँ गायब हो गया।
0: साहब को कमबख्त कह रहे हो?
1: वर्षा भगवान के लिए तुम खामोश रहो, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो।
0: समझ में नहीं आता क्या चक्कर है, सुबह से तूफान मचा रखा है, घर को कबाड़ खाना बना कर रख दिया है।
1: देखो बेकार में गुस्सा मत दिलाओ, मैं पूछता हूँ कि यही तुम्हारी घरदारी है कि वक्त पर कोई चीज मिलती नहीं? 4 बजने को आ गए हैं और
0: तो 4 बजे कौन सी मुसीबत आने वाली है?
1: तुम्हारी शक्ल में तो मुसीबत आ ही गई है, जानती हो कि 11 बजे से ढूंढ रहा हूँ और अब 4 बज रहे हैं।
0: हाँ 4 तो बज रहे हैं, रोज ही बजते हैं, आज कौन सा कमाल हो गया?
1: आज 4 का घंटा बजने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी का आखिरी घंटा बज गया है, तरक्की मारी जाएगी मेरी।
0: क्या जरूर बज रहे हो, घंटा बजे तुम्हारे दुश्मनों का, समझे? ऐसी बातें मत किया करो। और ये तरक्की क्या बात कही थी?
1: अरे अगर प्रेम नहीं मिला तो मेरी तरक्की नहीं हो सकेगी, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं?
0: क्यों सुबह ही सुबह मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, पहेलियां बुझवाए जा रहे हो?
1: ओहो देखो वर्षा, तुम फौरन यहाँ से चली जाओ, फौरन चली जाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और ऊपर से
0: क्या कर दिया है मैंने, क्यों खामखा मेरे पीछे पड़े हो?
1: ओहो समझ में नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं, जाओ बाबा जाओ, मेरे कान मत खाओ, मुझे खुद ही तलाश कर लेने दो।
0: अरे तुम क्या चीज है निगोड़ी मारी जिसे सुबह से किए जा रहे हो?
1: अब क्या बताऊं क्या चीज है, सुबह से घर में छक मार रहा हूं मगर चीज नहीं मिल रही, जिसकी खातिर 3 घंटे लाइन में खड़ा रहा, 1000 पापड़ बेले तब जाके मन की मुराद हासिल हुई, समझी?
0: मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता, बोलूंगी तो कहोगे कि उल्टी सीधी बोलती है।
1: हाँ, जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ तुम उल्टी सीधी ही बोलोगी, तुम्हारे लिए साड़ी लाने वाली बात होती तो समझ में ना आने के बावजूद भी 1 मील दूर से सुन लेती, लेकिन मामला मेरी गुमशुदा चीज का है इसलिए तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता।
0: अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, तुमने साड़ी लाने को कहा था ना, ले आए हो क्या?
1: क्या नहीं क्या नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी काम तो यही है।
0: हाँ हाँ बस यही कहकर टालते रहो हमेशा, मैं बोलूंगी तो बुरा लगेगा।
1: हाँ हाँ बिल्कुल बुरा लगेगा, समझी? दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं, समझ लो कि मैंने तुमसे बातें करके वक्त जाया किया है।
0: वक्त जाया किया पर कर क्या रहे हो?
1: छक मार रहा हूँ।
0: हाँ हाँ मर्दों को इसके अलावा काम ही क्या होता है, दफ्तर में बैठकर यही तो करते हो दिन भर।
1: क्यों जले पर नमक छिड़क रही हो वर्षा, अगर मदद नहीं कर सकती तो चली जाओ, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा।
0: ओफो साफ साफ बताओ ना क्या ढूंढ रहे हो?
1: देखो वर्षा, मेरी एक बहुत ही अहम चीज खो गई है, कल शाम को वो चीज मैंने दीवार पर लाकर रख दी थी।
0: दीवार पर कैसे रख दी थी?
1: मेरा मतलब है कि लटका दी थी दीवार पर, मगर अब वो चीज सामने वाली दीवार पर है ही नहीं।
0: चीज क्या थी? छतरी थी, थर्मस था, कैमरा था या कुछ और?
1: और ही कुछ था, और ही कुछ था, मैं कुछ बता नहीं सकता, बस समझ लो कि एक चीज थी।
0: जबरदस्ती समझ लो कि एक चीज थी, उसका कोई नाम तो होना चाहिए आखिर।
1: नाम मैं नहीं बता सकता।
0: वाह ये भी अच्छी रही, बिना नाम के कैसे ढूंढ सकती हूँ?
1: कह तो दिया कि मैं नाम नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। खैर छोड़ो मैं खुद ही ढूंढ लूंगा।
0: अब बता भी चुको ना, नखरे मत दिखाओ।
1: अगर नाम ही बताना होता तो सुबह से लेके अब तक उसे खुद ही तलाश क्यों करता रहता, तुम्हारी मदद ना ले लेता?
0: तो फिर चीख चीख के आसमान सर पर क्यों उठा लिया था इतनी देर से? नहीं बताते तो ना बताओ।
2: बीबी जी मैं बच्चों को स्कूल से ले आया हूँ।
0: अच्छा अच्छा अभी आती हूँ। सुनो कहीं बच्चों ने ना रख दिया वो चीज?
1: ओफो बच्चे नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, बहुत बड़ी चीज है वो। अच्छा बाबा अब तुम जाओ और मुझे खुद ही सोचने दो।
0: जाती हूँ, तुम्हारे तो मिजाज ही नहीं मिलते।
1: सुनो सुनो जरा रामू को मेरे पास भेज देना।
0: अच्छा तो तुम रामू को बताओगे मगर मुझे नहीं बताओगे, क्यों?
1: क्यों बेवकूफी की बातें करती हो वर्षा, अरे इतना शक्की मिजाज होना अच्छा नहीं है।
0: क्या अच्छा है क्या बुरा है ये मैं खूब जानती हूँ, मुझे पढ़ाओ मत, जरूर कोई ऐसी बात है जो मर्दों को बताने की है, औरतों से छुपाई जा रही है।
1: ओफो ऐसी कोई बात नहीं है वर्षा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बता दूंगा मगर आज नहीं।
0: आज बता दोगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी?
1: यकीनन आ जाएगी, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ।
0: इतने बदगुमान हो मुझसे यही

0: सकते ना मेरे इस घर में।
1: अरे वर्षा देवी बरसो मत, रामू को भेज दो, मैं तुम्हें बता दूंगा। अब जाओ जाओ।
0: भेजती हूँ हाँ, जाकर। लेकिन याद रखना, तुम हर वक्त मेरा दिल जलाते रहते हो।
1: हाँ, चली गई, शुक्र है। शादी के बाद तो असूलन मर्द को बेफिक्र हो जाना चाहिए, मगर यहाँ मामला ही उल्टा है। ये तो किसी बात पर ध्यान ही नहीं देती। अब कहाँ ढूंढूं वो फ्रेम, बसंती रंग वाला बड़ा सा फ्रेम इसी दीवार पर तो लटका हुआ था। ओफो, न जाने जमीन खा गई या आसमान। रामू, ओ रामू।
2: आया मालिक, अभी आया। कहिए जी, क्या बात है?
1: अरे तूने वो फ्रेम देखा है जो दीवार पर लटका हुआ था?
2: फ्रेम? हाँ। रोज ही देखता हूँ मालिक। अच्छा? हाँ। उसमें बजरंग बली की तस्वीर लगी हुई है, मेरी कुटिया में लगा हुआ है सरकार।
1: अरे उसकी बात नहीं कर रहा मैं, तो उस फ्रेम की बात कर रहा हूँ जिसमें हसीना मान जाएगी वाली तस्वीर लगी हुई थी।
2: तो क्या हसीना मान गई सरकार?
1: अरे चुप, ऐसी बातें तेरी बीवी जी भी सुन लेती हैं।
2: हाँ सरकार, ऐसी बात तो वो जरूर सुन लेती हैं। परसों सरकार, मैं थोड़ी सी खीर निकाल रहा था, उन्होंने दूर बैठे बैठे भी चमचे की आवाज सुन ली। बहुत होशियार हैं सरकार, हर बात की खबर रखती हैं और बनी ऐसी रहती हैं जैसे कुछ सुन ही ना रही हो।
1: ये बात तो है, उनके कान बहुत तेज हैं।
2: नहीं सरकार, ऐसा भी नहीं है। मेरी तनख्वाह वाले दिल जब तक 10 मरतबा ना कहूँ सुनती ही नहीं।
1: अरे चुप रह, बदतमीज, जानता नहीं कि वो मेरी धर्म पत्नी है?
2: गलती होगी सरकार। सरकार अब मैं जाऊँ?
1: जाऊँ, बात पूरी हुई नहीं और तुझे जाने की घबराहट सवार हो गई।
2: ये गलती भी हो गई सरकार। कहिए।
1: अरे अरे अहमक, वही फ्रेम वाली बात मैं पूछ रहा हूँ कि तूने देखा है वो फ्रेम?
2: सरकार मैंने तो नहीं देखा, क्या गायब हो गया?
1: हाँ हाँ, क्या मैं यूं ही बकवास कर रहा हूँ?
2: सरकार उसमें तस्वीर ही ऐसी धांसू लगी हुई थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई देखे और ना ले जाए।
1: तमीज नालायक, बेहुदा बातें कर रहा है, चल भाग यहाँ से।
2: अच्छा जी, चला जाता हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ।
1: ओ, समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या ना करूँ, वक्त निकला जा रहा है और फ्रेम कमबख्त मिलता ही नहीं। अरे हाँ, ऊपर जाकर देखता हूँ, शायद वहाँ सुधा या गीत के कमरे में मिल जाए। हर कमरे में देखना ही पड़ेगा। अरे ये मेरा सूट अजीत के कमरे में क्यों लटका हुआ है? शायद इसी के पीछे छुपा हुआ फ्रेम, अभी देखता हूँ।
3: पिताजी, पिताजी।
1: अभी आया बेटी। अरे यहाँ भी नहीं है, चलो अपना सूट तो लेता चलूं। आया बेटी, सूट पहनकर अभी आ रहा हूँ।
3: मिल गया पिताजी, मिल गया।
1: है, मिल गया, अब मिल गया।
0: अरे गुड्डी, आवाज कैसी थी? क्या गिर तो नहीं गई तू?
3: मम्मी, पिताजी का सूट गिर गया है।
0: अरे सूट के गिरने से इतना बड़ा धमाका तो नहीं हो सकता?
3: सूट के अंदर पिताजी भी थे मम्मी।
0: हाँ, मैं मर गई। अरे क्या ऊपर से नीचे गिर गया? मैं अभी आती हूँ।
1: मर गया, अपना सूट लेने गया था। हाय हाय, बड़ी चोट लगी है वर्षा।
0: सूट तो नीचे था, ऊपर कैसे पहुंच गया?
1: मर गया। बात ये थी कि
0: समझ गई, उसी मुए फ्रेम का चक्कर होगा क्यों?
1: उसी फ्रेम को ढूंढ रहा था। हाय, बिडली में बड़ा दर्द।
0: जब तक मुझे छुपाते रहोगे ऐसी चोटें लगती रहेंगी। हाँ
4: लाइए पिताजी, मैं दबा दूँ।
1: नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं ठीक हूँ।
4: पिताजी, क्या हम ये मकान छोड़ रहे हैं?
0: नहीं बेटे, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
1: मगर बेटे, तूने ये क्यों पूछा कि हम ये मकान छोड़ रहे हैं?
4: पिताजी, ये सामान जो इधर उधर पड़ा हुआ है।
0: अरे वाह भाई वाह, देखा तुम्हारी हड़बोंग से बच्चे क्या समझे। तुमने मकान को कबाड़ खाना जो बना रखा है।
3: क्यों पिताजी, आपने सामान इधर उधर क्यों फेंक रखा है?
1: बेटे मैं सुबह से अपनी एक चीज ढूंढ रहा हूँ, तुमने तो नहीं देखी।
4: वाह पिताजी वाह, मुझे बताइए तो सही कि वो चीज है क्या?
1: ओ बेटे, मैं भी बस यूं ही हूँ, वो एक फ्रेम था। फ्रेम देखा है तुमने?
4: ये तो अजीब पहेली है, आप अतः पता तो बताते ही नहीं।

0: अथा पता बेटे उसमें एक औरत की तस्वीर लगी हुई थी और वो वहाँ वहाँ उस दीवार पर लटका हुआ था।
1: वो फ्रेम था वो जिसमें किसी कलमुई फिल्म एक्ट्रेस की तस्वीर लगी हुई थी।
0: वही वही था।
1: शर्म नहीं आती ऐसी बेहुदा तस्वीरें घर में लगाते हुए? अच्छा हुआ वो खो गया।
0: मगर मगर मगर मगर
2: फ्रेम खोया कहाँ है?
0: खोया
2: उसे तो मैंने 2-3 दिन पहले ही देखा था।
0: कहाँ देखा था? कहाँ देखा था?
2: अजीत भैया के कमरे में।
0: अजीत के कमरे में? लेकिन वो फ्रेम उसके कमरे में क्यों? क्यों?
2: ये तो मुझे मालूम नहीं पिताजी, लेकिन भैया उस तस्वीर से बातें कर रहे थे और
3: दिल पर हाथ रखकर गाना गा रहे थे।
0: क्या?
3: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहे।
2: चुप रह, कैसी बुरी बातें कर रही है। इनके दीदों का तो पानी ढल गया है। मालूम था कि घर में जवान लड़का और लड़की भी हैं, फिर भी ऐसी वाहियात तस्वीरें ले आए घर में।
0: अरे भाई तू, मुझे क्या मालूम था कि अजीत उसे ले उड़ेगा और अपने कमरे में जाके लटका देगा।
2: तुम दोनों बाप बेटे एक ही आदत के हो, तुम्हारे पिछले करतूतों का असर उसमें भी आया है।
0: हाँ जी, मैं ही कसूरवार हूँ, इतनी अच्छी तस्वीर लाया था और अब मैं।
2: अच्छा है, खो गई तस्वीर।
0: तुम तो ऐसे ही दिल जलाने वाली बातें करोगी। अब बताओ कहाँ ढूंढूं मैं उस फ्रेम को?
3: अजीत भैया तो कह रहे थे कि वो और बहुत सी चीजों के साथ फ्रेम को कबाड़ी के हाथ बेच देंगे।
0: कबाड़ी के हाथ? बेटी गुड्डी, क्या अजीत वाकई तुमसे ये कह रहा था?
3: हाँ पिताजी, कह तो रहे थे, कहते थे कि तस्वीर निकालूंगा और फ्रेम बेच दूंगा।
0: मर गया, बिल्कुल मर गया। कहीं उस गधे ने सचमुच फ्रेम बेच ना दिया हो।
3: जब सुधा दीदी ने उन्हें डांटा तो कह दिया अच्छा पूरी चीजें बेच दूंगा, फ्रेम भी तस्वीर भी।
0: अरे तो मगर क्यों बेच देगा? क्या उसके बाप का माल है?
2: बाप का माल तो है ही, बेचेगा तो अच्छा ही करेगा। हाँ,
0: मुझे यकीन है कि तुम जैसी औरत जरूर मुझे पागल कर देगी। पागल? वाह। अच्छा मैं कबाड़ी बजा जाता हूँ, हो सकता है अजीत ने नंदू पहलवान के हाथों फ्रेम बेच दिया हो। अगर ऐसा हुआ तो नंदू पहलवान जरूर मुझे वो फ्रेम दे देगा, जरूर दे देगा। नमस्ते नंदू पहलवान।
4: आइए आइए। हाँ। ये सुबह ही सुबह अपनी याद कैसे आ गई बाबूजी?
0: सुबह सुबह कहाँ है पहलवान, 4:30 बज रहे हैं।
4: हाँ, मैं भी ठीक ही कह रही हूँ, अपने लिए तो प्यारे ये सुबह ही का वक्त है।
0: अमा पहलवान, एक बहुत जरूरी काम आन पड़ा है भाई।
4: बोलो भाई बोलो, हम तो खिदमत के लिए तैयार बैठे हुए।
0: बात ये कि मेरा लड़का अजीत पुराने सामान के साथ एक तस्वीर का फ्रेम बेच गया होगा जिसमें 56 छुरी हीरोइन की तस्वीर लगी हुई है।
4: तस्वीर? अरे भगवान कसम बलवंत बाबू, वो तस्वीर तो ऐसी है कि बुड्ढा देखे तो जवान हो जाए।
0: मतलब ये कि वो फ्रेम बेच गया है?
4: अरे फ्रेम को मैं क्या जानूं, मैं तो तस्वीर को जानता हूँ।
0: ओफो, जब तुम तस्वीर को जानते हो तो फ्रेम को भी जानते होगे।
4: अमा यानी जबरदस्ती? तस्वीर तो मुझे पहले दिन से ही पसंद आ गई थी, रिसाले में से फाड़ कर अपनी गद्दी के नीचे रख ली थी। दिखाओ।
0: अरे भाई तस्वीर को मारो गोली, मुझे तो फ्रेम की बात करनी है। फ्रेम की।
4: तो करो, कसम उड़ान झल्ले की तब से अब तक पहेलियां बुझवा रहे।
0: अजीत फ्रेम तो नहीं बेच गया?
4: नहीं तो बिल्कुल नहीं।
0: ओफो, घर का दूसरा कबाड़ तो बेच गया होगा।
4: अजीत बाबू कह रहे थे कि वो सामान बेचकर टिकट लाएंगे।
0: टिकट?
4: जी हाँ, बलवा छेड़ गए हो फिल्म के टिकट। अरे ये 56 जिनी इसी फिल्म में तो काम कर रही है बलवंत बाबू।
0: वो मतलब ये कि वो फ्रेम बेच कर नहीं गया, यही ना?
4: हाँ जी बिल्कुल यही।
0: बस तो फिर वो घर में ही होगा, फ्रेम घर में ही होगा। अब तो एक एक कमरे की तलाशी लेनी होगी।
4: अजी सुनिए तो बाबू जी, सुनिए तो।
0: बिल्कुल वक्त नहीं है सुनने का, 5 बजने वाले हैं भाई। हो सकता है कि वो फ्रेम वर्षा ने कहीं छुपा दिया हो। वर्षा को अपने सिवा कोई दूसरी औरत खूबसूरत लगती नहीं है। 56 छुरी की तस्वीर देखकर जल मरी होगी और छुपा दिया होगा फ्रेम कहीं उसने। अब कहां से देखना शुरू करूं? ताज्जुब है, एक मामूली सा फ्रेम नहीं मिल पा रहा। अजीत सुधा ने तो देखा था, गुड्डी कह रही है, लेकिन अब वो दोनों तो कॉलेज में होंगे, उनसे किस तरह मालूम किया जाए। ओफो, वक्त बीता जा रहा है और फ्रेम का कुछ पता नहीं मिल रहा। रामू से फिर पूछता हूँ। रामू।
5: आया सरकार, अभी आया। मेरे सामने जी, कहिए मालिक।
0: अमा यार, वो फ्रेम तलाश करवा न जाने उसे जमीन निकल गई, आसमान
5: ही निकल गया होगा सरकार। ऐसी धांसू लड़कियां जैसी कि उस तस्वीर में है, ज्यादा दिन जमीन पर नहीं रहती। जहाँ किसी

0: लड़की की नजर लगी और ऊपर चली गई।
1: मुझे बकवास करने की आदत हो गई है। अरे मैं फेम की बात कर रहा हूँ, तू लड़कियों की।
0: अब क्या करूँ मालिक, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। जादू का फ्रेम हो गया के शूकर का गायब हो गया।
1: ओ वक्त निकल जाएगा और मैं हाथ मलता रह जाऊंगा।
0: तो आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ।
1: दफा हो जा मेरे सामने से, खबरदार जो तूने मुझे अपना मुंह दिखाया।
0: जाते वक्त मालिक मेरी पीठ ही दिखाई देगी आपको।
2: अजी मैंने कहा मिल गई वो चीज जिसे तुम ढूंढ रहे थे।
1: कहाँ मिल गई? जिस घर में तुम हो भला, वहाँ एक बार चीज खोकर दोबारा थोड़ी मिला करती है।
2: फिर दिल जलाने की बात की ना तुमने।
1: तो फिर और क्या करूँ, तुम तो खुश होगी कि मेरी कीमती चीज खो गई। अब तो पड़ गई तुम्हारे दिल में ठंडक।
2: मेंढक? हाय राम, क्या बाहर मेंढक लाने गए थे?
1: ओफो मैं पागल हो जाऊंगा पागल।
2: देखो जी मुझे तो बहुत घिन आती है, बड़ा अजीब सा जानवर है ये।
1: ओहो सच कहता हूँ, सिर फोड़ लूंगा अपना। मैंने ठंडक कहा था या मेंढक? तुम जानबूझकर मेरा मजाक उड़ाती हो।
2: मैं क्यों उड़ाने लगी मजाक? देख रही हूँ कि सफेद से मेंढक की तरह उछलते कूदते फिर रहे हो।
1: चलो मैं मेंढक ही सही। बस
2: नाराज हो गए?
1: नहीं तो बहुत खुश हूँ।
2: जब तुम नाराज होते हो ना तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
1: हरगिज नहीं लाऊंगा साड़ी, हरगिज नहीं लाऊंगा साड़ी, ये चापलूसी रहने दो। हाँ अब मेंढकी को भी जुकाम हो रहा है।
2: देखो जी तुमसे अगर प्यार से भी बोलो तो भी काटने को दौड़ते हो।
1: वाह वाह वाह, यानी कि मैं कुत्ता होती व्रता स्त्री जो हो।
2: सच तुम्हारे गुस्से पे फिर से प्यार आने लगा है।
1: ओ भगवान मैं क्या करूं क्या करूं। वर्षा देखो वर्षा, जरा मेरे करीब आओ, भगवान के लिए मेरी बात गौर से सुन लो।
2: आ गई। हाँ बोलो क्या बात है?
1: बात ये है कि ये
2: क्या चीज खो गई है तुम्हारी? मैं तो सुबह से ही पूछ रही हूँ, तुम बताते ही नहीं।
1: मैं बताता हूँ।
2: पर्स तो नहीं खो गया तुम्हारा?
1: अरे नहीं पर्स नहीं खोया, पर्स खो जाता तो इतना अफसोस ना होता, क्योंकि उसमें पैसे बहुत कम होते हैं।
2: पैसे नहीं होते तो नोट तो जरूर होते हैं।
1: नोट नहीं, तुम्हारी तस्वीर होती है उसमें, और वो भी ये याद दिलाने के लिए कि मुझे ज्यादा खर्च नहीं करना है।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बताओ कि क्या चीज खोई है?
1: बता तो दूं मगर तुम्हारी नाराजगी का डर है कि
2: मैं बोला क्यों नाराज होने लगी, कहो तो सही।
1: बात ये वर्षा की, तुम जरूर नाराज हो जाओगी।
2: नहीं होंगी नहीं होंगी, कहो तो लिख कर दे दूं।
1: ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वैसे बात ये है कि वो हमारे साहब है ना, बस सारी खता उन्हीं की है, उन्होंने ही जिद की।
2: हाँ जी तुम तो बहुत ही मासूम हो, राम जी की गाय हो, जिद तो उन्होंने की थी।
1: यकीन मानो मैं सच कह रहा हूँ।
2: क्या जिद की थी ये तो बताओ।
1: अरे उन्हीं को शौक उछला करता है, उन्होंने मुझे 15 रुपए दे दिए ताकि
2: बोलोगे भी ये ताकि ताकि ही करते जाओगे।
1: यकीन मानो रुपए मैंने खर्च नहीं किए है, वही मेरे सिर हो रहे थे, उन्होंने ही रुपए दिए थे।
2: तुम तो ऐसे घबरा गए हो जैसे रुपए तुमने ही खर्च किए हो। खैर लेकिन किस बात के लिए रुपया दिए थे?
1: उन्होंने कहा था कि टिकट।
2: किस चीज के टिकट?
1: ठुमरी
2: गाने लगे, गाने की क्या सूझी तुमको?
1: ठुमरी नहीं, फिल्म का नाम है बलमा छेड़ गए हो रे।
2: अब समझी, लेकिन टिकटों का फ्रेम से क्या ताल्लुक है?
1: ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। मैंने वो टिकट उस तस्वीर के फ्रेम के अंदर रख दिए कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, और मैं वक्त पर टिकट निकाल लूंगा, और मुझे क्या मालूम कि आज की जनरेशन को वो वाहियात तस्वीर इतनी पसंद आ जाएगी कि वो फ्रेम ही गायब कर देगी।
2: लेकिन वो फ्रेम गायब नहीं हुआ है।
1: गायब नहीं हुआ? तू फिर कहाँ गया?
2: मैंने वो फ्रेम बेच दिया।
1: बेच दिया?
2: अच्छा नहीं लगता था, ऐसी बुरी तस्वीरें बच्चों के घर में रहनी भी नहीं चाहिए थी।
1: क्या नंदू कबाड़ी को बेच दिया? उसके पास तो मैं होकर आया हूँ, वहाँ तो नहीं है।
2: पुराने माल की आवाज लगाने वाला एक कबाड़ी घर पर आता है ना, उसे दे डाला।
1: ओफो मैं क्या करूँ, क्या नाम उस कबाड़ी का?
2: मुझे तो मालूम नहीं है। अजीत और सुधा जब सुबह कॉलेज जा रहे थे ना, कबाड़ी ने आवाज लगाई। मैंने अजीत से कहा कि वो जाते वक्त वो फ्रेम भी उतार कर कबाड़ी को देता जाए, उसने दे दिया होगा।
1: क्या मजे से कह रही हो? अरे अब ना तो फ्रेम वापस आ सकेगा ना टिकट। कबाड़ी को क्या मालूम कि फ्रेम में टिकट रखे हुए हैं, और अगर उसे मालूम हो भी गया तो फिल्म वो देखेगा और मैं टापता रह जाऊंगा। हाँ दुख सहे भी फाख्ता और कौ अंडे खाए।
2: अंडे कैसे खा लेगा वो, चुरा कर थोड़ी ले गया है, अजीत ने बेचा है उसके हाथ।
1: ओहो तुम चुप रहो, ज्यादा जीना जलाओ। वो दोनों भी अभी तक कॉलेज से नहीं आए, वरना कुछ पता चलता।
2: सुधा तो 4 बजे आ जाती है, ना जाने क्या बात है, आज ही देर हो गई है।
1: हाँ जी मेरी किस्मत ही ऐसी है, इसमें देर भी है और अंधेर भी है। 6:15 बज रहे हैं, अब तो कहीं आना जाना भी बेकार है, अब तो टिकटों से

0: हाँ दो ही लेना चाहिए।
1: तुम हिम्मत हारोगे तो कुछ भी ना होगा, जाकर देखो तो सही।
0: अरे क्या कहाँ देखूं, 15 मिनट में किस तरह टिकट ढूंढूंगा, कैसे सिनेमा पहुंचूंगा, बस समझ लो कि टिकट नहीं मिलने वाले हैं अब। अरे शायद वो कबाड़ी वापस आ गया।
1: अरे भाई कॉल बेल नहीं बजी है, तुम्हारे कान बज रहे हैं, दरवाजे की घंटी नहीं बल्कि फोन की घंटी बजी है।
0: फोन की घंटी है तो शायद कबाड़ी का फोन होगा।
1: कबाड़ी को क्या जरूरत पड़ी है फोन करने की, जाओ जाकर फोन सुन लो, तुम्हारे उन साहब का होगा।
0: उन्हीं का लगता है, उन्हीं का लगता है, लेकिन जब मैं उनसे कैसे बातें करूंगा, जब वो इंतजार करते करते थक गए होंगे तो मजबूरन फोन किया होगा। चलो जाकर तुम उनसे बात कर लो, अगर मुझे पूछे ना कहते ना बाहर गए हैं।
1: जी नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकती, तुम ही सुनो जाकर, मैं तो रसोई में जा रही हूँ।
2: अच्छा बाबा मैं ही जाता हूँ, मेरी खातिर थोड़ा सा झूठ बोल देती तो क्या हो जाता है।
0: हेलो सर, सर मैं बलवंत बोल रहा हूँ।
3: हेलो हेलो पिताजी, ये मैं हूँ सुधा।
0: सुधा हाँ बेटी बोलो बोलो, क्या बात है, बहुत देर कर दी।
3: और भी देर हो जाएगी पिताजी, बात ये है कि मैं जरा देर से घर आऊंगी।
0: क्यों क्यों क्यों क्यों, बात क्या है?
3: पिताजी बड़े मन की बात हुई, मम्मी ने मुझे एक फ्रेम दिया था कि मैं उसे अजीत भैया को दे
0: दूँ। फ्रेम?
3: मम्मी ने कहा था अजीत भैया कबाड़ी को दे देंगे।
0: यानी कि वो फ्रेम कहाँ गया? वो फ्रेम
3: सुनिए तो सही, भैया ने शायद अपने किसी दोस्त के साथ फिल्म देखने का प्रोग्राम बना रखा था, उन्होंने बैल्कनी के दो टिकट एडवांस कर रखे थे, और शायद आपकी और मम्मी की डर से वो टिकट उस फ्रेम के अंदर छुपा कर रख दिए थे।
0: अच्छा अच्छा,
3: फिर ये कि वो टिकट मैंने निकाल ली।
0: तुमने टिकट निकाल ली?
3: हाँ भैया को मत बताइएगा, बड़ा मजा आएगा,
0: मुझे
3: बेवकूफ बना दिया।
1: क्या है, किसका फोन है जी?
0: तुम खामोश रहो जी।
3: मैं खामोश रहूँ?
0: नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे नहीं कह रहा। फिर वो टिकट कहाँ है?

0: और अब वो साधना के साथ फिल्म देख रही है।
1: अफसोस, इतनी अच्छी फिल्म से तुम महरूम रह गए। और छुपा कर रखो मुझसे टिकटें, यही सजा थी तुम्हारी।
0: चुप रहो जी, खामोखा दिल जला रही हो।
1: अब तो एक ही तरीका है, अच्छे शोहर बनो और कल की फिल्म के लिए एडवांस टिकट ले आओ, मेरे और अपने लिए। क्यों, कितना आसान तरीका है।
0: हाँ जी, बहुत आसान तरीका है।
1: हाँ।
0: अब तो तुम्हें मुझे जलाने के लिए बहाना हाथ जो आ गया है।
1: हाँ।
0: ठीक है, अब तो जाना ही पड़ेगा। ऑफिस के साधना सही, घर की मालकिन ही सही, तुम्हारे साथ फिल्म देखने में कुछ और ही लुत्फ आएगा।

तलाश। अभी आप सुन रहे थे जनाब सिराज अनवर का तहरीर करदा ये मिजाही ड्रामा। तरतीबो पेशकश प्रेम वोरा की थी, मुआविन थे सरफराज अहमद और हिस्सा लेने वाले फनकार थे सोमनाथ नागर, कमला कुमारी चोपड़ा, सत्यपाल रहलन। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशा जारी है। लीजिए सुनिए फरमाइश फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिले इरशाद। सभी सामईन को नईम का आदाब। उशाने खामोशी के बहारे हैं मुंतजिर, वो रंगे गुफ्तगु के गुलिस्तां खिला दिया।

और ये है तामील इशाद प्रोग्राम का अगला नगमा। मखमली आवाज यहाँ भी तलत साहब की है और साथ में है लता मंगेशकर, फिल्म है स्कूल मास्टर, वसंत देसाई की मौसीकी और नगमा निगार है कवि प्रदीप। सुनने के ख्वाहिशमंद आप तमाम सामीन, श्री कृष्ण बाठे, अमूल्य बाठे और साथ में है उनके संदीप बाठे, धांडी नांदूरा महाराष्ट्र से अपनी फरमाइश हमें साल की है। डॉक्टर सुरेश जाधव, नीता जाधव, सुनर प्रसाद जाधव की फरमाइश है नेहरू चौक पैठण से। और आप हैं अभिजीत गोहनकर राही, सरिता गोहनकर, अर्जुन गोहनकर डुकू, मेहनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। मनोज सेन साथ में उनके हैं दीपक सेन कार्तिक और पूनम सेन सिटी सेंटर खंडवा से आपकी फरमाइश हमें मौसूल हुई। राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश हैं छत्रपति संभाजी नगर से। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं सुशांत प्रिया झा, मास्टर निवेश कुमार, लड्डू कुमारी, टिम्बर मार्केट, कीर्ति नगर, नई दिल्ली से। और इसी नगमे की फरमाइश की है नई दिल्ली के टैगोर गार्डन से इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, साथ में रविन्द्र सिंह छाबड़ा। और आप हैं सदर बाजार कुरावली से हमारे सामीन अनिल कुमार वर्मा, मायदेव वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, रेखा कामले, राखी कामले और आनंद कुमार कामले की फरमाइश है गौरी नगर इंदौर से। अगला नगमा आपकी नजर पे करते हैं, आप है सुब्रत चौधरी कोलकाता से। और अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत की फरमाइश पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से है। अगले नगमे को आप भी सुनना चाहते हैं गजानन येले, नवदीप येले, अशोक येले, सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, साथ में है वंश बत्ता कनेरा मोहल्ला पटियाला से। ये फरमाइश आई है अपूर्व सिंह, अनुपम कुमारी, राकेश कुमार की जमशेदपुर से। इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर हैं चंडीगढ़ सिटी से बिमला अनेजा और साथ में उनके सतीश अनेजा हमेशा की तरह, वरुण जवलका से महेंद्र सरकटे, विजय सरकटे, साथ में मिलिंद सरकटे, नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद हैं फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से। और ही फरमाइश आई है मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा की पदमपुर श्री गंगानगर से। आप हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा और कुलदीप सिंह और उनके कुछ और साथी, करणवीर हाउस भूचो कैचिया बटिंडा पंजाब से। अगला मेल रिपीट हो गया, इसको साइडलाइन कर देते हैं जनाब। नर्मदा पाक मंगलबेड़ा महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं अगले नगमे को मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल, साथ में नदीम पटेल और भाटापारा से हैं डॉक्टर बसंत भिरगु, मोतीलाल यादव, साथ में बच कमल। और इसी नगमे को सुनने के मुतमन्नी हैं देवगांव तहसील पूना महाराष्ट्र से सदाशिव थोराट, कविता थोराट और श्रेया थोराट। और ये फरमाइश आई है सहारनपुर से सरिता जाधव, पथिक जाधव और अजय देव जाधव की, नए नाम है कुछ, खुशामदीद कहते हैं जनाब। अब अगर ये सामीन हमारे नए हैं तो आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा ऐसी उम्मीद करते हैं। वेद मिट्टा, अलका मिट्टा की फरमाइश है गांव नाईवाला हनुमानगढ़ से। और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, संप्रीत पंचोलिया, घंटागर। नहीं, ये तो मुझे लगता है पहला हमने आज का ईमेल जो है वो यही शामिल हुआ था, मादर चाहते हैं दिगर सामीन से। और ये फरमाइश मिल मिला है जफर मौजम शेख, फलक तबस्सुम शेख और बेबी अलिस्बा शेख का, रघुवीर नगर दिल्ली से हैं। संजय साहू और साथ में उनके सुजाता, शशांक, पोटियाकला दुर्ग से। इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर हैं रिग्नी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, झज्जर हरियाणा से आपकी फरमाइश मिली है। रुकनुद्दीन मंठार, शबीर बनट्टी, आसिफ इकबाल ने कर्नाटक के गुलबर्गा से। और ये फरमाइश फाजिल का पंजाब से मौसूली, भूषण खेड़ा, विश्व खेड़ा, विशाल खेड़ा की। अगला ईमेल है उन दोस्तों का जिनके नाम हो गए शामिल, नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, सौभाग्यवती उषा पाटिल और प्रथमेश पाटिल और अहले खाना। और ये फरमाइश आई है पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चौक, अश्विनी चौक और गोविंद चुग की। राशिद हुसैन अंसारी, साथ में उनके हैं नसरी अंसारी, नौरी अंसारी, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से। और अगला ईमेल है अस्तूपरा जिला मऊ से मदर अली अंसारी, रजा बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी का। और काफी सारे ईमेल शामिल हो गए, अब है नगमे की बारी।

और अब आपको सुनवाते हैं तलत महमूद के साथ आशा भोसले को, और फिल्म है सिपह सैलार, इकबाल की है मौसिकी, और जहां तक नगमा निगार की बात है वो है फारूक कैसर। तो आइए नगमा सुनते हैं, उसके बाद नाम शामिल कर लिए जाएंगे।

ये पेशकश है तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाजों में दो गाना, फिल्म है सुहागन और मौसीकी मदन मोहन की। इन दोनों नाखों की फरमाइशें शामिल कर लेते हैं जनाब, कुछ वक्त है हमारे पास, नाखों भी आपको सुनवाना है। और फरमाइशों की जहां तक बात है तो एक तवील फहरिस्त सी बन गई है। अल्ताफ उजे सैफुल्ला सबाह तुझे सांगली जत शहर से, अगला ईमेल है दिग्दर्शन और कविता गौड़ का मेरठ कैंट से, और जो नाखवा सुनना चाहता वो हम आपको सुनवा चुके हैं। मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा, और बुरली मुंबई से नवाब खान इशरत जहां मास्टर अजहर खान और अहले खाना, तो नाम कुछ बाद में शामिल कर लिए जाएंगे, फिलहाल नखमा आपको सुनवा देते हैं।

0: सुहागन फिल्म के इस नगमे को कलमबंद किया था हसद जयपुरी ने। तामिल शायद प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से अपने मेजबान नेम के साथ। दोस्तों, ये प्रोग्राम अभी जारी है। आइए पहले सुनते हैं खबरें बरे सगीर से का उर्दू न्यूज बुलेटिन, और उसके बाद सिलसिला यकीनन जारी रहेगा आपके पसंदीदा प्रोग्राम का।
1: ये आकाशवाणी है, खबरें बरे सगीर से मोहम्मद आजम खान के साथ। सुरेंद्र अधिकारी ने मगरब बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आले की हैसियत से हलफ लिया। 5 अरकान असेंबली ने भी वजीर काबीना वजीर के तौर पर हलफ लिया। तमिलनाडु में टीवीके पार्टी के सरबरा जोसेफ विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों के हिमात के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वो कल वजीर आले के ओहदे का हलफ लेंगे। भारत ने MIRV निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिजाइल की कामयाब आजमाइश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दिन भर के दौरे में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुबैया मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। और तीरंदाजी में शंघाई में वर्ल्ड कप स्टेज 2 में मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में भारत के साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल में बीजेपी कानून साज पार्टी

इस दर्द की दवा तो आज तक कोई नहीं जान सका, क्योंकि मोहब्बत है ही ऐसी बीमारी। गजल थी मिर्जा गालिब साहब की और मौसीकी गुलाम मोहम्मद की। सुनना चाहते थे पश्चिमी दिल्ली से नीरज अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, डीके अलवी और ये फरमाइश आई जामानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल और दीपक की। और आप हैं चंपालाल दुबे, अनंत और दर्शित देव की नगर भोपाल से। रश्मि जरना और भारत कुमार की फरमाइश थी राजकोट गुजरात से और ये फरमाइश ईमेल मौसूल हुआ। साईनगर आरबी महाराष्ट्र से नरेंद्र मिर्गे, प्रियदर्शनी मिर्गे, डॉक्टर प्रियंका काल पांडे का। और आप हैं हीरामन शिंदे, साथ में शीला देवी शिंदे और सिद्धार्थ और अहले खाना। इसी नगमे को सुन रहे थे वैशाली शैलेश गोहनकर, सुमित गोहनकर, ध्वनि गोहनकर, परियाकर हाइट्स बहादुरा नागपुर से, मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाज शेख की फरमाइश थी गंज टंडवारा से। और आप हैं नाज मंजिल महसौल, सीतामणि बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशात अकरम और साथ में रुबीना वसीम। हिना साबरी आइजल इमाम, मोहम्मद हसन इमाम की फरमाइश मौसूली बिशनपुर गिरडी झारखंड से। और आप हैं नासिर शेख, ये मुझे लगता है ईमेल शायद पहले शामिल हो चुका है। विनोद मोड़त, नेहा जैन, दीपक मोड़त, बोरखेड़ा जिला उज्जैन से सुनना चाहते थे इस नगमे को। खान जी पीर उदयपुर से फरमाइश की जब्बार मोहम्मद, अजीब खान और अशफ खान ने। और आप हैं प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और सुजाता, मेन रोड तेलहारा से। अररिया कॉलेज हैत कॉलोनी बिहार से हैं फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और अहले खाना। ये फरमाइश ईमेल मौसूल हुआ मरखेड़ से सिराज खान, शबाना बेगम और फरदीन खान का। शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, उत्कर्ष चौहान, बाबा कुटीर रायगढ़ से शामिल हो रहे हैं तामिल शाद प्रोग्राम में ईमेल के जरिए। गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर की फरमाइश मौसूली रामरतन टॉकीज कुंडलवाड़ी से। और आप हैं पोषण बंछोर, चंद्र किरण बंछोर और छाया बंछोर, गांव पहरा दुर्ग छत्तीसगढ़ से। तीन चरौदा भिलाई छत्तीसगढ़ से फरमाइश मिली डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी की। गगनदीप थांडी, साथ में तृप्ता थांडी और बेबी वामिका। टोरवाल नवाशहर पंजाब से इसी नगमे को सुनना चाहते थे सबिया खानम, फरीदा बानो और रईसा खातून चमनपुर उदयपुर से। अब बारी है अगले नगमे की जनाब, और ये नगमा है लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में। मौसी फिल्म से हमने इंतखाब किया इसका। वसंत देसाई की मौसीकी और नगमा निगार हैं।

दोस्तों इसी नगमे को पसंद किया गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा से शेख शमा परवीन एम फारूक शेख बेबी मुस्कान ने, और आमिर खुसर रोड गंज डुंडवारा से डॉक्टर दबीरुल हसन बेगम शबनम अनवार, साथ में भुवन प्रकाश गौतम, इंदिरा विहार दिल्ली सिंह बेबी अंसारी निशा परवीन और डब्लू अंसारी, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांडा, मनविंदर सिंह पांडा, जी एस रामगढ़िया, इसाक मोहम्मद, साथ में उनके हैं खदीजा बेगम और मोहम्मद अल्ताफ, मुंगेली चोड़ी लाइन छत्तीसगढ़ से, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी और साथ में देवश्री और मोहम्मद अनीस मोहाल, मोहम्मद दानिश मोहाल, मोहम्मद रिजवान मोहाल, बादल फैर शेगांव महाराष्ट्र से।

आप हैं बस समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह और अनामिका सिंह, जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनीश देवी और भुवनेश्वरी देवी हैं, लॉर्ड अड्डा बागपत से, शंभुदयाल खटक, विमला देवी, साथ में योगेश कुमार जाखोद से, राजकुमार रिवाड, रेवाड़ चंद्रकला रिवाड़ है साधु शहर राजस्थान से, और ये फरमाइश मौसूल हुई है झुमरी तलैया से महेंद्र चौरसिया की, और इसी नगमे को एंजॉय कर रहे हैं वो दोस्त जो शामिल हो चुके हैं। ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से, बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति हैं बटेना पाटन से, और ये फरमाइश ईमेल मौसूल है कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, गीता नायक और निहारिका सुशांत नायक का। जुम्मन नगर खंडवा से हैं बच्चे अल्तमश, समीना और मुदस्सर और सदन मंदूरकर, साथ में सुशीला देवी मंदूरकर, दापकी रोड अकोला से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिराई मिराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं, और ये फरमाइश मिली है बरगद बेल हुबली कर्नाटक से शफी मुल्ला जी, इदरीस मुल्ला जी और रफीक मुल्ला जी की, और आप हैं काशी निवास बंगाली व्यंजन नागपुर से, भारती प्रकाश लंबाड़े, वैष्णवी हर्षल लंबाड़े, साथ में जहानवी। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, साथ में कल्पित चौहान, मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर एमपी से। और अब प्रोग्राम का अगला नकमा आपकी नजर करते हैं, तलत महमूद के साथ में है लता मंगेशकर, फिल्म है छोटे नवाब, छोटे बाबू माफ कीजिएगा, इंदिवर के बोल मौसीकी मदन मोहन की।

बेशक ये रात और हंसी हो जाएगी, कुछ और लोग शामिल हो जाएंगे। राजधानी रायपुर से निर्लू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और साथ में बिट्टू कुमार, नाथुराम शर्मा, ललित शर्मा, इंदिरा शर्मा है मंडी हरजी राम मलोट से, और मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से भूपेंद्र सिंह हंस, अमरजीत कौर हंस और साथ में अगमवीर सिंह हंस, राजू टुटेजा, खुशदिल, उर्मिला टुटेजा, शिव सेठी करणपुरी, गोविंदगढ़ माझीवाला, श्री करणपुर राजस्थान से शामिल हो रहे हैं, और निसार सलमानी, साथ में उनके नौशाद सलमानी, बीबी आलिया धनौरी तेलीवाला से, सल्लर पहलगाम कश्मीर से हैं पीरजादा मिराजुद्दीन नजमुद्दीन और साथ में कैसरुद्दीन, फहीम मंसूरी, फातिमा मंसूरी बांदा यूपी से, फहीम मंसूरी आदि साहब दरअसल इनका जो निक नेम है, बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जेबुन्निसा बेगम, और अगला ईमेल रिपीट है इसको करते हैं साइड लाइन, यवतमाल से अनिल उषा बुरांडे, अनुश्री धनश्री बुरांडे, और इम्तियाज इमाम आतिश, ताहिरा परवीन आतिश, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा है बिशनपुर गिरडी झारखंड से, अनिल मोहन, उषा मोहन टेलू नायक पहाड़गंज के मुल्तानी ढांडा से हैं, और व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, साथ में उनके अंजू श्रीवास्तव, और कादरगंज रोड गंज डंडवार से शामिल हो रहे हैं शादाब शमशाद, अंदीप खानम, सारा फातिमा शेख, अमरावती से राधा रानी और किशोर गुप्ता, मंगलगेट मलकापुर से रामेश्वर तलेकर, वंदना तलेकर, दिव्या हर्ष तलेकर, और नाभा पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव और ज्योति रानी, और जाते आते नखमा भी आपकी नजर कर देते हैं, बड़ी फरमाइश है इस नखमे की, बारादरी फिल्म का नखमा है, नाशाद की है मौसीकी और खुमार अबर बंकवी का लिखा हुआ नखमा है आप सबकी फरमाइश पर। मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद अदा तबस्सुम।

पश्चिम थोक गंज डिंडवार से मुनव्वर लल्ला पीरजादा नसीर मिर्जा अरबाज शहबाज और ये फरमाइश मेल मिला है। सरिता चौरसिया, सुमित चौरसिया और वीर चौरसिया का बालकेश्वर कॉलोनी आगरा यूपी से। सुखिंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना कृष्णा पार्क दिल्ली से और लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी हैं गांव करेली पुरानी मस्जिद बरेली से। सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अहले खाना हैं पैजौनिया जालौन से। और ये फरमाइशी मेल मौसूल हुआ है नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी और अहले खाना का। और आप हैं मिशिलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विश्वकर्मा, चेतन विश्वकर्मा तख्तपुर से, फारूक अली खान, फैजी फराज गुन्नौर से हैं। और ये फरमाइशी मेल मौसूल हुआ है रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही और बेगम रुखसार और अहले खाना का। जॉन डिकैस्टो, रोजी डिकैस्टो, विलिस हैं जनकपुरी सहारनपुर से। और सुनील पाठक, कमल पाठक, गव्य मल्होत्रा नारकली बाजार जगराओं से हैं। शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा अदनान हैं गंज डुंडवारा से। गंगा बेन वानकर, प्रीति और जूली हैं जमथड़ा भुज कच्छ से। और सिंधौली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी, इमरान शेख और अहले खाना। और बबलू ठेकेदार शेख वजीर, शेख सुहेल की फरमाइश है मोटाला बाजार से। और यह है इस प्रोग्राम का आखिरी ईमेल, अमरावती महाराष्ट्र, प्रवीण हागोने, योगिता हागोने और प्रियाली कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से। और ये थी इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं निशित कुमार और आज हम चर्चा करेंगे भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का बढ़ता दायरा। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर देवाशीष प्रूस्ती, एडिशनल सेक्रेटरी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज वित्त मंत्रालय, और मिस सुमित कौर कपूर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PFRDA। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद।
2: हम शुरू करना चाहेंगे देवाशीष जी आपसे। 11 वर्ष हो रहे हैं तीन योजनाओं को, जो जन सुरक्षा योजनाएं हैं, जिनमें पहला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। इसे आप कैसे देखते हैं, भारत के सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को यह कैसे मजबूत कर रहा है, और पिछले 11 वर्ष में इसकी यात्रा के बारे में थोड़ा बताएं, और इसकी शुरुआत कैसे और क्यों हुई थी?
4: आज 11वां सालगिरह है। दो महत्वपूर्ण जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसी तारीख को 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई थी, प्रधानमंत्री जन जीवन बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये दोनों एक्चुअली एक कम लागत वाला जन सुरक्षा योजना है, जो कि सुरक्षा कवच बनाकर भारत के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को काफी मजबूत किया है। इन योजनाओं में जो हमारे पात्र ग्राहक, विशेष रूप से जो गरीब और जो दूर दराज क्षेत्र में जो वंचित ग्राहक है, उन सभी को 2 लाख रुपए का ये आवश्यक जीवन बीमा कवर और दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करते हैं और उनके वित्तीय समावेशन को ही बढ़ावा देते हैं। जैसे मैंने बताया कि आम नागरिकों के जीवन में कोई अगर ऐसे अप्रत्याशित दुर्घटना हो जाता है तो उनको समय पर ये वित्तीय सहायता सुनिश्चित होती है। इन योजनाओं की एक बड़ी उपलब्धि इनकी सरलता, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, कम प्रीमियम और वित्तीय समावेशन पहलों के तहत बैंकों की जो तमाम शाखाएं हैं और पोस्ट ऑफिस की तमाम शाखाएं हैं, ये सभी इनके डिस्ट्रीब्यूशन में जुड़े हुए हैं। तो यही एक

0: बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जो कि सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है और वित्तीय जागरूकता को भी बढ़ाया देता है। और सबसे बड़ी बात है कि औपचारिक जो वित्तीय प्रणालियां हैं, जो हमारे फॉर्मल प्रोसेसेस हैं, उनमें नागरिकों के विश्वास को ये मजबूत किया है। मैं कुछ आंकड़े सामने रखना चाहूंगा। अब तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लगभग 27 करोड़ लोग नामांकित हुए हैं और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 58 करोड़ लोग नामांकित हुए हैं और इसके अलावा शुरुआत से अब तक पीएमजेजेबीवाई के तहत लगभग 10,60,000 लाभार्थियों को 21,200 करोड़ रुपए के दावे का भुगतान किया गया है और इसी प्रकार पीएमएसबीवाई में 1,80,000 लाभार्थियों को लगभग 3600 करोड़ रुपए का दावे का भुगतान किया गया है। और ये जो क्लेम भुगतान किया गया है, इसकी जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो होती है वो लगभग 99.5% से ऊपर है। इसका मतलब है कि अगर 100 दावे कंपनी के पास आते हैं तो उनमें से 99.5 दावों का उन्होंने भुगतान कर दिया है। यही एक विश्वास की कड़ी को आगे बढ़ाया है।
1: अब इसके पूरे अगर हम आपके पास आए और बात करें अटल पेंशन योजना की, तो ये योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत महत्वपूर्ण अगर हम इसे कह सकें। फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जहां तक बात है, जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा एक तबका है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, जिनके पास एक रेगुलर नौकरी नहीं है या सरकारी नौकरी नहीं है या जिसे कहते हैं अनऑर्गेनाइज वे में वो काम करते हैं, तो उनके लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक उतना ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा बन जाता है, खास करके जब वो 60 की उम्र को पार करते हैं। तो इसके मद्देनजर अटल पेंशन योजना, जहां तक हम समझते हैं, इसने काफी हद तक इस कंसर्न को एड्रेस करने में मदद की है और आंकड़े बताते हैं कि 9 करोड़ से भी अधिक लोगों ने नामांकन करवाया है इस योजना में। तो आप इस बढ़ती ग्रोइंग पार्टिसिपेशन जो है इस योजना में, इसे कैसे आप देखती हैं और कैसे इस योजना की जो शुरुआत हुई और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी लोगों में, ये काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, कैसे देखती हैं आप इसे?
2: हमारे यहाँ 85% लोग जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं उनकी रेगुलर इनकम तो होती नहीं है। जब उनके पास काम हुआ तो इनकम आ गई और जब काम नहीं है तो इनकम नहीं है और वो अपने आज के खर्चे के बारे में सोचते हैं, दूर के बारे में सोच नहीं पाते।
1: जी जी बिल्कुल।
2: तो इस कारण से वो अपने 60 के बाद का तो वो बिल्कुल प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। तो इस दिशा में जब हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हमारी सोसाइटी जो है, जो आज यंग है, आज युवा है, पर धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ बढ़ेगी ये पीढ़ी, और आज जो 10% हमारी जो जनसंख्या है वो सीनियर सिटीजन या कहिए कि 60 से ऊपर है, परंतु 2050 आते आते तक ये 30% हो जाएगी और हम करीब 30 करोड़ लोग ऐसे और जोड़ देंगे जो 60 को पार कर जाएंगे। और अगर इन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए या अपने वृद्धावस्था के लिए अगर कोई प्लानिंग नहीं की तो इनके पास इनकम का या आय का कोई भी स्रोत नहीं होगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए पेंशन जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स का या फिर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का ही एक हक नहीं है, बल्कि ये सबके लिए होना चाहिए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 मई 2015 अटल पेंशन योजना का जो है अनाउंसमेंट किया था। और आप देखिए कि इसी में जब पेंशन का कॉन्सेप्ट भी लोगों को नहीं मालूम था कि उनके लिए भी रिटायरमेंट इनकम कुछ हो सकती है, ये उनको नहीं मालूम था, परंतु इसी दौरान 9,06,00,000 लोग अब अटल पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं। और इसका कारण ये है कि ये बहुत ही सरल योजना है। उनको सिर्फ बताया जाता है कि अगर आप 18 साल के हैं तो आपने अगर सिर्फ 42 रुपए प्रति माह जोड़ दिए 60 साल तक तो आपको 1,000 रुपए इनकम आपको मिलने लगेगी, आपके बाद आपके पति या पत्नी को मिलने लगेगी, और जितना पैसा आपका इकट्ठा हुआ है पति पत्नी के गुजर जाने के बाद आपके नामिती को भी मिलने लगेगी। सो ये जो तीन बड़े बड़े उनको जो लाभ मिलते हैं सिर्फ 42 रुपए अगर आप 18 साल के हैं जुटाने पर, तो उनको भी समझ में आता है कि हम कहीं ना कहीं अपने लिए एक बुढ़ापे का सहारा इकट्ठा कर रहे हैं। कहा जाता है कि आजकल के जमाने में जैसे हम दो बच्चे होते हैं हमारे, तो पेंशन का जो खाता है वो हमारा तीसरा बच्चा है और उसको उतना ही ख्याल रखना है हमें, हमारे को उसको वैसे ही बड़ा करना है क्योंकि वो आपका ख्याल रखेगा बुढ़ापे का। ये दो बच्चे तो रहेंगे आपके साथ पर उन पे निर्भर क्यों होना है, वो आपके आसपास रहेंगे इमोशनल सपोर्ट के लिए, पर ये तीसरा बच्चा आपका बुढ़ापे में ख्याल रखेगा, तो इसका आप अभी से इसको बड़ा कीजिए। इसीलिए इस अटल पेंशन योजना जो है काफी काफी लोगों ने अपनाई है और इसमें बैंकों का बहुत बड़ा रोल रहा है। बैंकों में हर शाखा को हम टारगेट देते हैं और वो सरलता से समझाते हैं और लोगों ने

0: इसीलिए अटल पेंशन योजना को अपनाया है।
1: तो मिस कपूर, अगर हम बात करें आयु सीमा की, कि क्या कोई, जैसे 18 वर्ष की बात आपने की कि 18 वर्ष का जब व्यक्ति एक बार हो जाता है तो इस योजना में वो नामांकन अपना करवा सकता है, तो कोई पूरी सीमा भी कोई है आयु की है?
0: जी, 18 से 40 वर्ष, क्योंकि 20 साल का समय चाहिए आपको उतनी मात्रा इकट्ठा करने के लिए कि वो आपको एक रेगुलर इनकम दे सके, तो इसलिए 18 से 40 तक आप इसमें एनरोल करा सकते।
1: जी देवाशीष जी, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, हम समझना चाहेंगे कि इसके जो मेजर फीचर्स हैं वो क्या हैं और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जैसा आंकड़े बता रहे हैं, आपने भी बताया 27 करोड़ से अधिक एनरोलमेंट हो चुके हैं और इतना जो ग्रोइंग पार्टिसिपेशन इसमें जो भागीदारी हो रही है जनता की, वो स्वाभाविक रूप से ये जताता है, ये हमें बताता है कि किस हिसाब से और किस तरह हमारे जो जनता है वो इस योजना में उन्हें ट्रस्ट है, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताएं।
2: जैसे कि मैंने पहले बताया कि आम आदमी के जीवन में किसी भी प्रकार के ऐसे अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आते हैं तो उसका मुकाबला करने के लिए ये जो योजना है एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जब इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। और ये योजना जैसे 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के जो है सभी लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खाता है, और जो इसमें शामिल होने के लिए तैयार है उनको एक सहमति पत्र देना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही सरल है, और उसमें ऑटो डेबिट की सुविधा भी जो है दी गई है। इस योजना के तहत जो जोखिम कवरेज है, जो रिस्क कवरेज है, वो 2 लाख रुपए तक का है, और जो बीमित व्यक्ति है, इंश्योर्ड है, उसकी मृत्यु होने पर किसी भी कारण से, कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, तो ये मैच्योरिटी सम 2 लाख रुपया उनको तुरंत दे दिया जाता है उनके परिवार को। इसके लिए जो सालाना प्रीमियम है वो केवल 436 रुपया है, जो कि ग्राहक के बैंक या उनकी जो पोस्ट ऑफिस से ऑटो डेबिट किया जाता है, वो बार बार परेशानी नहीं होना पड़े कि बैंक के या पोस्ट ऑफिस के पास जाने के लिए। उन सभी लोगों की सुविधा के लिए जो पॉलिसी अवधि के बीच में अगर पहली बार इस योजना के तहत नामांकन कर रहे हैं तो उनका एक प्रोराटा प्रीमियम का भुगतान भी करने का प्रावधान है। मान लीजिए कि किसी ने दिसंबर में अगर ज्वाइन किया है तो उनको पूरे साल का प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं है, उनका जो है प्रोराटा जितने महीना उस वित्तीय वर्ष में बचते हैं उनका वो प्रीमियम देना होगा। एक इसमें कंडीशन इतना ही है कि नामांकन की तारीख से, एनरोलमेंट की तारीख से 30 दिन की जो है अवधि को लियन पीरियड कहते हैं, और इस योजना में नामांकन की तारीख से पहले 30 दिनों की अवधि के दौरान अगर कोई उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो बीमा कवरेज उनको नहीं मिलेगा और उसके पश्चात रिस्क शुरू हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि अब तक 21,000 करोड़ रुपए के जो है दावे का भुगतान किया जा चुका है। एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े मैं रखना चाहूंगा कि ग्रामीण जो लाभार्थी हैं लगभग 17 करोड़ हैं, जो कि बैंक एनरोलमेंट के 73% है, और हमारे महिला लाभार्थी जो है उनकी संख्या लगभग 12 करोड़ 70 लाख है, जो कि कुल बैंक एनरोलमेंट के 54% है। तो ये आंकड़े जो है इस स्कीम की लोकप्रियता और समावेशिता और आने वाले समय में इस पे और मास रूप में जोड़ने के लिए एक स्पष्ट संकेत देती है।
1: हम आपसे समझना चाहेंगे, और बात हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की, क्योंकि ये योजना किस तरह से काम करती है और किस तरह से एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है अगेंस्ट एक्सीडेंटल रिस्क, जो कि आम जनता को फेस करना पड़ता है अमूमन रोजमर्रा की जिंदगी में। 20 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हमें प्रदान करती है, और आंकड़े बता रहे हैं कि ये लगभग 58 करोड़ से भी अधिक नामांकन अभी तक हो चुके हैं इस योजना के अंतर्गत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक यूनिक सा एक स्कीम है, तो ये जो इनिशिएटिव है भारत सरकार की, इसे कैसे देखती हैं और कितना ये महत्वपूर्ण है, क्या स्थान रखता है हमारे आम जनता के जीवन में?
2: ये योजना एक्चुअली 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के उन लोगों के लिए सरकार ने लागू किए हैं जिनका किसी भी बैंक में या डाकघर में अकाउंट से सेविंग बैंक पासबुक है, और इस योजना में भी शामिल होने के लिए उनको एक ऑटो डेबिट फैसिलिटी के लिए अपनी सहमति देना होता है। और इस योजना में जो रिस्क कवरेज है कि अगर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाते हैं या फिर अगर कोई पूर्ण स्थायी विकलांगता जिसको कहते हैं परमानेंट डिजेबिलिटी की स्थिति में 2 लाख रुपया, और अगर आंशिक डिजेबिलिटी डिसेबिलिटी हो जाती है एक एक्सीडेंट में, तो उनमें 1,00,000 रुपया का जो अश्योर्ड है वो मिलता है। और ये कवरेज केवल साल की 20 रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर मिलता है। खातेधारक की बैंक या पोस्ट ऑफिस से सीधे ऑटो डेबिट हो जाते हैं, उनको बार बार बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने बताया कि इस प्रकार की प्रोडक्ट से अब तक 58 करोड़ से अधिक नामांकन होकर 3600 करोड़ रुपए के जो है दावा के भुगतान किया जा चुके हैं। यहाँ तक हमारे

0: ग्रामीण लाभार्थी हैं वो लोग करीब 38 करोड़ इनमें जो है नामांकित हो चुके हैं और हमारे जो महिला हैं वो करीब 27 करोड़ इनमें नामांकित हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से ये जो है वित्तीय समावेशन का एक स्पष्ट द्योतक है।
1: हम इसका पूरा आपके पास हम आना चाहेंगे। ये 11वां वर्ष है जब इन योजनाओं की शुरुआत हुई में और किस तरह से लाभ पहुंच रहा है हम लोगों को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले वर्षों में आप किस तरह से देखते हैं इन योजनाओं का विस्तार और साथ ही साथ कुछ और नई संभावनाएं अगर आपको दिखती हो तो?
2: जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि अब तक इसमें 9 करोड़ से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। अब ये वित्तीय समावेशन का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें हर वर्ग के लोग जुड़े हैं, चाहे वो ग्रामीण से हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो गिग वर्कर्स हों, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो। इसमें लगभग 50% प्रतिभागी जो है वो महिलाओं की है और 25,000 ट्रांसजेंडर भी जुड़ चुके हैं और इन्होंने छोटे छोटे सेविंग्स करके अब तक इसमें AUM जो है वो लगभग 51,000 करोड़ से ऊपर है। सो अब जो हमारा जो टारगेट है 2031 तक का वो लगभग 17 करोड़ का है। सो हम इसको डबल के करीब ले जाने का सोच रहे हैं। जो पिछले 9 साल में किया वो अगले हम 5-6 साल में करेंगे। और दूसरा जो AUM है वो भी नेचुरली जो पुराना AUM है उसके ऊपर ग्रोथ होगी, 8-8.5% की ग्रोथ उस पर 9% की हो रही है और भी कंट्रीब्यूशन आएगा। सो AUM भी बढ़ेगा। सो इसका हमारे को डबल लाभ होता है। क्यों? क्योंकि एक तो जो माइक्रो लेवल पे है जो नागरिक हैं उनके लिए ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी का एक रास्ता खोलते हैं। दूसरा जो ये AUM एकत्रित होता है ये कंट्री की डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। सो इस तरह से पेंशन सेक्टर का बहुत बड़ा रोल रहता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इसमें इनका बहुत बड़ा रोल पेंशन फंड्स का। और इससे हमारी वित्तीय समावेशन में भी बहुत बड़ा योगदान रहता है।
1: देवाशीष जी, सुमित जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, अपने विचार रखे, साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। बज्म मौसीकी में रिजब सुनी उस्ताद यूनुस हुसैन खान का गाया राग मलहुआ केदार में ख्याल।

0: आदमी फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और तलत महमूद की आवाजों में। इससे पहले हमने आपकी नजर किया था बारिश फिल्म का नगमा, तलत महमूद, मोहम्मद रफी, चितलकर और फ्रांसिस वास की आवाजों में। नगमा निगार थे राजेंद्र कृष्ण। इस नगमे के साथ ही आखिरी शब प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी हैं। शब के 12:50 हुआ चाहते हैं। अब से चंद दमों के बाद आप खबरें सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद आजम खान से खबरें सुनिए। भारत ने MIRV निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो के वजीर आजम से मुलाकात की ताकि बाहमी इश्तराक को मुस्तहकम बनाया जा सके। पीटर मगियार को हंगरी के नए वजीर आजम की हैसियत से लब दिलाया गया है। अमरीका ने कहा है कि मुजवजा 14 निकाती फ्रेमवर्क पर ईरान के बाजाबता जवाब का इंतजार कर रहा है, जिसका मकसद इलाकाई महाज आरई को फैलने से रोकना है। 19वें मुंबई बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल के लिए मंदोबीन के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। ये फिल्म फेस्टिवल 15 से 21 जून तक मुंबई में होगा। और तीरंदाजी में शंघाई में वर्ल्ड कप स्टेज 2 में मर्दों के इनफरादी कंपाउंड मुकाबले भारत के साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। भारत ने उड़ीसा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे से MIRV निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दिफा ने कहा कि कई तरह के पेलोड्स के साथ इस मिसाइल का तजर्बा किया गया। इसमें बहरीन के खित्ते में एक वसी जोग्राफी इलाके में फैले हुए मुख्तलिफ आदाफ को निशाना बनाया गया। वजी दिफा राजनाथ सिंह ने MIRV सलाहियत वाले अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश पर दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO भारतीय फौज सनत की सताइश की है। जनाब सिंह ने कहा कि इससे बढ़ते हुए खतरात के खिलाफ मुल्क की दिफाई तैयारियों में नुमाया इजाफा होगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो के वजीर आजम से मुलाकात की ताकि बाहमी इश्तराक को मुस्तहकम बनाया जा सके। वजीर मौसूफ ने दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे सकाती रवायत और तारीखी रिश्तों का जिक्र किया। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों मुल्कों के दरमियान कपड़ों, खेलों और रिवायतों में यकसानियत पाई जाती है। डॉक्टर जयशंकर ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो की वजीर आजम कमला प्रसाद विशेषर से भी मुलाकात की, बाहमी तआवुन को मजीद मजबूत करने के इकदाम के बारे में तबादला ख्याल किया। मैक्सिको के सदर क्लाइडिया शेंडियम ने इन दावों को गलत बताया है कि अमरीका में मैक्सिको

कौंसल खाने मकामी सियासत में दखल दे रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मैक्सिको में अमरीकी कौंसल खाना और दूसरे मुल्कों में दीगर कौंसल खानों की तरह मैक्सिको के कौंसल खाने भी अपने शहरियों के तहफ़ के लिए काम कर रहे हैं। उनके इस बयान से पहले एक न्यूज चैनल ने यह खबर दी थी कि अमरीका के महकमा खारजा मैक्सिको के कौंसल खानों की जाँच करने पर गौर कर रहा है और हो सकता है कि उन्हें बंद भी कर दिया जाए। पाकिस्तान की इंसानी हकूक से मुतालिक कौंसल ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे की मजम्मत की और इसे आवाम पर बराह रास्त हमला करार दिया है। इससे पहले पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 14.92 रुपए के इजाफे का ऐलान किया था और इस तरह वहां पेट्रोल 415 पाकिस्तानी रुपए फी लीटर हो गया है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है और ये भी 415 रुपए फी लीटर हो गया है। इन कीमतों पर कल से ही अमल शुरू हो गया है। इंसानी हकूक से मुतालिक कौंसल ने सरकार पर जोर दिया कि फौरी तौर पर इस इजाफे को वापस ले और आवाम को राहत दे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक तेलंगाना का दौरा करेंगे। तकरीबन सुबह 11 बजे वजीर आजम बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं सालगिरह तकरीबात में शिरकत करेंगे। इसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैदराबाद जाएंगे जहां वो तेलंगाना में तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुजरात का भी दो रोजा दौरा करेंगे जो आज से शुरू होगा। पीर के रोज वजीर आजम सोमनाथ मंदिर के अहिया की 75वीं सालगिरह के मौके पर सोमनाथ अमृत महोत्सव में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 11 साल पहले एनडीए सरकार की जानिब से शुरू की गई समाजी सिक्योरिटी और पेंशन की अहम स्कीमों के असरात को उजागर किया। इनमें पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना शामिल हैं। जनाब मोदी ने कहा कि इन इकदाम से मुल्क के आवाम के लिए अजमत वकार यकीन दहानी और माली सिक्योरिटी यकीनी बनाने के सरकार के अहद की अक्कासी होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना से सबसे निचली सतह पर लोगों की जिंदगी में मुस्बत असर पड़ा है और समाजी सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क मजबूत हुआ है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पीटर मगियार को हंगरी के नए वजीर आजम की हैसियत से लब्धि लाया गया है। उन्होंने 12 अप्रैल के इंतखाबात में कौम परस्त रहनुमा विक्टर ऑर्बन पर फैसलाकुन कामयाबी हासिल की है। इस तरह ऑर्बन का 16 साल से जारी दौरे हुकूमत खत्म हो गया है। इन नतीजों से मगियार की तीसा पार्टी को अक्सरियत हासिल हुई है। 45 साल पीटर मगियार ने बदउनवानी से निपटने और उन पॉलिसियों को बदलने का वादा किया जो साबिका सरकार के दौर में अदलिया, मीडिया, दीगर शोबों को अपने कंट्रोल में लेने के लिए बनाई गई थी। जनाब मगियार ने यूरोपीय यूनियन के साथ हंगरी के कशीदा ताल्लुकात बहाल करने का भी वादा किया। अमरीका ने कहा है कि मुजवजा 14 निकाती फ्रेमवर्क पर ईरान के बाजाब्ता जवाब का इंतजार कर रहा है जिसका मकसद इलाकाई महाजाराई को फैलने से रोकना है। मगरबी एशिया के खित्ते में फौजी सियासी कशीदगी का सिलसिला भी जारी है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रोबियो ने कहा है कि अमरीका सिफारतकारी में मसरूफ है। उधर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया कि ईरान के जवाब से मुजाकरात के अगले मरहले का तयन हो सकता है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास आराखची ने अमरीका की हालिया फौजी कार्रवाई पर नुक्ताचीनी की है और अमरीका पर इल्जाम लगाए कि कशीदगी बढ़ाकर सिफारती कोशिशों को कमजोर कर रहा है। आबनए हुरमुज और उसके एतराफ ताजा वाकयात के पस मंजर में ये बयान सामने आए हैं जिसमें ईरान और अमरीकी फोर्सेज के दरमियान मुबैना बहरी टकराव भी शामिल है। 19वें मुंबई बैन अल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल के लिए मंदोबीन के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। ये फिल्म फेस्टिवल 15 से 21 जून तक मुंबई में होगा। जनूबी एशिया का अहम फेस्टिवल दस्तावेजी, मुख्तसर फिक्शन और एनिमेशन फिल्मों के लिए वक्फ है। इसके लिए मंदोबीन 500 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस अदा करके फेस्टिवल के पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अपना इंदराज करा सकते हैं, जबकि तलबा को दस्तावेजात की तस्दीक के साथ इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होगी। भारत के कुश्ती फेडरेशन ने
विनेश फोगाट को डिसिप्लिन की पाबंदी न करने और डोपिंग मुखालिफ जाब्तों की खिलाफ वर्जी के इल्जाम के सिलसिले में कल वजह बताओ नोटिस जारी किया। 15 सफात पर मुश्तमिल नोटिस में WFI ने कहा कि

0: विनेश इस साल जून तक घरेलू मुकाबले में हिस्सा नहीं ले पाएंगे क्योंकि एंटी डोपिंग जब्तों के तहत रिटायरमेंट से वापस आने वाले खिलाड़ी के लाजमी 6 माह की नोटिस मुद्दत को उन्होंने मुकम्मल नहीं किया है। खबर मिली है कि अमरीका के जुनेवी कमान ने मशरकी बहर अल्काइल में मनशियात के धंधे में मुबैना तौर पर मुलविस एक कश्ती पर हमला करके उसे डुबो दिया। इस वाकये में 2 अफराद मारे गए, एक जिंदा बच गया। एक मीडिया पोस्ट में अमरीकी जुनूबी कमान ने यह भी कहा है कि इस कश्ती के जरिए मनशियात का धंधा करने में दहशतगर्द तंजीमें मुलविस हैं। खबरों में यह भी कहा गया कार्रवाई के दौरान अमरीका के फौजी अमले को भी नुकसान पहुंचा है। चीन के शहर शंघाई में कल तीरअंदाजी के आलमी कप सन 2026 के दूसरे मरहले के तहत मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता। महाराष्ट्र के 25 साल तीरंदाज ने डेनमार्क के सरकर्दा खिलाड़ी और कोच मार्टिन डम्सबो को 147-144 के स्कोर से हराकर कांसे का तमगा जीता और भारत को जारी टूर्नामेंट में पहला तमगा दिलाया। गुज़श्ता बरस भारत ने शंघाई में 5 कंपाउंड तमगे जीते थे। आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। भारत ने MIRV निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तिरंदाज एंड तंबाकू के वजीर आजम से मुलाकात की ताकि बाहमी इश्तराक को मुस्तकम बनाया जा सके। पीटर मग्यार को हंगरी के नए वजीर आजम की हैसियत से लब दिलाया गया है। अमरीका ने कहा है कि वह मुजवजा 14 निकाती फ्रेमवर्क पर ईरान के बाजाबता जवाब का इंतजार कर रहा है जिसका मकसद इलाकाई महाजारी आरई को फैलने से रोकना है। 19वें मुंबई बैनुल अक्वाम फिल्म फेस्टिवल के मंदूबीन के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया। फिल्म फेस्टिवल 15 से 21 जून तक मुंबई में होगा। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DT फ्री डिश पर। शब का एक बजा चाहता है हमारी तीसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। सुबह 9:30 पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे पहली मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नवन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता

0: नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती है। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम का सामना आज चीन से होगा, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिम राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रॉयलसीमा, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका आज बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal yesterday. Governor R.N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agni Mitra Paul, Ashok Kirtaniya, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of BJP attended the ceremony. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay yesterday met Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay said to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu today. Tamilaga Vetri Kadagam, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from Congress, left parties, VCK and the Indian Union Muslim League, that is IUML. The top brass of the Congress party yesterday held a meeting in New Delhi to discuss government formation in Kerala. The meeting, convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence, was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general secretary in charge of the state Deepa Das Munshi, General Secretary Organization K.C. Venugopal and senior Kerala leaders Ramesh Chennithala and V.D. Satishan. The party said Congress Chief Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala Chief Minister and the name will be announced very soon. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. Mr. Modi will first travel to Karnataka to participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. He will also inaugurate the

यह आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 1:10 अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत सुनहरे। इस कार्यक्रम में हम आनंद लेते हैं पुराने फिल्मी नगमों का। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको उस दौर में जहां के गीत आज भी हमारे दिल में बसे हुए हैं। सबसे पहला मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में आ रहा है फिल्म मेरा घर मेरे बच्चे, संगीत हसरत जयपुरी का है।

अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म है जिस देश में गंगा बहती है, लता मंगेशकर, गीता दत्त, मुकेश, मन्ना डे, महेंद्र कपूर व अन्य साथियों की आवाजों में, बोल शैलेंद्र के हैं और संगीत से पिरोया है शंकर जयकिशन ने।

आपने सुना हम हिंदुस्तानी फिल्म का टाइटल ट्रैक, मुकेश और अन्य आवाजों में उषा खन्ना का संगीत था। अगला गीत सविता बनर्जी की आवाज में, आइए सुनते हैं।

गीत सुनहरे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से। लता मंगेशकर का स्वर है, शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा है और शंकर जयकिशन ने संगीत दिया था।

फिल्म चौधरी का चांद का टाइटल ट्रैक आप सुन रहे थे और शकील बदायूं का बोल थे, रवि का संगीत था। अगला गीत आपके लिए आ रहा है मोहम्मद रफी की ही आवाज में। जी हाँ, इसके संगीत से आपको हिंट तो मिल ही गया होगा। आपकी आंखें किस रंग की हैं, काली, पीली या फिर गुलाबी?

गीत सुनहरे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और अब इस कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं फिल्म आशा से यह अगला गीत। लता मंगेशकर की आवाज है, आनंद बख्शी की बोल है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: गीत सुनहरे कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नवन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश

किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला परसद बिसेसर के साथ ट्रिनिडाड और टोबैगो के नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप का वो स्थान है जहां गिरमिटिया भारतीय मजदूर सबसे पहले ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। डॉ जयशंकर ने नेल्सन द्वीप पर त्वरित प्रभाव परियोजना के लिए डॉ कमला परसद बिसेसर के साथ भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय सहायता से समर्थित ये परियोजना एक अमर यात्रा की साझा विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

0: इसी गीत के साथ नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम गीत बहार अब यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। सुबह के, माफ कीजिएगा, 3 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने की और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नबन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रामास्वामी को पुद्दुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती हैं। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु में तलिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला परसद बिसेसर के साथ त्रिनिदाद और टोबैगो के नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप का वो स्थान है जहां गिरमिटिया भारतीय मजदूर सबसे पहले त्रिनिदाद और टोबैगो

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, रात्रि के 3:10 और ठीक 40 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत गजल।

कौन है जो एक साये की तरह मेरे दिल को छूता हुआ गुजर जाता है, कभी पास से कभी दूर से, एक आवाज, एक नगमा, एक गीत बनकर रख रख में उतर जाता है, कभी पास से कभी दूर से। कौन है जो मुझे अपनी तन्हाई का एहसास दिला जाता है, एक खालीपन, सूनापन छोड़ जाता है। मैं उसे देखना चाहती हूं, जानना चाहती हूं, उंगलियों से उसके चेहरे को छूना चाहती हूं। कौन है जो पास रहकर भी मुझसे दूर है, कदमों की आहट सुनती हूं, पलटती हूं, उसे देखती हूं, तस्वीर बन जाती हूं, खुद को भूल जाती हूं, बेखुद हो जाती हूं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। आप सुन रहे हैं गीत गजल कार्यक्रम अपने दोस्त मोहन के साथ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, प्रातः के 4 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे।

0: मोदी आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे और वे कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल नबन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज चेन्नई पहुंचेंगे। विजय आज चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती हैं। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए खरीद संबंधी अनुपालन दिशा निर्देशों की नियमावली लागू करके केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत बाहरी स्रोत और संविदा कर्मचारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य वेतन का समय पर भुगतान, सामाजिक सुरक्षा अंशदान का अनिवार्य भुगतान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन तंत्र सुनिश्चित करना है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए अब सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम। प्रस्तुति मिनी एन की है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 मई सन 2026। श्रोताओं, प्रातः के 4:54 हुए हैं। इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम अपनी सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

श्रोताओं, आइए आपको इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 5:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसमें देशभक्ति गीत आप सुन पाएंगे। 5:20 पर आओ योग करें कार्यक्रम प्रसारित होगा, जिसमें आप ताड़ आसन और कंधे के आसन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 5:30 का समय स्वर रंजनी कार्यक्रम का है। हमारी प्रातःकालीन सेवा प्रातः 6 आरंभ होगी हिंदी समाचारों के साथ। 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। 6:10 का समय वंदना कार्यक्रम का है, जिसके अंतर्गत आप भक्ति संगीत के रस से सरोवर हो सकेंगे। 6:40 पर चिंतन, और आज के चिंतन में स्वामी विवेकानंद के विचारों पर आप सुनेंगे। 6:45 पर रामचरितमानस से बाल कांड भाग 52 प्रसारित किया जाएगा। 6:55 पर संस्कृत समाचार होंगे। संस्कृत समाचारों के उपरांत प्रातः 7 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। हिंदी समाचारों के बाद 7:05 का समय अंग्रेजी समाचारों का है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, प्रातः के 5 को हैं, कुछ ही पलों में आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ।

पौड़ी कपड़ रूप सुहागना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना पे ही किता पावना हुक्म किए मन भाव दे रही पीड़ा गया जावना चंगा दो जग चालिया कंध सह।